0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर। बुधवार 9 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं और अभी के लिए समय हुआ है समाचार का।
1: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से। पूजा आपको नमस्कार।
2: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरैक्टिव मैप ऑनलाइन जारी किया है, जिसकी मदद से सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तट तक पहुंचने वाले रास्तों की पहचान की जा सकती है। फिलहाल इस मैप में 4 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, ला पुनेज, ला मिवा, तमारे और फ्लाक। बाद में इस मैप को टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बियानुरु पेयालावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण। गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पेयालावाल को मॉरिशस के महान धर्म सेवक के रूप में भी माना जाता है। और आज उनकी तीर्थ यात्रा कल शुरू हुई और आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये मात्र पैदल तय किया जाने वाला रास्ता नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले 2 दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमरीकी युद्धपोत के 2 बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है। और अब मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू है। मैस्कैरिन के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल घिरे रहेंगे, दिन के दौरान हल्की वर्षा होगी, खासकर देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर। रात को भी बादल छाए रहेंगे। सेंट्रल प्लाटू तथा हवाई ढलानों पर रहकर वर्षा होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से, मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 17 से 22, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:03 पर होगा। तो मौसम के इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30 बजे।

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस.
2: भोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत.
3: एक नई शुरुआत, एक नए आरंभ के साथ यहाँ पर आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर भोर की बेला. इस कार्यक्रम में बुधवार 9 सितंबर घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:05 होने को है. सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें. सुप्रभात आप सभी को. इस कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार. बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि आज का दिन आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए और ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे. तो श्रोताओं, आपको बता दें कुछ क्षणों में हम बढ़ने वाले हैं कार्यक्रम सनातन धारा की ओर, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में, और फिर गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के संदर्भ में मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की ओर से आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम सवेरे के 6:20 पर नितिन बापू की प्रस्तुति में, और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का. तो चलिए, आज है बुधवार, तो आज के इस भोर की बेला को आरंभ करते हैं हम सनातन धारा इस कार्यक्रम से, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में. कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी. तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं.

समालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो

आलयम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय गणेश पूजा संबंधित कुछ आवश्यक बातें। गणेश जी की पूजा विभिन्न प्रतीकों में, साधारणतया गणेश जी की पूजा हरिद्रा की मूर्ति हल्दी की गांठ पर की जाती है। हरिद्रा में मंगला हर्षिणी शक्ति है तथा वह लक्ष्मी का प्रतीक भी है। नारद पुराण में तो गणेश जी की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाने का आदेश देकर उसके अभाव में हरिद्रा से उसे बना लेने की छूट दी गई है। गोमय गोबर में लक्ष्मी का स्थान होने के कारण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गणेश जी की उपासना गोमय मूर्ति पर की जाती है। गणेश जी की विशेष कृपा शीघ्र पाने के लिए श्वेत अग्र आंख की जड़ की पुष्य नक्षत्र युक्त रविवार के दिन मंत्राचरित पूर्ण उखाड़ कर उस जड़ से अंगुलठे के बराबर की गणेश जी की मूर्ति बनाकर पंचामृत से उसका अभिषेक करके पूजा में रख लें। जो बहुतों द्वारा अनुभूत है तथा उसका संकेत अग्नि पुराण में 301वां अध्याय में भी मिलता है।

अगर पुष्प युक्त रविवार, पुष्य युक्त रविवार अभय हो तो केवल पुष्य नक्षत्र के दिन भी उक्त श्वेत आंक के जड़ को उखाड़ करके पूजा के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। गणपति के प्रतिमात्रेय का निषेध घर में कभी कभी एक देवता की अनेक मूर्तियों का संग्रह हो जाता है, अतः एव आधारक को उनकी संख्या का चौतन्य ध्यान से रखकर आवश्यक रखें। घर में दो शिवलिंगों, दो शंख, दो सूर्य प्रतिमाओं, दो शालिग्रामों, दो गोमेदी चक्र, तीन गणपति प्रतिमाओं एवं तीन देवी प्रतिमाओं की स्थापना नहीं करनी चाहिए। गृहे लिंग द्विजम चायम गणेशत्रियम तथा शंख द्वारा तथा सूर्ये नाशितुम शक्ति त्रयम तथा द्विचक्री द्वारा कार्यंतम शालिग्राम शिला द्विजम तेषां तु पूज्ये नैव हेतं पुनां तं गुहु। दुर्वा, गणेश को दुर्वा विशेष प्रिय है। गणपति की पूजा में पाटल लाल वर्ण वाली और सुरभित कुसुम भावाली के साथ साथ दुर्वाकूर विशेष रूप से अर्पण किए जाते हैं, किंतु उनकी पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता। न तुलस्याम गणपति ज्ञानमाला प्रतिक्रमा परिक्रमा बृहस्यम त परितिष्टम के अनुसार गणेश जी की एक परिक्रमा करनी चाहिए। एकाम विनायके कुर्यात् किंतु ग्रंथातर के त्रिय क्रियाम विनायके हे इस वचन के अनुसार तीन परिक्रमाओं का विकल्प भी आदरणीय है। श्री गणपति जयंती, एक मान्यता अनुसार गणेश जी का सर्वप्रथम आविर्भाव माता पार्वती के यहाँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। सर्वदेवमयम साक्षात सर्वमंगलदायकम माघ कृष्णे चतुर्थ्यायाम च पादुर्भुवते गणपति दीखम। गणेश जी अपने आधारकों के समस्त संकटों कष्टों को नष्ट कर देते हैं, अतः उनके प्रामुद्भाव की तिथि संकट हर चतुर्थी कहलाती है। चतुर्थी तिथि को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त प्रतिमा इस तिथि के आने पर उनका विशेष आराधन करते हैं और प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक की चतुर्थी मानकर विशेष व्रत पूजा आदि करती हैं। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विशेष महिमा है। उस दिन की आराधना से भगवान गणपति अपने आराधकों के समस्त कार्य कलापों में सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः उनका नाम सिद्धि विनायक प्रसिद्ध हो गया। सिद्धयन्ति सर्व कार्याणि मनसा चिन्तमासते तेन संख्याति गतो लोके नाभ्याम सिद्ध विनायक। उनकी कृपा से विद्यार्थी को विद्या की, धनार्थी को धन की, विजयार्थी को विजय की और पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्त हो जाती है। सिद्धि विनायक व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन गणेश जी का मध्यान्ह

में प्रागट्य हुआ था, अतः उसमें मध्याव्यापिनी तिथि ली जाती है। इसीलिए गणेश चतुर्थी के मध्याम्वापिनी में अर्थात शाम के समय, ताकि चंद्रमा में चतुर्थी तिथि हो, सर्वप्रथम एकाग्रचिंत से सर्वानंद प्रदान दाता सिद्धि विनायक का ध्यान करें, फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके 21 नाम लेकर के 21 पत्ते समर्पित करें, उनके प्रत्येक नाम के साथ नमः जुड़ा हो। वे 21 नाम और पत्ते इस प्रकार है, ओम सुमुखाय नमः कहर करके शमी पत्र चढ़ावें, ओम गणादीक्षाय नमः कह करके भैरवाय पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम उमापुत्राय नमः कह करके बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, ओम गजमुखाय नमः कह करके दुर्वा दल चढ़ाना चाहिए, ओम लंबोदराय नमः कह करके बेर का पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम हर सुनवे नमः कह करके धतुरे का पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम सुरभंकनाय नमः कह करके तुलसी दल चढ़ावे, ओम वक्रतुंडाय नमः कह करके सोमता पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम गुहा गजाय नमः कह करके अपामार्ग पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम एकदंताय नमः कह करके वन भटा या मटकटेटाय का पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम हेरम्भाय नमः कह करके सिंदूर का पत्ता या सिंदूर चूर्ण चढ़ाना चाहिए, ओम चतुर्होत्रे नमः कह करके तेज पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम सर्वेश्वराय नमः कह करके अगस्त्य पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम विकटाय नमः कह करके कनेर पत्ता चढ़ाना चाहिए, ओम हेमडुंडाय नमः कह करके अश्वमता पत्र या कदली पत्र चढ़ाना चाहिए, ओम विनायकाय नमः कह करके आंख का पत्ता चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से कपिलाय नमः, वटवे नमः, बालचंद्राय नमः, सुरा प्रजाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः 21 मंत्र से 21 प्रकार के पत्ता जरूर चढ़ावें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6:18 होने को है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। इन इलाकों में रहने वाले पेरिबिया के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सीबी पेरिबिया के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है, खासकर शिमे वैपिये, ओल्ड मिल रोड, मौसलमा स्वान, कोस्टल रोड, लेफ्लामोंट रोड पेरिबिया, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 9 सितंबर को सुबह के 9:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच, यहाँ पर आज सुबह के 9:30 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
2: एमपीसी चावती ने

0: तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: जी हाँ, गणेश चतुर्थी इस पावन पर्व की तैयारियों में सभी भक्त लगे हुए हैं. भगवान गणेश के स्वागत में सभी लगे हुए हैं. भगवान गणेश की कृपा आप सब पर रहे. सवेरे के 6:20 होने को और अभी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में समय हुआ है हम बढ़े इस विशेष कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सुनेंगे मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की प्रस्तुति में. कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे नितिन बापू. तो आइए गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम मराठी भाषा में. और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर. और हम आपसे मिलेंगे सुबह का नजराना इस कार्यक्रम में. तो ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर आप हमारा साथ देते रहिए. आइए अभी के लिए बढ़ते हैं इस विशेष कार्यक्रम की ओर गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में.
3: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:30 बजे है। नमस्कार, आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस में समुद्र तटों और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम। लापुनेज तमाग में कल स्थल का दौरा किया गया। आवास एवं भूमि मंत्री शाकिल मोहम्मद ने बताया कि फिलहाल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिमी और फ्लैक इलाके के लिए उपलब्ध है, जिससे बाद में टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। आज 9 सितंबर को बियन रुपये अलावाल की 162वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हर वर्ष की तरह कल भी बड़ी संख्या में मॉरिशस वासी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने और प्रार्थना के लिए सैकड़ों स्थित उनके मकबरे तक तीर्थ यात्रा की। SSON अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगियों के लिए एक विशेष वार्ड कायम। ये सुविधा रोगियों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार देखभाल और इलाज उपलब्ध कराएगी। विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 2 दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमरीकी युद्धपोत को 2 बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया। मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरैक्टिव मैप ऑनलाइन जारी किया है, जिसकी मदद से सार्वजनिक समुद्र तटों और समुद्र तट तक पहुंचने वाले रास्तों की पहचान की जा सकती है। फिलहाल इस मैप में 4 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, लापुनेज, लामीवा, तमारे और फ्लैक। बाद में इस मैप को टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। शैली नियबन की रिपोर्ट पर सुनते हैं आस्था गोविंद चितामन को।
2: व्यवहारिक रूप से ये मंच आम लोगों को उन सभी समुद्र तटीय पहुंच मार्गों को देखने की सुविधा देता है जिन्हें मंत्रालय द्वारा दर्ज किया गया है। ये पहली मैपिंग ऐसे समय में सामने आई है जब पिछले कई महीनों से सरकार के प्रयासों में समुद्र तटों तक लोगों की पहुंच का मुद्दा प्रमुखता से शामिल रहा है। मंत्रालय ने सार्वजनिक रास्तों की बेहतर पहचान के लिए साइन बोर्ड लगाने और समुद्र तट तक पहुंच में बाधा डालने वाली या उसे मुश्किल बनाने वाली रुकावटों को हटाने की भी घोषणा की थी। जमीनी स्तर पर अब कुछ जगहों पर समुद्र तट तक जाने वाले रास्तों को दर्शाने वाले साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जबकि कुछ अन्य साइन बोर्ड समुद्र तट से मुख्य सड़क तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे और विकसित किया जाएगा। मंत्रालय के कार्टोग्राफी सेक्शन के अधिकारियों द्वारा आंकड़ों को संकलित और सत्यापित किए जाने से बाद में इसमें अन्य सेक्टरों को भी जोड़ा जाएगा। ये टूल अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं के काम को भी आसान बनाने में मदद करेगा, खासकर जब समुद्री तटीय क्षेत्र में किसी हस्तक्षेप या आपात कार्रवाई की आवश्यकता हो तो नेशनल कोस्ट गार्ड, पुलिस और चिकित्सा सेवाओं के लिए ये उपयोगी साबित होगा। और अगर किसी समुद्र तट तक जाने वाला रास्ता किसी गेट, कंटेनर या किसी अन्य संरचना के कारण अवरुद्ध है तो मंत्रालय ने आम लोगों से उसकी तस्वीरें लेने या वीडियो बनाने और मामले की जानकारी मंत्रालय या पुलिस के लेंस डिवीजन को देने की अपील की है।
1: और इसी सिलसिले में लापुनेज तमारा में एक दौरे के तहत आवास एवं भूमि मंत्री शाकिल मोहम्मद ने समुद्र तट तक सार्वजनिक पहुंच और वहां लगाए गए दिशा निर्देश संकेतों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिम

0: में और फ्लक इलाके के लिए उपलब्ध है। इसे धीरे धीरे टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं, उनसे बात की माधवी जगन्नाथ ने।
1: Sur le site là, vous pouvez trouver une carte de l'île Maurice. Si vous cliquez, vous pouvez avoir une photo qui est ouverte pour montrer où, qui grandeur, qui largeur, qui longueur, et une photo pour montrer où côté était exactement pour qui public capable d'identifier bon accès. À ce stade, c'est la côte ouest qui fin et dans l'eau ça m'a plat et dans flac aussi et dans l'eau ça m'a plat. Pour le bon officier pour continuer update li.
0: खबरों को हम जारी रखते हैं। सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाले बियान यूरोपे अलावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण है। गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पे अलावाल की मॉरिशस के महान धर्म सेवक के रूप में भी जाना जाता है। बियान यूरोपे अलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा कल शुरू हुई, जो मात्र पैदल तय किया जाने वाला रास्ता नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की एक आध्यात्मिक यात्रा है। आज पेलावाल की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। गीता सुनारायण की रिपोर्ट।
2: मोमबत्तियां, फूल और एक ही व्यक्ति की ओर उठे श्रद्धा से भरे चेहरे बियान्यूरोपे पेलावाल सेंट क्वा के उनके मकबरे में यही देखने को मिल रहा है। हर वर्ष हजारों लोग सेंट क्वा तक पैदल तीर्थ यात्रा करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं और अपने विश्वास को फिर से मजबूत करते हैं। पेशे से डॉक्टर रहे पेलावाल ने कुछ वर्षों बाद धार्मिक जीवन का मार्ग चुना और वे पादरी बने। साल 1841 में वे एक मिशन के साथ मॉरिशस पहुंचे, हाल ही में स्वतंत्र हुए गुलामों का साथ देने और उनकी मदद करने के लिए। 23 वर्षों तक उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे गरीब और वंचित लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया और मॉरिशस में धर्म प्रचारक के रूप में पहचान बनाई। 9 सितंबर 1864 को उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव और विरासत समाप्त नहीं हुई। हर साल ये तीर्थ यात्रा पीढ़ियों की सीमाओं को पार करती हैं और मॉरिशस वासियों को एक ही संदेश के इर्द गिर्द एकजुट करती हैं, एकजुटता, आस्था और आशा।
0: एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज के लिए बियान्यूरोपे पेलावाल के मॉरिशस आगमन की 150वीं वर्षगांठ और उनकी मृत्यु की 162वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोर्ट लुइस के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जुरोन ने अपने प्रवचन में ये बात कही। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, सड़कों और स्कूलों में बढ़ती हिंसा, साइबर उत्पीड़न तथा सोशल मीडिया पर नस्लवादी टिप्पणियों को लेकर मोंसेयर जुरोन ने कहा कि वे इन घटनाओं से बेहद चिंतित और गहराई से व्यतीत हैं। मॉरिशस पोर्ट लुइस के बिशप ने युवाओं में नशीली दवाओं के बढ़ते प्रकोप की भी कड़ी निंदा की। उनको सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला ने।
3: En août 2026, Mangaël Azoua et mon bon frère accès à les autres l'église et aussi mon frère accès à différentes religions. Quand nous avons l'occasion, écoute ce qui peut passer dans nos pays aujourd'hui en ce qui concerne la drogue. Nous partageons comment la religion peut sensibiliser la zen et réhabiliter la djimoun qui tombe dans l'addiction. À partir de sa première réunion, là, une comité une zone pour discerner qui est action qui nous peut capable vivre ensemble.
0: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित लोगों की देखभाल की दिशा में एक नई पहल कई वर्षों की कोशिश और आपसी सहयोग के बाद SSON अस्पताल में एक विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जागरूकता दिवस पर शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य रोगियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार बेहतर इलाज देना और उनकी जीवन को आसान बनाना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी संगठन ने इसका स्वागत किया। सरकारी अस्पतालों में और अधिक विशेष उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। अजमल मोइटूब की रिपोर्ट पर करुणा लालू को सुनते हैं।
4: मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जूझ रहे मरीजों की देखभाल के लिए एक नया चरण, मरीजों के लिए समर्पित नया वार्ड, कई वर्षों से चल रहे प्रयासों और विभिन्न पक्षों के सहयोग का नतीजा है। इसका मकसद मरीजों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुरूप अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। सुदेश कुमार पात्रू कहते हैं,
5: avec la

0: dystrophie musculaire. Canali Samans enfants là vers nous l'association et à partir de ça nous prenons le suivi quand vous êtes admis à l'hôpital avec tous les soins nécessaires.
1: उत्तर क्षेत्र से परे स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने दक्षिणी क्षेत्र में भी इसी तरह की सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य दक्षिण के मरीजों को खास चिकित्सा सेवाएं उनके घर के करीब उपलब्ध कराना है। मंत्री अनिल बेचू ने कहा,
2: parce que on connaît l'enfant là déjà il a un problème pour amener dans les nœuds là pour garder quelques jours ou quelques semaines dans l'hôpital il vient un problème pour ben parents alors nous penser dans le site soit à Rosebel ou à Suyac nous visons faire un autre département un petit ward là-bas.
1: स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि दो नई एंजियोग्राफी मशीनें फ्लैक और जीटू अस्पतालों के लिए जल्द ही खरीदी जाएंगी। अस्पतालों में मौजूदा कई मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें लगातार मरम्मत की आवश्यकता है।
2: मोबाइल हॉस्पिटल सिविल एंड द हॉस्पिटल प्री इंपोर्टेंट दे पेई दे ला कैपिटल एंजियो पी एन पान लबा नू वे फेयर टू नू डेमांस सा सेमेन ला नू कैपेबल रिपार्ली एंड कैन नू रिपार्ली वो एस्पेरेर पू ट्रावाय एन पेई बट एंट्रे टेम नू डेजा फिनी कोमांस प्रोसीजर पू प्रेंड दे एंजियो मशीन एन अफ्लाक एंड कैन अजीटू।
1: वहीं सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त करने के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। ये असेसमेंट पैनल के कामकाज पर भी गौर करेगी।
3: La réforme de disability benefits, l'IPU, vise pour qu'il non seulement get l'élément médical de quelqu'un qui a un quelconque disability, mais il aussi vise pour get l'élément fonctionnel, au sens le medical guideline pour intégrer et modernise et réactualise un critère médical. Et clair là, nous pouvons aussi évaluer ben Zibon qui basé sur 60%, mais en bas 60%.
1: सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के स्तर पर भी कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार संविधान में दिव्यांगता को भेदभाव से सुरक्षा के आधारों में शामिल करने के अपने वादे पर कायम है।
4: विदेश में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले दो दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमेरिकी युद्धपोत को दो बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमेरिकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है। सेंटकॉम के अनुसार ओमान की खाड़ी में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को से जुड़े 4 ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान की खाड़ी तट से दूर स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल द्वीप के पास एक अन्य टैंकर को भी निशाना बनाया गया। इसके जवाब में तेहरान ने जोर्डान स्थित एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी। हालांकि जोर्डान ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान द्वारा दागी गई 20 मिसाइलों में से 18 को मार गिराया है। और अब मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू है। मस्कैरिन की दक्षिण पश्चिम में पाई जा रही एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंड और जोरदार हवाएं चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय तथा दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे, हल्की वर्षा होगी देश के पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर। रात को भी बादल छाए रहेंगे। सेंट्रल प्लाटू तथा हवाई ढलानों पर वर्षा होने का अनुमान है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। समंदर में 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से मछुआरों से समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 17 से 22, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:11 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 6:03 पर।

0: देश विदेश तथा मौसम के इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम। लाभोनेस तमाहे में कल स्थल का दौरा किया गया। आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने बताया कि फिलहाल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिमी और फ्लैक इलाके के लिए उपलब्ध है, जिसे बाद में टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। आज 9 सितंबर को बियन रुपया लावाल की 162वीं पुण्य तिथि मनाई जा रही है। हर वर्ष की तरह कल भी बड़ी संख्या में मॉरिशसवासी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने और प्रार्थना के लिए सैखवा स्थित उनके मकबरे तक तीर्थ यात्रा की। SSIN अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित रोगियों के लिए एक विशेष वार्ड कायम। ये सुविधा मरीजों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार देखभाल और इलाज उपलब्ध कराएगी। विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले दो दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमरीकी युद्धपोत को दो बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है। हुए हैं, हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं। साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

शोक समाचार सुनिए। गांधीरोध्य बेल्टिया में, गांधीरोध्य बेल्टिया में 83 साल की 83 years old श्रीमती सुशील ललित जिन्हें लोग सुभावती नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके पोते गिरीश गुहिला के मकान गांधी रोड बेल्टिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 1:30 PM। कंफुखो में 92 साल की 92 years old श्रीमती विद्यावती मंगरा पैदाशी नाम बोनोमाली और जिन्हें लोग मिस लुलो नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान कौफुखो से उठाकर कौफुखो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बॉम्बे स्ट्रीट पे चिराफरी में शिवाला के पास 54 साल की 54 years old श्रीमती दामयंती रघुबर पैदाशी नाम सतन और जिन्हें लोग रीता नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनके बेटे अनिकेत रघुबर के मकान बॉम्बे स्ट्रीट पिछराफे से उठाकर मोमास्काल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड ला फ्लोरा में 93 साल के 93 years old श्री रूप नारायण मोघा जिन्हें लोग ललन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबोआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। रिवालों रोड क्रेवकोया में 81 साल की 81 years old श्रीमती धनवंती बलडाओ जिन्हें लोग कलावती नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके

0: थी आज शाम 3:30 बजे और शाम 3:30 बजे इनके बेटे सुनील महादेव के मकान गिबालों रोड खैबकुया से उठाकर खैबकुया ही की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड श्वाजी बेजुकाप में नवासी साल की 89 years old श्रीमती दयावंती हरी पैदाशी नाम करदारी और जिन्हें लोग हीरा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे पापुल हरी के मकान रॉयल रोड श्वाजी बेजुकाप से उठाकर सैमौता बेजुकाप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोसेलमा ओसाई फोंजुसाक में 74 साल के 74 years old श्री जॉन पोल इल्बेयर जिन्हें लोग जॉन पोल नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी पत्नी सविता इल्बेयर के मकान मोसेलमा उसाई फोंजुसाक से उठाकर दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 1:30 PM। बॉम्बे रोड प्रोविडेंस का चेमिलिटेयर में 72 साल की 72 years old श्रीमती वीरामा चिदम्बरम पैदाशी नाम कुंजमाले और जिन्हें लोग मेनिदा नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे इनके बेटे कैंडन चिदम्बरम के मकान बॉम्बे रोड प्रोविडेंस का चेमिलिते ऐसे उठाकर मिजिन का उद्यमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। रॉयल रोड न्यूग्रोव में 79 साल के 79 years old श्री ओजागीर सिंह सकी सिंह जिन्हें लोग विष्णु नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले DWC में इंस्पेक्टर का काम करते थे। इनकी अर्थी आज सुबह साढ़े दस बजे इनकी बहन हरावंती सखी सिंह के मकान रॉयल रोड न्यूग्रोव से उठाकर प्लान मायाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 10:30 AM। और गांधी रोड बन में हमें 76 साल के 76 years old श्री अमृतलाल बिकाऊ जिन्हें लोग नारायण नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे रामनाथ सिंह बिकाऊ के मकान गांधी रोड बन में से उठाकर लावाचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 12:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: बुधवार 9 सितंबर को शाम के 6:30 बजे लावांचर झरनाथ शिवालय द्वारा मासिक शिवरात्रि मनाई जा रही है।
4: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैंपियंस लीग का लीग स्टेज शुरू हुआ। प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला दोनों की जीत हुई। रियल मैड्रिड भी अपना मैच जीत पाया। पोर्टो 0 मैनचेस्टर सिटी 2। दोनों गोल सेकेंड हाफ में अर्लिंग अलोन ने स्कोर किया। मैनचेस्टर सिटी की टीम में युवा खिलाड़ी अय्यूब बुआदी का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा। केवल 18 साल का है पर मिडफील्ड का माएस्ट्रो दिखता है। क्लब ब्रुज 2 एस्टन विला 3 मैकगिन बुएंजिया और जैक्सन स्कोर कर पाए। रियल मैड्रिड के लिए एम्बापे और वाल्वेदे स्कोर रहे। सभी नतीजे AK Athens 1 LASK 0। क्लब ब्रुज 2 एस्टन विला 3 बोरुशिया डॉर्टमुंड 3 विलारियल 2 लील 2 बेटिस सेविल 3 पोर्टो 0 मैनचेस्टर सिटी 2 रियल मैड्रिड 2 इंटर मिलान 1। आज के मैच बार्सिलोना का मुकाबला फेयेनूर्ड से होगा। स्टुटगार्ट वाइकिंग

लिवरपूल अपने अनफील्ड रोड में होगा एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, नापोली आर्सेनल, पेरिस सेंट जर्मेन डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन स्लोवान ब्रातिस्लावा का स्वागत करेगा स्पोर्टिंग गलातासराय, और कल के मैचों में मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा साबा टीम के खिलाफ। साबा की टीम अज़रबैजान की टीम है, पहली बार चैंपियंस लीग में खेल रही है। इंग्लैंड में काराबाओ लीग कप में कल बोर्नमुथ की जीत हुई 4-0 से लिंकन सिटी के खिलाफ। क्रिस्टल पैलेस ने भी अपना मैच जीता 3-0 से मिडल्सब्रो के खिलाफ। लेटन ओरिएंट 1 ब्रैडफोर्ड सिटी 3, सन्डरलैंड 1 हल सिटी 0, मिलवॉल 0 न्यूकासल यूनाइटेड 1, विलॉक का गोल दी मैगपाइज के लिए। आज इसी प्रतियोगिता में काराबाओ लीग कप में चेल्सी खेलेगा लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में ब्लैकबर्न 1 शेफील्ड यूनाइटेड 2, कार्डिफ 1 स्टोक सिटी 1, साउथहैम्पटन ने 3-1 से स्वानसी सिटी को हराया। वाटफोर्ड 2 प्रेस्टन नॉर्थ एंड 1, रेक्सम 1 बर्नले 1, बोल्टन 2 वेस्ट हैम यूनाइटेड 3। वेस्ट हैम यूनाइटेड इस लीग चैंपियनशिप में अभी पहले पोजीशन पर हैं। बानोदो की शॉर्टलिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के साथ जूड बेलिंगम, डेक्लन राइस भी हैं, साथ में लियोनेल मेसी और वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन की टीम से 6 खिलाड़ी हैं। लामिन यमाल, फेरान टोरेस, पॉल कुबासी, फिर कुकुरेला, रोड्री, फाबियन रुइज। नोमिनीज में डेम्बेले, ब्रूनो फर्नांडेस, गैब्रियल, अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे भी हैं। इस साल फेवरेट हैं हैरी केन, पर वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम स्पेन से रोड्री या फाइनलिस्ट मेसी भी हैं। टेनिस, यूएस ओपन में सेमीफाइनल में पहुंची अरीना सबालेंका, 7-6, 3-6, 7-6 से सबालेंका ने नोस्कोवा को हराया। लड़कों में चाफोए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ। आज क्वार्टर फाइनल में जेंग रिबाकिना, अगर रिबाकिना जीतती है तो वो वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। मीरा अंद्रीवा का मुकाबला कोको गोफ से है। इसी समय जेसिका पेगुला का मुकाबला एमा नावारो से है। कार्लोस अल्काराज खेलेगा बेन शेल्टन के खिलाफ। कारेन काचानो वर्सेस अलेक्जेंडर ब्लॉक्स। और क्रिकेट में विमेंस एशिया कप में कल बांग्लादेश ने यूएई को हराकर टीम इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच बुक किया। मतलब सेमीफाइनल कल बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, और फ्राइडे यानी परसों पाकिस्तान खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ। और मॉरिशस में क्रिकेट आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का फाइनल इस संडे को ही है, इस पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
2: बुधवार 9 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 7 बज चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं। सुमिता की ओर से सुप्रभात आप सभी को। तो चलिए, यहाँ पर नया दिन अपने आप में नई उत्साह, नई ऊर्जा लेकर आता है, और ये दिन होता है अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का, अपने सपनों को साकार करने का और सफलता की ओर बढ़ने का। तो चलिए, सफलता ही सफलता आपके साथ हो ऐसी कामना हम करते हैं, और सिर्फ सफलता ही नहीं, ढेर सारी खुशियाँ भी हो, अपनों का प्यार भी हो, और जो कुछ आप चाहते हैं आज के दिन में आपको वो सब कुछ मिले। तो चलिए, इन्हीं अच्छे अच्छे कामनाओं के साथ आज के इस सुबह का नजराना प्रोग्राम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अभी से लेकर 9 बजे तक चलने वाला है ये म्यूजिकल सफ़र, और आपका प्यार भरा साथ हमें हमेशा मिलता है, इसके लिए शुक्रिया, शुभ दिन आप सभी को। तो चलिए, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
3: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
4: जो मनुष्य युक्त आहार विहार करता है और सब कर्मों में युक्त चेष्टा करता है तथा सोना और जागरण भी युक्त करता है, उस मनुष्य का योग सब दुखों से दूर करने वाला होता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 7:10, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीईबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। तमारा के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, तमारा के खास

0: कर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक एवेन्यू मॉल है मौसलमा इन्वेस्टर्स। यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 9 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से सुबह के 8:30 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच सुबह के 8:30 से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही लागोलित के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। लागोलित के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक मौसलमा लाफ्लेश मौसलमा ग्रॉन काजनोयाल यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 10 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से सुबह के 8:30 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही बेलिया के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है बेलिया के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक बेलिया के खासकर पिछी शिमे क्लेंजी रोड रॉयल रोड एमसीबी के पास शिमे गाराज यहाँ पर और आसपास के गलियों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी कल गुरुवार 10 सितंबर को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही कोतरेल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कोतरेल के खासकर रॉयल रोड लखू रोड और आसपास के इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 9 सितंबर को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही विलाज दे सेमोते बिजुकाप और स्वाजी यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 10 सितंबर को सुबह के 9 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही लेबुशों के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है लेबुशों के खासकर लाशापेल लेन सोसिएटे ला कॉन्फिडेंस लगामेल कॉन्स्टांस लेन यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 10 सितंबर को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी कुछ विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

तो चलिए, जितने भी भक्त गणेश चतुर्थी इस पावन पर्व के तैयारियों में लगे हुए हैं, आप सब पर गणेश जी की कृपा और उनका आशीर्वाद बना रहे। और इसी के साथ चलिए, अब बारी है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना, एवरग्रीन तराने आपके लिए हम चला रहे हैं। 7:40 से हम शामिल करेंगे आपके डेडिकेशंस, जिसके लिए आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेजेस हमें सवेरे से मिल रहे हैं। 8:00 आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज़, खेल खेले हम। और फिर 8:30 आप सुन पाएंगे परिवार नियोजन इस कार्यक्रम को, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। 8:50 पर आप हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे किरण जानकी जी से। और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 9:00 आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10:00 होगा समाचार, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी से। 11:00 होगा समाचार, उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। दोपहर के 12:00 वंदना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम सौंदर्य लाहिरी। 12:30 प्रीति की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे

मराठी भाषा में कार्यक्रम, दोपहर के 1 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी आरसी। 1:45 बजे आप अमिता की प्रस्तुति में सुन पाएंगे गुजराती भाषा में कार्यक्रम। 2:30 बजे से उषा आप सभी का साथ देगी आपकी पसंद इस कार्यक्रम के अंतर्गत। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद ये कार्यक्रम जारी रहेगा, चलेगा 4 बजे तक। दोपहर के 4 बजे आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम विविधा शिरीष की प्रस्तुति में। 5 बजे फारे की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे खेतीबाड़ी नामक कार्यक्रम। 5:15 बजे से अंताक्षरी इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रोशन और उषा द्वारा। 6 बजे समय होगा पूरा समाचार का। 6:30 बजे हक्का भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड। 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कलयवानी से। 7:30 बजे ग्रीशालिनी प्रस्तुत करेगी तेलुगु भाषा में प्रोग्राम। 7:50 पर मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे नितिन बापू गीत गंगा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रोशनी की प्रस्तुति में। 8:40 पर उर्दू प्रोग्राम महफिल शब इसे प्रस्तुत करेगी अविनाश। 9:00 से 11:00 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस कार्यक्रम में। 11:00 बजे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे गिनिशा द्वारा। और 12:00 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की, और अभी के लिए चलिए गानों का ये सिलसिला आगे ले जाते हैं।

यकीनन ज़िंदगी में कभी कभार कई बार बहुत से ऐसी चीज़ें हो जाती है, बहुत से ऐसे वारदात हो जाते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है, उस पर हमारा जीवन ज़रूर निर्भर करता है। तो बस जो भी हो रहा है, पहले तो शांत मन से उसे समझने की आवश्यकता होती है, और जब समझ जाते हैं बात को तो फिर उस पर हमें निर्णय करना होता है। क्योंकि शांत मन से लिया गया हर फैसला, हर निर्णय हमें जो है हमारे जीवन को बेहतर बनाने की एक कोशिश की ओर ले जाता है। क्योंकि गुस्से में जब भी हम कोई फैसला ले

करते हैं या उत्तेजित होकर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। तो जहाँ तक हो सके अपने इस मन को शांत रखें। और अभी के लिए चलिए गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर अगला तराना बादल फिल्म्स का है, एस जानकी और एस पी बालासुब्रमण्यम जी की आवाज़ों में। और इन गानों को आप पसंद कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं।

यकीनन कभी भी कोई भी वादा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वादे टूटते हैं तो रिश्ते में भी दरार आ जाती है, और जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो दूरियां बन जाती है, और इन दूरियों से कभी किसी को कोई खुशी नहीं मिलती। तो जहां तक हो सके हमें अपने सभी रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, सभी गलतफहमियों को दूर करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। चलिए, अभी के लिए आपका ढेर सारा प्यार और साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर चलिए, बहुत सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स, यहाँ पर एक सुंदर सा मैसेज आया है, हैव ए ब्लेस्ड डे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है माला जी, आपके इस सुंदर मैसेज के लिए। चलिए, ये रिश्ता हमारे लिए भी बहुत ख़ास है, और ऐसे ही हम एक दूसरे का साथ देते रहें, और इन रिश्तों के बिना हम कुछ नहीं हैं, है ना, इन अपनेपन के बिना हम कुछ नहीं हैं। यहाँ पर नमस्कार सुमी जी, गणपति बाप्पा मोरिया, आपको भी मॉडल बी ऐसे अनिता जी ने ये मैसेज भेजा है, और गाना जाएगा इनकी ओर से करुणा, अमृता, कविता और उनके सभी दोस्तों के लिए जो इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवरानी जी ग्रामपुआ से साथ दे रही है, कह रही है कि गाने इतने अच्छे हैं कि उनको सुनकर पुराने समय की याद आ गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओकुले से अमृता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की मंगल कामनाएं दे रही है अभी ही से, और चलिए भगवान सबका कल्याण करे ऐसी कामना हम करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सुबी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शुभ मॉर्निंग सबको, कह रही एक गाना इनके फैमिली के लिए हो जाए, सभी काम पर जा रहे हैं, तैयारियों में लगे हैं, तो आप सभी को शुभ दिन हम कहेंगे। और अपनों का प्यार होता है तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। सो भूलेगा नहीं, 4028085 है नंबर हमारा आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, साथ ही आपके मैसेजेस के लिए 5251705।

तो चलिए यहाँ पर डेडिकेशंस का सिलसिला जारी है. आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस की बरसात हो रही है यहाँ पर. तो जितने भी सुनने वाले, आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, अगर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, आजकल तो शादियों का सीज़न भी है, तो कोई ख़ास मौका आप अपनों के साथ मना रहे हैं, तो आपकी इन खुशियों में हम भी शामिल हो रहे हैं. यहाँ पर नातिन निधि अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है जो फ्रांस में है. नानी श्यामा की ओर से आपको निधि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके नाम का, और खासकर आपके मामा नीतू की ओर से भी. आपकी बहन है विश्नी, मौसा है अनिल, साथ में है मनोज, आंटी है श्वेता, रेशमा, परी, यानिश और सभी मिलाप परिवार की ओर से. साथ में है अंश और अक्षय, यश है. सभी मिलाप परिवारों की ओर से निधि आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. भाई अबिस का जन्मदिन था, अबिस जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खास

खासकर आपके सभी भाइयों की ओर से, सभी बहनों की ओर से खास शुभकामनाएं आई है, आपकी बीवी सबीना की ओर से और जैबुन जी और कासम जी की ओर से, आपके पूरे परिवार की ओर से, साथ में हाजरा की ओर से भी। और यहाँ पर साजिद जी भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। साजिद जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। नौशीन जी की ओर से, जहीरा भी, असगर आपके बच्चों की ओर से, जैबुन जी और कासम जी की ओर से, सभी मखदूम बकस परिवारों की ओर से ढेर सारा प्यार यहाँ पर आपके नाम। और चलिए, यहाँ पर जन्मदिन का मौका बहुत ही खास होता है और अपनों के साथ जब हम ऐसे स्पेशल ओकेशन को मनाते हैं तो इसकी जो है अहमियत और भी बढ़ जाती है। और यहाँ पर वाशी जो है 20 साल की हो रही है। आपको ढेर सारा प्यार और जन्मदिन की शुभकामनाएं वाशी मामा आरती और पापा रवीन की ओर से। नानी कंचन है, साथ में है अनीता, मीता, शकुंतला, साधना, नाना है प्रकाश, कमल, मामू है रवीश, कौशल, ऋषि, मौसी है प्रीति, मनीषा, भाई है अभी, आरुष, रियांश, पूरे परिवार की ओर से वाशी आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। और चलिए, आप सबकी खुशियों में यहाँ पर हम भी शामिल होते हैं।

चलिए एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना जन्मदिन। यहाँ पर दिनकर रघु भी अपना बर्थडे मना रहे हैं और आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं आई है दिनकर आपकी नानी मीराबाई धर्मिया की ओर से। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके नाम, ढेर सारी शुभकामनाएं सभी रघु परिवार की ओर से, सभी पायदिया परिवार की ओर से और सभी धर्मिया परिवारों की ओर से। यहाँ पर लीला जी बौशेरी से हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि गणेश चतुर्थी की तैयारियों में लगी हुई है और साथ में हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी, ये जो आने वाला गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और भगवान गणेश आपकी भी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे, ऐसी कामना हम करते हैं। अब बड़े ही प्यार से वाकवा से शोभा जी हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि काफ़ी ठंड है वहाँ पर, इतनी ठंड के कभी कभार बर्दाश्त नहीं होता है। तो चलिए ऐसे बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखिए शोभा जी और हमारे साथ जुड़ी रहिए। गाना जाएगा आपकी बेटियों के नाम, अनुषा है, श्रवीना है, साथ में आपके पति भी हमारा साथ दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। और गाना जाएगा सभी पूरन परिवारों के नाम, सभी दोस्तों के नाम। और इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर और फिर समाचारों के उस पार हमारी आपकी मुलाकात जो है होगी सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। तो आप यूं ही हमारा साथ देते रहिए और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं।

0: नमस्ते सब कोई के भोजपुरी के समाचार में हमने आप सब कोई के स्वागत करत है। जहाँ मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र ले सार्वजनिक पहुँच के स्थान के खोजे खातिर एगो नवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम करल गल बाल। अपने स्थामा में कल स्थल का दौरा करल गल आवास और भूमि मंत्री शाकिर मोहम्मद बोलन की अभी खातिर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नवा मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिम आर फ्लाक इलाका खातिर उपलब्ध जेके बाद में टापू के दूसर इलाका तक भी विस्तारित करल जाए। आज 9 सितंबर के बयान रुपया लावाल की 162वां पुण्यतिथि मनावल जाता। हर बरिस नियन काल भी बहुते जना मॉरिशस वासी जी हाँ श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर और प्रार्थना खातिर सैखवा में प्यालावाल के मकबरे ले तीर्थ यात्रा कर लन जा। SSON अस्पताल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित मरीज लोग खातिर एगो विशेष वार्ड कायम करल गल बाई। सुविधा मरीज लोग के विशेष जरूरत के मुताबिक देखभाल और इलाज उपलब्ध करावल जाए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पुलिस में रिवॉर्ड मनी के व्यवस्था के और मजबूत करे चाहता, जिनमें कोनो भी तरह के दुरुपयोग के रोकल जा सकी। FCC के महानिदेशक संजय दाऊदारी काल प्रेस से बात करलन। उ बोलन कि मामला के जटिलता के बावजूद ई जांच के 18 महीना में पूरा करल गल बा। उ बोलन कि पहले जांच में जस्टिस समय लगे, मगर अब ऐसे नहीं होता। संजय दाऊदारी के मुताबिक संस्था खाली जांच करे तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था के खामी के दूर करे आरोकर में सुधार लाने खातिर समाधान भी तलाशेला। और ई जांच के सिलसिला में कई गो पुलिसकर्मी और पूर्व पुलिस आयुक्त अनिल कुमार दीपक के गिरफ्तार करल गल रहल। बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करे के उद्देश्य से ही FCC के एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव डिवीजन पुलिस संगे मिलके काम करता। दूसर देश के खबर में अमेरिका सेंट्रल कमांड बोले बा कि गल 2 दिन ले तेहरान द्वारा एगो अमरीकी युद्धपोत के दुहला निशाना बनाई के जवाब में अमेरिका सेना 5 ईरानी तेल टैंकर पर हमला कर ली बा। तेकरी संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आठ बजकर 3 मिनट होलबा मरनी की खबर सुना जा। गांधी रोड बेल्टिया में 83 बरिस के कथों के श्रीमती सुशील ललित जिनका सब कोई सुभावती नाम से जान रहन जागुजर कर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बज के आधा उनकर पोता गिरीश के घरे गांधी रोड बेल्टिया से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। काफुखो में 92 बरिस के 92 years old श्रीमती विद्यावती मंगरा पैदाशी नाम बोनोमली और जिनकरा सब कोई मिसलोलो नाम से जानत रहन जा गुजर गढ़ हवन उनकर माती आज दिन के 2 बजे

आज दिन के दुबजन कर घरे कौफू खो से उठावल जाए और कौफू खोवे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टिडिया 2 PM। रॉय रोड ला फ्लोरा में 93 बरिस के 93 ईयर्स ओल्ड श्री रूप नारायण मौघा, श्री रूप नारायण मौघा जिनकरा सबको ललन नाम से जस्ती जाना ललन झा गुजर घर हवन उनकर माती आज दिन के 12 बजे उनकर घरे रॉयल रोड दे ला फ्लोरा से उठावल जाए और घाव बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे एट नून। बॉम्बे स्ट्रीट पिचिराफ्रे में शिवाला के भीरी 54 बरिस के सकन काथों के श्रीमती दामयंती रघुबर पैदाशी नाम सतन और जिनकरा सब कोई रीता नाम से जस्ती जानटलन जागुसर गर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बज के आधा उनकर बेटा अनिकेत रघुबर के घरे बॉम्बे स्ट्रीट पिचिराफ्रे से उठावल जाए और मो मास्काल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 1:30 PM। रिवालों रोड खैबकिया में 81 बरिस के 89 के श्रीमती धनवंती बालदाओ जिनकरा सबको कलावती नाम से जस्ती जाना ठहलन जाग गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 3 बज के आधा आज सांझ के 3 बज के आधा उनकर बेटा सुनील महादेव के घरे रिवालों रोड खैबकिया से उठावल जाए और खैबकिया वे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 3:30 PM। रॉय रोड श्वासी बेजकाप में 89 बरिस के 89 के श्रीमती दयावंती हरी पैदाशी नाम करदारी और जिनकरा सबको हीरा नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर गर हवन इनकर माती आज दिन के 11 बजे इनकर बेटा पापुल हरी के घरे रॉय रोड श्वाजी बेजकाप से उठावल जाए और सहमौते बेजकाप के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 11 AM। मोसेलमा उसाई फों जू साक में 74 बरिस के 74 के श्री जॉन पुल इल्बेयर जिनकरा सबको जॉन पुल नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बज के आधा उनकर पत्नी सविता इल्बेया के घरे मुसलमान उसाई फों जू साक से उठावल जाए यार दाहुची के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 1:30 PM। बॉम्बे रोड प्रोविडेंस का चेवनीतिया में 72 बरिस के 72 के श्रीमती वी रामा चिदम्बरम पैदाशी नाम कुंजमाले और जिनकरा सबको मिनीदा नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर गर हवन कर माती आज फजर के 9 बज के आधा उनकर बेटा कैंडन चिदम्बरम के घरे बॉम्बे रोड भोविदास का चमरीतिया से उठाकर में जिनका उदिमास के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 9:30 AM। रॉय रोड न्यू ग्रोव में 79 बरिस के ससन जिसने वाके श्री ओजागीर सिंह साकी सिंह जिनकरा सबको विष्णु नाम से जानत रलन जा अर्जुन पहले DWC में इंस्पेक्टर का काम करे गुजर गर हवन उनकर माती आज फजर के दस बज के आधा उनकर बहिन श्रीमती हरावंती साकी सिंह के घरे रॉय रोड न्यू ग्रोव से उठावल जाए और प्रेम मायाओं के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 10:30 AM। और गांधी रोड बनमिया में 76 बरिस के 76 के श्री अमृतलाल बिकाऊ जिनकरा सबके नारायण नाम से जस्ती जानत रलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 12 बज के आधा उनकर बेटा रामनाथ सिंह बिकाऊ के घरे गांधी रोड बनमिया से उठावल जाए और लावाच के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 12:30 PM। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने के सहानुभूति बातें

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: ये है रेडियो मॉरिशस.

0: बुधवार 9 सितंबर रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत है, आप सभी का वेलकम हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में। और सुबह का नजराना इस प्रोग्राम के दूसरे आवर में होता है एक छोटा सा क्विज हर बुधवार को, जहां पर आप बड़े ही प्यार से हमारा साथ देते हैं। तो आज का भी क्विज बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई क्विज बॉलीवुड से जुड़ा होता है आप लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है, ये हमने देखा है। तो चलिए आज बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको हमें उनका नाम बताना है। जी हाँ, आपको हमें उनका नाम बताना है। ऐसे 90 के सालों में जो है इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, 90 के सालों में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और 3 दशकों से भी ज़्यादा फैले अपने करियर में रोमांटिक एक्शन ड्रामा जैसी फिल्मों में इन्होंने काफ़ी फिल्में की है। और समय के साथ साथ एक्शन फिल्में करते करते इनका नाम भी पड़ा खिलाड़ी कुमार। अगर आपने अंदाज़ा लगाया होगा तो आप हमें बताएं कि हम किन का नाम जो है ढूंढ रहे हैं, यानी कि आज कौन से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और चलिए यहाँ पर फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले कॉलर की ओर। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: कौन है जी?
1: मैं दीपा बोल रही हूँ कौतूहल से।
0: कैसी है दीपा जी?
1: मैं ठीक हूँ।
0: और क्या है जवाब?
1: अक्षय कुमार।
0: ओके, अक्षय कुमार की कोई फिल्म जो आपको पसंद है?
1: हाँ, बहुत।
0: कौन सी?
1: खिलाड़ी।
0: ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, आपने हमारा साथ दिया इसके लिए। शुभ दिन, थोड़ी देर बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है। ऑलराइट, धन्यवाद। okay, नमस्ते। चलिए एक और श्रोता, एक और कॉलर। हेलो, नमस्कार। हेलो जी, नमस्ते, कौन है?
2: मैं सुमति हूँ वाकवा से।
0: कैसी है सुमति जी?
2: अच्छी हूँ। और
0: बिल्कुल ठीक है सुमति जी, और बताइए क्या है जवाब?
2: जवाब है अक्षय कुमार।
0: ओके, और अक्षय कुमार की कोई खास फिल्म जो आपको पसंद है या कोई ऐसी बात?
2: दो फिल्म बहुत अच्छी लगी।
0: कौन सी?
2: और एक रिश्ता।
0: फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ बड़ी धीरे आ रही है।
2: रुस्तम और एक रिश्ता मुझे बहुत।
0: ओके, रुस्तम और एक रिश्ता। चलिए आपके जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ, बताएंगे कि सही जवाब क्या है। धन्यवाद। और एक और श्रोता यहाँ पर। हेलो, नमस्ते।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन है?
3: नमस्ते सुमी जी, मैं देवी हूँ।
0: कैसी है देवी जी?
3: ठीक हूँ, और आप कैसी?
0: बिल्कुल ठीक है देवी जी, और बताइए क्या है जवाब?
3: तो मेरा जवाब है अक्षय कुमार जी।
0: ओके, कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको अक्षय कुमार की बड़ी अच्छी लगती है?
3: मैंने उसका फिल्म देखा था बेवफा, सिनेमा घर में परिवार के साथ।
0: ओके,
3: और

0: बहुत सारे फिल्म हैं जैसे धड़कन,
1: हाँ
0: खिलाड़ी आदि, बहुत
1: ओके
0: सारे
1: okay.
0: कॉमेडियन फिल्म्स हैं।
1: हाँ उनकी कॉमेडी फिल्मों में भी काफ़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, शुभ दिन
0: ओके थैंक यू,
1: आपको।
0: शुभ दिन आपको भी।
1: ओके जी हाँ, अक्षय कुमार की बात करें तो एक समय था जहाँ पर ये रोमांटिक हीरो के रूप में उभर कर आए थे। 90s का साल था जहाँ पर काफ़ी एक्शन फिल्में भी करते थे, और 2000 के दौर में जो है सालों में इन्होंने काफ़ी जो है कॉमेडी फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। तो हर तरह के फिल्मों में इन्होंने जो है अपना बेस्ट दिया है, लोगों ने इनके एक्टिंग को बहुत ही सराहाया है। चलिए एक और कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार,
2: हेलो नमस्कार सुमित जी जी
1: कैसी है राधा जी?
2: मैं अच्छी हूँ, बारिश के अलावा
1: जी क्या करें,
2: क्या
1: बरसात की भी अभी जहां हम
2: करें
1: हैं बहुत
2: मौसम।
1: जरूरत
2: हाँ
1: है।
2: सब सब कुछ हमें सहना पड़ता है ना
1: जी
2: जी।
1: जी
2: मेरा
1: जी
2: भी जवाब है अक्षय कुमार, मैं उनकी फिल्में देखना बहुत पसंद करती हूँ, खासकर उनकी कॉमेडी फिल्में,
1: ओके
2: जैसे वो वेलकम है, वो उनका गाना है प्यार से तेरा फोन नंबर या मेरा हो गया या पता नहीं क्या, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने को। और वैसे ही वो देखने में भी एक अच्छे व्यक्तित्व
1: हाँ
2: वाले
1: बिल्कुल,
2: व्यक्ति
1: अक्षय कुमार
2: लगते
1: की
2: हैं।
1: बात करें तो वो अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाने जाते हैं।
2: हाँ केवल उनकी फिल्मों से नहीं, मतलब कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से उनको देखें
1: जी
2: तो वो स्वभाव से बहुत अच्छे दिखते हैं।
1: जी तो चलिए बहुत
2: मैं
1: बहुत
2: बहुत पसंद
1: धन्यवाद।
2: करती हूँ उनकी फिल्म। धन्यवाद
1: ओके
2: आपको और शुभ दिन।
1: शुभ दिन। तो चलिए बिल्कुल सही राधा जी ने कहा, मतलब जिस एक्टर का नाम हम ढूंढ रहे हैं वो अपने आप में डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। खाना पीना समय पर होना चाहिए, सोना समय पर चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर भी ये बहुत सारी बातें करते हैं, और लोग जो है इनके चाहने वाले जो है इनके फैंस जो है इनकी इन सभी बातों से भी बहुत प्रभावित होते हैं। चलिए एक और कॉलर की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो नमस्कार, हेलो नमस्ते
2: नमस्ते,
1: जी, कौन है,
2: हम तारा हैं।
1: कैसी है तारा जी?
2: हम ठीक है, आप ठीक
1: बिल्कुल
2: हैं?
1: ठीक है तारा जी, और क्या है जवाब?
2: जवाब है अक्षय कुमार।
1: ओके, और अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म आपने देखी है?
2: उसका ज्यादा फिल्म देखी है, बस उसके सभी फिल्म सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है, सभी
1: ओके
2: गाना।
1: जी,
2: हाँ
1: बहुत
2: सभी गाना।
1: बहुत धन्यवाद तारा जी आपके इस जवाब के लिए। और यहाँ पर जवाब हमें मैसेज के ज़रिए भी मिलते हैं। तो यहाँ पर सुमी जी जवाब है अक्षय कुमार, उनकी सभी फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये जवाब आया है अनीता जी की ओर से, फ्लिक ऑफ लाक से। तो चलिए जी हाँ, जो जवाब हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया, सभी ने सही सही जवाब दिया। ऑब्वियसली आज 9 सितंबर, 9 सितंबर को अक्षय कुमार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 9 सितंबर 1967 में जो है इनका जन्म हुआ था, और बतौर एक्टर 90s के सालों में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। ऐसे ये इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि ये अपने बलबूते पर जो है इन्होंने इतना नाम कमाया है, और सौगंध इस फिल्म से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद खिलाड़ी इस फिल्म में इनका बहुत नाम हुआ था, और खिलाड़ी के बाद काफ़ी खिलाड़ी फिल्म की सीरीज़ आई, जैसे कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वगैरह फिल्में जो लोगों ने बहुत पसंद किया, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, फिर मोहरा, सुहाग, संघर्ष, जानवर, धड़कन, अंदाज, ऐतराज, नमस्ते लंदन जैसी फिल्में, और वहीं पर काफ़ी कॉमेडी फिल्मों में भी जो है इन्हें बहुत पसंद किया गया। हेरा फेरी, मुझसे शादी करोगी, फिर वेलकम, सिंह इज किंग, गरम मसाला जैसी फिल्में, इन सभी फिल्मों में भी इन्होंने बहुत नाम कमाया। और वहीं पर एक समय ऐसा आया कि इन्होंने जो है काफ़ी सोशल इश्यूज़ पर भी इन्होंने फिल्में बनाई और फिल्मों में काम किया, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, और फिर ये जो है काफ़ी ऐसी फिल्में भी बनाते हैं जो देश फिल्मों में काम किया है इन्होंने जो देशभक्ति पर आधारित रही, और लोगों ने इन फिल्मों को भी बहुत पसंद किया, जैसे कि हॉलीडे, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, और उसके अलावा केसरी, मंगल मिशन जैसी फिल्में। और यहाँ पर तो चलिए अक्षय कुमार को इनके सभी फैंस की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और खिलाड़ी फिल्म का ये गाना आप सभी लिसनर्स के नाम, आप सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने इस क्विज में इतने प्यार से हमारा साथ दिया, धन्यवाद।

0: और चलिए इसी के साथ देखते ही देखते सवेरे के 8:30 बज चुके हैं और अभी के लिए समय हुआ है हम बढ़े परिवार नियोजन इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मिस्टर भगन, तो आइए उनको सुनते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोताओं, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे बात किया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, जो कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इस साल का विषय है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस, यानी कि अलग अलग संदर्भ में समान आकांक्षाएँ। यूनाइटेड नेशन ने 3 उप विषय का उल्लेख किया है, जो कि पहला है ग्लोबल सॉलिडारिटी, दूसरा है साझा चुनौतियाँ और तीसरा है युवा इनोवेशन। अलग अलग देशों के युवा शिक्षा, रोजगार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेश और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपस में जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। युवा स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों के लिए व्यवहारिक और रचनात्मक समाधान विकसित कर रहे हैं। किसी भी देश का युवा उस देश के विकास का सशक्त आधार होता है, लेकिन जब यही युवा अपने सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को भूलकर आगे बढ़ता है तो देश में बहुत परेशानी होती है। मॉरिशस में लगभग 25% जनता युवा है, यानी कि 25 साल से नीचे। आवश्यक है कि आज हमारे देश की युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति का भागीदार बनाना, उनमें अच्छे संस्कार, उचित शिक्षा एवं उन्हें बुरी आदतों जैसे नशा, हिंसा इत्यादि से बचाना है। और हमारे युवा वर्ग को वृद्ध लोगों से बहुत सारे अनुभव सीखने को मिल सकता है। जहां युवा वर्ग एनर्जी से भरपूर हैं, वही वृद्ध लोग अनुभव से भरपूर हैं। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे मॉरिशस में युवाओं की चुनौतियों के बारे में, समस्याएं, संभावनाएं और समाधान। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनके सपनों में देश का भविष्य छिपा होता है, लेकिन आज का युवा कई तरह की चुनौतियों से भी गुजर रहे हैं। तो आइए आज बात करेंगे उन सवालों पर जो मॉरिशस के युवाओं के सामने हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चुनौती है रोज़गार और करियर। शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ रही है और युवा बेहतर नौकरी तथा बेहतर जीवन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिलना हमेशा आसान नहीं होता। कई युवा सोचते हैं, मैंने इतनी पढ़ाई की लेकिन अब क्या? क्या मुझे मॉरिशस में ही अपने करियर के अवसर मिलेगा? क्या मुझे विदेश जाना चाहिए? ये केवल रोज़गार का सवाल नहीं है, ये युवाओं के भविष्य और आत्मविश्वास से भी जुड़ी हुई सवाल है। दूसरी बड़ी चुनौती है शिक्षा और कौशल के बीच का अंतर। आज सिर्फ डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है। बदलती दुनिया और डिजिटल स्किल्स, तकनीकी ज्ञान, संचार क्षमता, रचनात्मक सोच और व्यवसायिक कौशल भी ज़रूरी है। हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उन्हें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन और रोज़गार की दुनिया के लिए तैयार करें। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और तनाव। पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चिंता, आर्थिक समस्याएं, परिवार की अपेक्षाएं और अपने भविष्य से लेकर असमंजस, ये सब युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। कई बार युवा अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं करते,

हमें ये समझना होगा कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है, मदद मांगना साहस है। परिवार, शिक्षक, दोस्त और समाज सभी की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं को सुने, समझें और उनका साथ दें। एक और गंभीर चुनौती है नशे और अन्य हानिकारक आदतों का प्रभाव। जब युवा बेरोजगारी, अकेलापन, तनाव या गलत संगत का सामना करते हैं तो कभी कभी वे नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हमें केवल युवाओं को दोषी देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आखिर हमारे युवाओं को स्वास्थ्य विकल्प और सकारात्मक अवसर कितने मिल रहे हैं? खेल, संगीत, कला, स्वयं सेवा, प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के अवसर दे सकती है। और अब बात उस चीज़ की है जो आज लगभग हर युवा की ज़िंदगी का हिस्सा है, यानी कि डिजिटल जीवन और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ज्ञान, संपर्क और अवसरों का शानदार माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग तुलना, चिंता और आत्मविश्वास की कमी को भी बढ़ा सकता है। इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर जिंदगी वास्तविक नहीं होती, इसीलिए युवाओं के लिए ज़रूरी है कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल साधन के रूप में करें, अपने पहचान के रूप में ना करें। कुछ युवक इंटरनेट और सोशल मीडिया में साइबर बुलिंग और ऑनलाइन यौन शोषण का भी सामना करते हैं। मॉरिशस के कई युवा बेहतर शिक्षा और करियर के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं। विदेश जाना गलत नहीं है, दुनिया से सीखना और अनुभव हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है क्या हम ऐसा मॉरिशस बना सकते हैं जहां हमारे युवा यहां रहकर भी अपने सपनों को पूरा कर सके। इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और स्वयं युवाओं सभी को मिलकर काम करना होगा। एक और चुनौती युवाओं के लिए है स्वास्थ्य और जीवन शैली। मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं बढ़ रही है युवकों में। पर्यावरण और अन्य कारण से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के असर युवाओं में देखी जाती है। कुछ युवती लड़कियां गर्भवती हो जाती है और कुछ हिंसा और शोषण का सामना करते हैं। अगला चुनौती युवकों के समक्ष है क्लाइमेट चेंज और उनसे जुड़ी हुई परेशानियां। जलवायु परिवर्तनों से हमारे जीवन में कई असर देखा जाता है, तो समाधान क्या है? समाधान केवल सरकार या किसी एक संस्था के पास नहीं है। हमें युवाओं को बेहतर करियर, मार्गदर्शन, व्यवहारिक कौशल, प्रशिक्षण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और सुरक्षित सामाजिक वातावरण देना चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? युवकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, नई चीज़ें सीखिए, अपने कौशल को विकसित करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गलत संगत से दूर रहें, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और सबसे महत्वपूर्ण है अपने विचार व्यक्त करें। प्रिय श्रोताओं, युवा केवल देश का भविष्य नहीं है, युवा आज भी देश का वर्तमान है। उनकी समस्याओं को सुनना, उनके सपनों को समझना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर देना हम सभी की जिम्मेदारी है। मॉरिशस के युवाओं के सामने चुनौतियाँ ज़रूर हैं, लेकिन उनके पास प्रतिभा, ऊर्जा और सपने भी हैं। ज़रूरत है तो बस सही अवसर, सही मार्गदर्शन और सही समर्थन की। मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने युवाओं के लिए एक नया सेंटर का निर्माण किया है जिसका नाम है मोजेन यू फ्रेंडली सर्विसेज, यानी कि एस्पास मोजेन। 9 जुलाई 2026 को ईयू और आईपीपीएफ के सपोर्ट और अन्य महानुभावों के प्रेजेंस में इस सेंटर का लॉन्चिंग किया गया था, फर्स्ट फ्लोर इकाइस बिल्डिंग पोर्टविस में। मोजेन यू फ्रेंडली सर्विसेज में बच्चों और युवाओं के लिए कौन से सेवाएं उपलब्ध हैं? यहां आपको कई सेवाएं मिलेंगी, जैसे कि मनोवैज्ञानिक समर्थन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट, स्वास्थ्य सेवा और युवाओं के यौन और प्रजनन सेवा, HIV और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्टिंग, पीयर एजुकेशन एंड ग्रुप सपोर्ट, डिजिटल एक्सेस जेन ज़ी चैटबॉट के माध्यम से,

मोजेन यू फ्रेंडली सर्विसेज का उद्देश्य क्या है? हमारा ये उद्देश्य है कि युवाओं और किशोरों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य प्रदान करें। इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने दो ज़रूरी सेवा को आपके लिए लाए हैं। पहला है युवाओं के लिए एक सेंटर जहां उनको यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में कई सेवा मिल सकता है, और दूसरा है जेंजी चैटबॉट जिसका इस्तेमाल से बच्चों और युवाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में कई ज़रूरी जानकारी प्राप्त हो सकता है, जैसे कि गर्भावस्था, यौवन विकास, यौन शोषण, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, मादक द्रव्य का गलत असर, HIV, AIDS, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास, परिवार और प्यार, गर्भनिरोधक तरीके और उसके लाभ हानि इत्यादि। जेंजी चैटबॉट का इस्तेमाल बहुत आसान है। युवा या किशोर को बस genzimauritius.com वेबसाइट में जाना चाहिए और वहाँ पे आपको एक चैटबॉट मिलेगा, और अगर उस युवा को प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए तो वो उस चैटबॉट से पूछ सकता है, उसके जवाब मिलेगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो उसको फ़ोन नंबर भी मिलेगा जिस पर वो संपर्क कर सकेगा। वो चैटबॉट इंग्लिश, फ्रेंच और क्रियोल लैंग्वेज में है और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। आपको कोई भी जज नहीं करेगा कि आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इसमें कॉलमिंग म्यूजिक है। जब समस्या गंभीर है तो आपको फ़ोन नंबर मिलेगा संपर्क के लिए और एक अफसर आपके सहायता के लिए उपलब्ध होगा। ये ज़रूरी है कि आप सब प्रिकॉशन लें अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पे, ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े बाद में जाकर। खासकर युवाओं के लिए ध्यान रखें कि आप और आपके पार्टनर 18 साल उम्र से ज़्यादा के हैं यौन संबंध बनाने से पहले। आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस HIV AIDS के बारे में जानें और उससे बचने का तरीका जानें। आप एक कंडोम का सही इस्तेमाल करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस HIV AIDS से बचने के लिए। आप रेगुलर टेस्ट करवाते रहें अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती यौन संबंध करने का प्रेशर डाले तो उसे यौन शोषण कहते हैं। आप इस बारे में रिपोर्ट करें। आप अपने पार्टनर से वफादार रहें, ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स ना बनाएं, क्योंकि इससे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको अपने स्वास्थ्य या यौन स्वास्थ्य में कुछ भी असामान्य या सस्पिशियस दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, क्योंकि कभी कभी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकता है। ध्यान रखें कि असुरक्षित यौन संबंध से 72 घंटे होने से पहले आपको डॉक्टर के एडवाइस से आपातकालीन गर्भनिरोधक लेना चाहिए गर्भावस्था से बचने के लिए, और 72 घंटे से पहले ही आपको पैप मेडिकेशन यानी कि प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लेनी चाहिए HIV AIDS से बचने के लिए। मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन में अन्य सेवा उपलब्ध है, जैसे कि मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन क्लिनिक में आपको मामोग्राफी, एकोग्राफी सेवा, ECG, बोन टेस्टिंग और अन्य ब्लड टेस्ट का सेवा प्राप्त होगा। आप इस फ़ोन नंबर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए 2114101। ड्रॉप इन सेंटर में उन बच्चों की सहायता करते हैं जो बच्चे यौन शोषण, किशोरी गर्भावस्था या बाल वैश्यावृत्ति के शिकार हैं। उनको हम मनोवैज्ञानिक, मेडिकल और रिहैबिलिटेशन सेवा प्रदान करते हैं। ड्रॉप इन सेंटर से संपर्क बनाने के लिए आप इस फ़ोन नंबर में कॉल करें 2089233, और मोजेन यू फ्रेंडली सर्विसेज से संपर्क बनाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 2186283। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।

0: नजराना।
1: तो श्रोताओं अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार नियोजन मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मिस्टर भगन ने, उनको इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं।

0: में लगा ले।
1: तो चलिए यहाँ पर सदमा फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर जी की आवाज में। और अभी के लिए वक्त हुआ है हमारी धरोहर इस प्रोग्राम का, आइए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर और किरण जानकी जी से इस कार्यक्रम को सुनते हैं।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने एगो ऐसन विषय पर बात करब जा जो उनकी सब कोई से जुड़ल बा, सब कोई एकर से संबंधित बा। और ई है इंटरनेशनल डे ऑफ ब्लू स्काइज, यानी कि साफ हवा और साफ नीला आसमान के समर्पित करे खातिर नीला आसमान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ई दिन मनावल गल 7 सितंबर के। ई नीला आसमान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावे के पीछे जन लक्ष्य है वह हवा और आकाश के साफ रखे खातिर गतिविधि बढ़ावे के और जनता में जागरूकता आने के विश्व स्तर पर। ई दिन के घोषणा करल गल रहल यूनाइटेड नेशंस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और एकर मकसद है हर स्तर पर व्यक्तिगत, समुदाय या कॉरपोरेट या फिर सरकार के बीच जन साधारण में जागरूकता बढ़ावे के, ताकि स्वच्छ हवा, अच्छा स्वास्थ्य, सेहतमंद पर्यावरण और इकोनॉमी पर जोर देवल जाए। हर बरिस एगो विषय रखल जाला ई दिन पर, और ई बरिस भी एगो विषय बा। और ई विषय के मुताबिक एक साथ साफ हवा खातिर काम करी जा, ई विषय पर काम करल जाता। और एकर मकसद है फॉरन एयर पोल्यूशन, यानी हवा प्रदूषण से निपटे के, एकर खातिर साझेदारी के बढ़ावा देवे के, एकर पर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के बढ़ावे के और संगे एकर जिम्मेदारी के भी जांच करे के, कैसे सब कोई सकी इस जिम्मेदारी के अपनावे। जलवायु और साफ हवा पर थाईलैंड बैंकॉक में एगो सम्मेलन के आयोजन करा गल। इस सम्मेलन के अंतर्गत प्रदूषण रहित यानी फ्री पोल्यूशन इकोनॉमी पर जोर देवल गल। साथ ही जलवायु, विकास, पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर साथ काम करे पर भी ध्यान देवल गल। गलबरीस ई दिन सीमा पार प्रकृति पर केंद्रित रहल, यानी कि द एयर विषय, ई विषय पर चर्चा हो रहल। ई में सामूहिक जवाबदेही और कार्रवाई के आवश्यकता पर जोर देवल गल। और ई वायु प्रदूषण से निपटे खातिर नीति पर फौरन कदम उठावे पर आधारित रहल। अपन 74वां सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा 19 दिसंबर 2019 के नीला आसमान खातिर हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिन आयोजित करे खातिर एगो प्रस्ताव के अपने ले रहल। साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP के अन्य रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन के संगे मिलके ई इंटरनेशनल डे मनावे के मांग कर ले रहल। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: तो चलिए किरण जानकी जी को धन्यवाद कहेंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए। और साथ ही धन्यवाद हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को, सभी लिसनर्स को, जो हमेशा हमारे सभी कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, दिन हो या रात हो हमेशा हमारा साथ देते हैं। और इसी के साथ समय हुआ है एक भोजपुरी गीत का, जिसके साथ सुबह का नजराना ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और 9 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर भी, तो उनका साथ आप ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए हमारी आपकी मुलाकात बस यहीं तक थी, दोबारा हम 10 बजे आपसे फिर मिलने आएंगे। तो नमस्कार आप सभी को, हमारी ओर से शुभ दिन। ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर जुड़े रहिए, हम सबका साथ देते रहिए। धन्यवाद।
3: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुके

0: की हैं पूजा जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते पूजा।
1: नमस्कार रत्ना, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मॉरिशस में समुद्र तट और समुद्र तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कायम। लापुनेस तमागे में कल स्थल का दौरा किया गया। आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने बताया कि फिलहाल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया मैपिंग प्लेटफॉर्म पश्चिमी और फ्लैग का इलाके के लिए उपलब्ध है, जिसे बाद में टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। आज 9 सितंबर को बियानवे पे अलावाल की 162वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हर वर्ष की तरह कल भी बड़ी संख्या में मॉरिशस वासी ने श्रद्धांजलि अर्पित करने और प्रार्थना के लिए सैंखवा स्थित उनके मकबरे तक तीर्थ यात्रा की। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पुलिस में रिवॉर्ड मनी की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके। एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी ने कल अन्य अधिकारियों के साथ प्रेस से बातचीत के दौरान बताया कि मामले की जटिलता के बावजूद इस जांच को 18 महीनों में पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले जांच में अधिक समय लग सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संजय दाऊदारी के अनुसार संस्था केवल जांच करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था की खामियों को दूर करने और उसमें सुधार लाने के लिए समाधान भी तलाश रहती है। आपको बता दें कि इस जांच के सिलसिले में कई पुलिस कर्मियों और पूर्व पुलिस आयुक्त अनिल कुमार दीप को गिरफ्तार किया गया था। बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही एफसीसी की एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव डिवीजन ने पुलिस के साथ मिलकर काम किया है। विदेश में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि पिछले दो दिनों के दौरान तेहरान द्वारा एक अमरीकी युद्धपोत को दो बार निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने 5 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और MBC 3 के तीसरे चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने वाले सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं। बुधवार का दिन है, 9 सितंबर आज की तारीख है और बिल्कुल एक घंटे के आज के इस सफर में हम स्वास्थ्य को लेकर बातें करते हैं। पर आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर, यानी जो मनाया जाएगा बस अभी कुछ ही दिनों में। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और फर्स्ट एड की जानकारी हर इंसान को होनी कितनी आवश्यक है, इस पर आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। और आज हमारे मेहमान हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी और नेशनल सॉलिडारिटी में कार्यरत और साथ ही साथ रोटरी क्लब पोंपलेमूस के सदस्य डॉक्टर बसावन आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर दाऊशंकर पांगे बसावन आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर बसावन, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में फर्स्ट एड पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर, हमें पहले ये बताइए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है?
2: पहले वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सेकंड सैटरडे सब सितंबर में होता है। इस साल वो 12 ऑफ सितंबर में होगा। उनका कॉन्टेक्स्ट है फर्स्ट एड इन माइग्रेशन कॉन्टेक्स्ट।
1: अच्छा।
2: जैसे हम देखते हैं हर अन्य देशों में लड़ाई हो रही है तो माइग्रेशन में रेज है। तो ये उसका फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का मेन उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस है लोगों को समझाना कि इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प पहुंचने से पहले क्या किया जाता है। सही फैसेड की जान, सही फैसेड किसी की जान बचा सकता है, वो भी मेडिकल पर्सनल या डॉक्टर ट्रीटमेंट
1: आने से पहले।
2: आने से पहले।

0: जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट है, हार्ट अटैक है, चोकिंग है, ब्लीडिंग काटा या कुछ ब्लीडिंग होता है या बर्न्स होता है, तो इन सिचुएशन में फर्स्ट एड का मिनटों में इम्पोर्टेंस है।
1: बिल्कुल है? क्योंकि मैं समझती हूँ जो पहला घंटा होता है उसी के अंदर अगर उसको फर्स्ट एड पहुँचाया जाता है, जब तक कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर्स वहाँ पर आते हैं, उससे पहले अगर फर्स्ट एड उनको मिलता है तो उनकी जान काफ़ी हद तक बच सकती है।
0: हाँ।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर जी हाँ, जैसे डॉक्टर ने बताया कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का उद्देश्य क्या है, और बिल्कुल जहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, आज विश्व भर में युद्ध हो रहे हैं और कितनी सारी समस्याओं के साथ ये विश्व जूझ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट एड का कितना महत्व है ये तो डॉक्टर जी ने कम शब्दों में बताया, पर फर्स्ट एड कैसे किया जाता है इसकी सारी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम प्राप्त करेंगे। डॉक्टर जी, आपने देखा होगा कि विश्व में अभी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो वॉलंटरी बेसिस पर काम करती हैं, जैसे रेड क्रॉस इज वन ऑफ द रिनाउंड, कैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, फर्स्ट एडर्स के बारे में जानते हैं, तो अन्य ऐसी कई सारी जो संस्थाएँ हैं उनका रोल क्या होता है?
0: जब हम देखते हैं तो सारे, लगभग सारे हेल्थ केयर एसोसिएशन जो हैं वो वॉलंटरी बेसिस पर होती हैं, जैसे रेड क्रॉस हैं, हम एक एसोसिएशन में हैं जो हैं प्रो केयर पैरामेडिक्स, हम क्या करते हैं इसमें, जैसे तीर्थ यात्रा पर जब महाशिवरात्रि,
1: खासकर मॉरिशस में महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है,
0: तो उधर क्या क्या होते हैं, दो तीन लगभग नहीं लगभग छः डिफरेंट एसोसिएशन होते हैं, रेड क्रॉस होते हैं, हमारे एसोसिएशन होते हैं, सेंट जोन होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, लोगों का को सुरक्षित रखना, ये उसका मेन पर्पस है।
1: हाँ।
0: तो जब भीड़ बहुत होती है, फर्स्ट एड का एसेंशियल एक एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का प्रोफेशनल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भीड़ होता है तो क्या होता है, तो एक आदमी को डिफरेंट तरीके का सिचुएशन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन, ये थकान, अन्य बीमारियों जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक या कुछ भी बीमारी उनके हैं, वो एक कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। तो फर्स्ट एड का रोल क्या है इसमें, इसमें उस शख्स को एक सुरक्षित टाइम में रखेगा, क्योंकि हेल्प आने तक जैसे ट्रीटमेंट दिया जाए जाता है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है।
1: ओके,
0: फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट जब डॉक्टर उसको, जब मॉरिशस में सामू हैं या जो भी फर्स्ट एड एसोसिएशन है, जब वो फर्स्ट एड एम्बुलेंस में आते हैं तब ट्रीटमेंट शुरू होता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला फर्स्ट एड क्या, कौन देता है, पहला फर्स्ट एड जो लोग आसपास होते हैं वो पहला फर्स्ट एड है।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फर्स्ट एड सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए नहीं है,
1: मतलब आम जनता भी,
0: आम जनता भी के लिए एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। ये मेरे अनुसार सब लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है
1: फर्स्ट एड,
0: और एसोसिएशन जो हम बता रहे थे उसका रोल क्या है, दो तीन रोल हैं, एक जैसे एक उत्सव होता है इसमें मदद करने के लिए प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल को, दूसरा एडुकेट, एडुकेट पॉपुलेशन,
1: उनको जानकारी पहुंचाना,
0: तो जानकारी पहुंचाते, ये हेल्थ केयर एसोसिएशन का मुख्य
1: जैसे एक

0: एक पर्पस होना चाहिए, हाँ,
1: मुख्य पर्पस है। तो जो भी एसोसिएशन है आप देखते हैं वो कुछ कोर्सेज देते हैं, तो बिनती है दर्शकों को अगर कोई भी टाइम थोड़ा फ्री है और ये कोर्स देखते हैं तो जाइए, क्योंकि ये एक वेरी इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है।
0: बिल्कुल, और ये कोई भी उम्र वाले लोग कर सकते हैं,
1: कोई भी उम्र।
0: और मैं समझती हूँ ये अगर छोटी सी एक जानकारी अगर आप प्राप्त करते हैं फर्स्ट एड के बारे में, तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा, और आप कहीं पर भी चले जाएं अगर आपके सामने कोई ऐसी दुर्घटना हुई है तो डॉक्टर्स के आने से पहले, प्रोफेशनल्स के आने से पहले अगर आप उनको ये फर्स्ट एड पहुँचा सकते हैं तो हो सकता है कि आप एक जान को बचाते हैं। जी हाँ, फर्स्ट एड पर हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर जी, जब पहले स्टेप की हम बात करते हैं तो क्या हमारे दर्शकों को या श्रोताओं को आप बता सकते हैं कि मतलब मान लीजिए आप एक भीड़भाड़ वाली जगह पर हैं और अगर किसी को कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो एक फर्स्ट एडर के लिए पहले क्या चीज़ मायने रखती है, क्या सोच में, क्या मतलब उनके दिमाग में कौन सी ऐसी बात आनी चाहिए कि उसका जो सिचुएशन है वो हैंडल हो सके।
1: ओके, तो पहले जब हम एक भीड़ में हैं तो हम जानते नहीं हैं कि इस शख्स को क्या हुआ, तो भीड़ जो भी उसके पास है
0: जी,
1: उसको एक थोड़ा हवा लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो उसको एक सर्कल, एक सुरक्षित सेफ जोन जैसे कहते हैं, जैसे हम फैसिलिट करते हैं। तो पहले जब हम एक सिचुएशन में जाते हैं, एक जगह पर जाते हैं, तो पहला काम क्या है, पहला काम है असेस द एनवायरनमेंट
0: कि वहां कहां मतलब वो जगह क्या है,
1: किधर है।
0: हाँ।
1: ओ, गिर गया इधर।
0: हाँ।
1: ओके, कैसे गिर गया, फिसल गया या डीजी होकर गिर गया, क्या हुआ, तो ये पहले जानकारी हेड में होना चाहिए। ये जगह डेंजरस है, अगर ये जगह डेंजरस है तो हम कैसे जाएं हेल्प करने के लिए, जो हमारे
0: हो सकता है कि आपको भी वो अफेक्ट करे। बिल्कुल,
1: लाइफ थ्रेटनिंग है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सब मायने रखते हुए पहले चीज जब हम पेशेंट को देखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आते हैं उसका शोल्डर टैप करते हैं और देखते हैं अगर वो सांस ले रही है या नहीं। तो पहला चीज देखते हैं एनवायरनमेंट, दूसरा चीज पेशेंट पर फोकस। ये 2-3 सेकंड में होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: 2-3 सेकंड में होता है। जैसे देखते हैं एनवायरनमेंट कैसा है, सब ठीक है, इधर लुक है, आप टैप और सेम टाइम उसको पूछो कोई रिश्तेदार है, कोई इसके साथ आए हुए हैं, क्या हुआ बताइए। जब वो बता रहे हैं क्या क्या हुआ इस शख्स को, तो आप क्या कर रहे हैं इसी टाइम, आप टैप शोल्डर को टैप कर रहे हैं और उसका ब्रीफिंग देख रहे हैं, अगर चेस ऊपर नीचे आ रहे हैं तो वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, और आप अगर आपका हेड उसके हेड के पास है तो आप सुन भी सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उसका नाम जानना चाहिए या जो भी दादा दादी
0: कोई भी अगर आसपास में कोई जानकार है इंसान
1: तो जो नहीं ये शख्स जो है,
0: हाँ हाँ,
1: आप उसको टैप करके चिल्लाइए, हे कैसा है, किधर
0: सुनाई दे रहा है, मतलब उसको उठाने की कोशिश करें।
1: तो कॉन्शियस है या नहीं, अनकॉन्शियस है, ये पहली बात। तो अगर अनकॉन्शियस है डिफरेंट अप्रोच, कॉन्शियस है डिफरेंट अप्रोच, एक्सीडेंट होता है तो डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सब हम जब हम देखते हैं तो एक शख्स को इस सिचुएशन में इसका फेसेड कैसे किया जाता है
0: अकॉर्डिंगली उसके अनुसार।
1: तो एक भीड़ सिचुएशन में हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम तीर्थ यात्रा पर गए, वहाँ कोई गिर गया, तो पहला चीज़ जब आते हैं पेशेंट को देखते हैं तो क्राउड को सेपरेट करिए,
0: जैसे मतलब भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए उसके पास,
1: भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, एक वेंटिलेशन
0: हवादार जगह
1: होनी चाहिए।
0: जी
1: ओके, आप असेस करते हैं उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं,

0: ब्लड प्रेशर डाउन है तो उसका मतलब डिहाइड्रेशन उसका का कैसे परसेंटेज जो होते हैं ये ज़्यादा हो सकते हैं, पर हम फुली नहीं कह सकते हैं कि ये हुआ है, क्योंकि जब पेशेंट को पहले देखते हैं तो पेशेंट इधर है. तो एक मेडिकल में एक चीज़ होता है ABCs.
1: ओके,
0: नो योर ABCs क्या है? एयरवे, ब्रीफिंग, सर्कुलेशन.
1: ओके,
0: तो एयरवे, ब्रीफिंग, सर्कुलेशन में पहले हम चेक करते हैं कि क्या हुआ. तो इस शख्स में कुछ अटक गया है मुंह में या कुछ है जो ब्लॉक हो रहा है एयर करने. जैसे एक पेशेंट वोमिट कर सकता है और ये ब्लॉक कर रहा है उसको सांस लेने में, तो एयरवे चेक करना है. ब्रीफिंग अब ब्रीफ है और सर्कुलेशन जो ब्लीडिंग है या कुछ,
1: तो अगर उसको कहीं घाव लगा है या खून निकल रहा
0: जब,
1: है तो.
0: जब हम एक पेशेंट को देखते हैं, हमने आया, उसका ब्रीफिंग चेक किया, वो सांस ले रहे हैं, जब रिलेटिव्स या जो भी हैं उसके साथ कुछ जानकारी ले रहे हैं, हम चेक करते हैं दूसरा उसके शरीर को ऊपर हेड टू टोज, हेड टू टोज. अगर कपड़ा को खोलना है खोलो. जब हम चेक करते हैं तो क्या होता है, हम चेक ब्लीडिंग के लिए चेक करते हैं, डेंजरस अगर हड्डी टूटा हुआ है या कुछ डेंजरस आइटम है उस पर ये चेक करते हैं. ये भी कुछ सेकंड में होता है.
1: बिल्कुल.
0: फिर क्या होता है, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत CPR का शुरू करते हैं.
1: ओके,
0: CPR चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं ये थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे, क्योंकि CPR ये सबसे ज़रूरी है. एक अगर कोई भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमको CPR देना चाहिए. इसमें बहुत से लोगों का जान बचा सकते हैं.
1: बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि चोकिंग की वजह से इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, सांस रुक चुकी है, तो इसमें भी क्या CPR का ही प्रयोग किया जाता है ताकि वो डिब्लॉक हो सके और वो सांस ले सके?
0: कुछ सिचुएशन में, हाँ कुछ सिचुएशन में नहीं.
1: ओके,
0: जैसे हम देखते हैं बच्चों में चोकिंग ज़्यादा होती है. अगर चोकिंग के बारे में बात करते हैं, बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि वो कुछ खिलौने से
1: कई बार हैज़र्ड्स कुछ भी ऐसा मुंह में डाल देते हैं.
0: तो बच्चे अगर सबसे छोटा है उसको एक दो तीन तरीके होते हैं. जैसे कि उसको लेटाओ
1: जी,
0: इंक्लाइन,
1: हाँ,
0: हेड डाउन, और उसको उसके पीठ पर
1: थपथपाना
0: है
1: जी.
0: ये एक. अगर आदमी थोड़ा एज उम्र का है,
1: हाँ हाँ,
0: तो क्या करना चाहिए, उसको ब्लॉक करना चाहिए. हाँ. ये जो हमारे चेस्ट है
1: डायफ्राम में, हाँ,
0: इधर,
1: हाँ हाँ,
0: उसके नीचे
1: जी
0: अपना
1: शॉक देना चाहिए. ओके,
0: तो एक शॉक देना चाहिए
1: जी.
0: ये भी नहीं हो निकल रहा है तो अपसाइड डाउन
1: उनको भी जैसे उसी तरह से जैसे हाँ, बच्चों को किया
0: बच्चों
1: जाता है,
0: और टैप करना चाहिए जैसे हाँ, कि ये चीज जो भी
1: चोकिंग हो रहा है
0: उसको निकाल
1: सके. बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे समस्याओं में डिफरेंट तरह के फर्स्ट एड को, फर्स्ट एड की जो भी टेक्निक्स है उसे इस्तेमाल किया जाता है. और बेशक आज के इस कार्यक्रम में ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं इसकी फुल फ्लेज ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है. ये छोटी छोटी जानकारियाँ अगर आप एक प्रोफेशनल से इसको ट्रेन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक जान को बचा सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पर आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर एक गीत के ब्रेक के साथ जोड़ते हैं और अभी थोड़ी ही देर में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर और ये बातें जानकारी चर्चा

0: साझा कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें ये छोटी छोटी जानकारी हमारे लिए एक जान बचाने वाला एक ज़रिया हो सकता है, पर उससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड बॉक्स का क्या महत्व है और एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार करना, किस तरह से उसे तैयार रखना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर जी, पहले तो मैं ये पूछूंगी, क्या फर्स्ट एड बॉक्स सभी घर में होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसे तैयार कैसे किया जाता है, उसमें कौन सी चीज़ें होनी बहुत ही आवश्यक है?
1: फर्स्ट एड बॉक्स जब हम देखते हैं तो हर घर में लगभग एक होना चाहिए। जो भी बड़ा घर है दो हो सकता है, पर फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है
0: जी।
1: जब भी हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं हिच हाइकिंग या विदेश जाते हैं, तो एक छोटा सा फर्स्ट एड किट होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमको जानता नहीं है कब क्या उसका ज़रूरत हो,
0: कहाँ अचानक से आपकी आपको ज़रूरत पड़ जाए उसकी।
1: तो एक बात बोलते हैं ना, मालिया पिना लुडिया। तो ये ध्यान रखते हुए कि कोई सिचुएशन भी आ सकते हैं हमारे लिए या हमारे दूसरे लोग
0: जो आसपास हैं, बिल्कुल,
1: तो एक बेसिक किट होना चाहिए। एक बेसिक किट में क्या है, स्टेराइल गोज है, एडेसिव बैंडेज है, मेडिकल टेप है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि बेटाजीन या क्लोरोहेक्सजीन है, होना एक छोटा सा
0: बॉटल, जैसे दो या तीन सर्विंग्स हम कर सके उतना गरम है,
1: एक छोटा सा होना चाहिए। ग्लोव्स होना चाहिए, सीजर्स, क्योंकि गोज को काटेगा कोई भी जो भी काटेगा, एक थर्मोमीटर होना चाहिए, क्योंकि थर्मोमीटर जब एक फीवर होता है उसको मॉनिटर करने के लिए
0: टेम्परेचर
1: मेजर होना कर सकते हैं। स्टेराइड ड्रेसिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होता है जो भी है, हम ऐसे कुछ कपड़े नहीं डाल सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक जो स्टेराइल है, स्टेराइल का क्या मतलब है, स्टेराइल अगर एक गोज है एक पैक में है, जो वो पैक में खोला नहीं है, वो पैक बंद है,
0: सील्ड है बिल्कुल।
1: क्योंकि एक जब भी मैं पेशेंट के यहाँ जाता हूँ, जब देखता हूँ तो ये स्टेराइल का मतलब नहीं जानते, वो गोज को ऐसे ही रखते हैं,
0: तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन ये फैला सकता है।
1: स्टेराइल नहीं होता,
0: बिल्कुल,
1: तो एक स्टेराइल ग्लोव रखना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन से बचाता है,
0: बिल्कुल।
1: एक कोल्ड पैक भी अगर इंस्टेंट है तो ज्यादा सही है। पर एक कोल्ड पैक एक घर में होना चाहिए, जैसे कि एक बंदे को स्प्रेन होता है, जैसे फिसल जाता है तो क्या होता है, स्प्रेन हो जाता है। तो स्प्रेन का पहला साइन क्या है, जो जब होता है तो पैर फूल जाता है, तो पैर फूलने से पहले क्या करते हैं, ये कोल्ड पैक डालते हैं। जो भी एक्यूट गैंकू, जो भी एक्यूट होता है
0: उस पर अगर आइस पैक लगा दिया,
1: आइस पैक डालते हैं तो ये सही हो जाता
0: उसका
1: है,
0: उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है, मतलब उतना जैसे आप बता रहे हैं कि सूजन आने से पहले का ये जो प्रभाव है, अगर आइस पैक लगाया जाए तो काफी हद तक उसके दर्द को कम किया जा सकता है।
1: एक गलती है, गलत फैमिली भी है जो लोग अक्सर करते हैं, जब स्प्रेन होता है तो वो हीट स्प्रे डालते हैं, तो हीट क्या करता है, हीट इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है।
0: ओके,
1: तो हीट नहीं डालने का,
0: बिल्कुल,
1: कोल्ड होना चाहिए,
0: ठंडा होना चाहिए, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले आपके मसल्स को, आपके बोन्स को, ताकि फिर उसमें वो जो सूजन है वो ना चढ़े। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि सीढ़ियाँ उतरते वक्त या कुछ काम करते वक्त कई बार आपका पैर मुड़ जाता है, कई बार कुछ ऐसे होता है कि जहाँ पर आप फिसल के गिर जाते हो, आपको एक चोट

0: लग जाती है, तो तुरंत जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि पहला होना चाहिए कि आप उस पर एक कोल्ड पैक डालें, आइस पैक डालें, या अगर आपके घर में बर्फ उपलब्ध है तो बर्फ को एक कपड़े में लपेट कर आप उस पर रख दें, ताकि एक तरह की जो सूजन है वो नहीं चढ़ेगी और आपका जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कम रहेगा। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि गलती हम करते हैं कि बिल्कुल हम डीप स्प्रे या हीट स्प्रे लगा देते हैं उसके ऊपर, जो इस इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देता है और दर्द असहनीय हो जाता है। तो जी हाँ, कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसकी जानकारी हमें आज बिल्कुल डॉक्टर से मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान से सुने और बिल्कुल जाने। डॉक्टर जी, जैसे आप बता रहे हो कि आइस पैक लगाना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए फर्स्ट एड में?
1: हम देखते हैं तो जो भी बताया अभी, सीजर्स, स्टेराइगोज, ये सब बेसिक हैं
0: जी।
1: अगर हम एक हॉट पेशेंट को देखते हैं, अगर एक फैमिली में एक हॉट पेशेंट है, तो उसका एक दवाई होना चाहिए जो TNT है, नाइट्रोग्लिसरीन। ये दवाई हम टंग के नीचे रखते हैं
0: जी।
1: तो ये क्या होता है, जब पेशेंट को हॉट अटैक होता है, यानी कि एक बड़ा सा चेस्ट पेन होता है, तो ये दवाई जान बचाने के लिए
0: बिल्कुल एक जैसे लाइफ सेविंग है,
1: लाइफ सेविंग है। हाँ। तो अगर हॉट पेशेंट हैं तो ये रखना चाहिए पेशेंट के साथ। अगर हम देखते हैं इमरजेंसी सर्विस जो होता है, एक पेशेंट, एक इंसान जब डिफिकल्टी में है, तो ये बॉक्स लेते हैं, आते हैं इमरजेंसी के सिचुएशन में, ये बॉक्स लेते आते हैं। तो ये बॉक्स कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज एक तरीके से, जैसे गोज इधर हैं,
0: सारी चीज़ें ढंग से होनी चाहिए उसमें।
1: हाँ, तो ये गोज दो तरह की होती हैं, एक नॉन स्टेराइल, एक स्टेराइल। जब कंप्रेशन डालते हैं तो एक स्टेराइल ग्लोव डाल सकते हैं, फिर नॉन स्टेराइल ग्लोव उसके ऊपर। तो पहला स्टेराइल ग्लोव, ये बेसिक किट है। तो ये बेसिक किट हम सभी को, सभी दर्शकों को विनती करते हैं कि एक एटलीस्ट एक बेसिक किट
0: आप हमेशा रेडी रखें,
1: हमेशा रेडी रखें। और ट्रैवल करने अब जाते हैं तो एक किट गाड़ी में रखिए,
0: यानी एक, अभी तो आजकल देखा गया सभी के घर एक एक दो दो गाड़ियां होती हैं, तो जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं, जितना हम समझ पाए हैं कि एक किट आप घर में रखें, एक किट गाड़ी में हमेशा तैनात तैयार होना चाहिए। और डॉक्टर जी, मान लीजिए आज हमें फ़र्स्ट एड किट की ज़रूरत पड़ गई, कोई रास्ते में कोई ऐसी समस्या हो गई और हमने उस फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल कर लिया, तो क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए? क्योंकि मैं समझती हूँ कई बार फर्स्ट एड किट में से हम काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या घर जाके तुरंत ही उसे रिप्लेस करना अनिवार्य है?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कब एक प्रॉब्लम आ सकती है।
0: बिल्कुल,
1: तो एक फर्स्ट एड किट का आइटम्स फुली रखना,
0: फुली स्टॉक, पूरी तरह से तैयार रखना,
1: तैयार रखना, ये बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक्सीडेंट होने से दूसरे एक्सीडेंट को नहीं बचाते हैं।
0: बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही।
1: तो जब हम देखते हैं एक हम कुछ सामान यूज़ करते हैं, तो तुरंत घर जाकर
0: उसे फिर से
1: उसे रिप्लेस करना चाहिए
0: जी।
1: या कुछ फार्मेसी में जो भी आसपास है, खरीद लीजिए और डाल दीजिए
0: तुरंत। बिल्कुल, और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपने एक डब्बा खरीदा उसमें सारी चीज़ें आपने डंप करके रख दी, क्योंकि बिल्कुल जब सडन एक एक्सीडेंट होता है या सडनली आपको वो फर्स्ट एड किट की ज़रूरत पड़ती है, आपने देखा होगा कि कई बार हमारे चीज़ें जो है वो हमारे सामने होने के बावजूद हमें नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए अगर आपका किट, आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आप एक्सीडेंट में बहुत जल्दी से आप एक्शन ले सकते हैं और डेफिनेटली आपको आसानी से सारी चीज़ें आपके आंख के सामने दिखाई देगी। जी हाँ, यहाँ पर हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी बता रहे

0: रहे थे कि कार्डियक अरेस्ट की अगर सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट में एक इंसान को क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल्स को बुलाने से पहले, प्रोफेशनल के वहाँ आने से पहले एक आम इंसान को क्या दिमाग में रखना ज़रूरी है।
1: ओके, अगर हम कार्डियक अरेस्ट को देखते हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ पहले कि एक होता है हार्ट अटैक,
0: हाँ जी,
1: और एक होता है कार्डियक अरेस्ट।
0: इसमें क्या अंतर है?
1: एक हम देखते हैं तो हार्ट अटैक में ब्लड सप्लाई ब्लॉक होती है
0: जी,
1: पर पर्सन अक्सर कॉन्शियस होते हैं।
0: अच्छा,
1: वो सांस ले रही है और एक बहुत सी शॉर्प पेन होता है
0: चेस्ट में।
1: ओके, वो जा सकते हैं लेफ्ट हैंड में, ये पेन उधर भी जा सकते हैं और नो पेन भी हो सकता है।
0: ओके, पेनलेस, यानी कोई भी उनको दर्द ना हो।
1: डायबिटिक पेशेंट में ये हो सकता है
0: जी,
1: जो
0: जी।
1: पेन नहीं पर एक हार्ट अटैक का शिकार है, ये हार्ट अटैक है। कार्डियक अरेस्ट है क्या है? जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है
0: जी
1: इफेक्टिवली,
0: जी, जी।
1: जो भी पंप कर रहे हैं इफेक्टिव नहीं है तो ये ब्लड दिमाग तक शरीर में अच्छा नहीं जा रहे हैं तो ये क्या होता है, तो पर्सन अनरेस्पॉन्सिव होता है। तो अनरेस्पॉन्सिव होने से क्या ये पर्सन नॉर्मल ब्रीफिंग नहीं होता है।
0: ओके,
1: तो ये कार्डियक अरेस्ट है।
0: अच्छा,
1: ब्रीफिंग नहीं भी हो सकती है।
0: mm-hmm.
1: तो क्या करना चाहिए इसके जब ये होता है तो उसमें सीपीआर, सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन में
0: जी.
1: बहुत जरूरी है।
0: ओके,
1: तो चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं? चेस्ट के सेंटर सेंटर में हाथ, एक हाथ में दूसरा हाथ डालते हैं।
0: ओके,
1: ऐसे
0: यानी लॉक करना है, ऐसे करके लॉक करना है, ठीक,
1: और उसको चेस्ट के बीच में रखना चाहिए
0: जी।
1: जब चेस्ट के बीच में रखती हैं तो क्या होता है, ये हाथ से नहीं दबाना है, शोल्डर से दबाना है, यानी कि
0: ओके, मतलब प्रेशर आपको शोल्डर से लगाना है। हाँ, जैसे हाथों की ओर दबाव नहीं है, शोल्डर से
1: हम दबाते हैं तो जब दबाते हैं तो लगभग 100-120 क्रम प्रेशर होता है पर मिनट।
0: हाँ हाँ,
1: जब मैं सीखा कैसे करते हैं तो एक गीत था माइकल जैक्सन का, स्टेइंग अलाइव।
0: हाँ हाँ जी, उस
1: स्टेइंग अलाइव
0: जी,
1: तो इसमें एक बीट होता है
0: सेकेंड्स का। हाँ जी,
1: तो ये एक मिनट में 60 सेकंड होता है
0: जी,
1: तो हमको 100 कंप्रेशन देना है एक मिनट में।
0: ओके ओके,
1: तो अगर ये सीपीआर का भी कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो एक मशीन है जो शॉक करते हैं उसका AED जो बोलते हैं, AED का यूज भी कर सकते हैं, पर मेरा अनुसार है कि AED सिर्फ एक जो हेल्थ
0: बिल्कुल जो प्रोफेशनल्स हैं और ये तो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा, ये तो हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंस में ही या सामू में ही ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं जी। हाँ, तो जैसे मतलब वो इंस्ट्रूमेंट या वो चीज़ यूज़ करने से पहले CPR
1: करना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: तो कितना टाइम से CPR होना चाहिए? तो अगर हम देखते हैं एक पेशेंट को 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट का CPR देते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो क्या करते हैं? तो जब हेल्थ प्रोफेशनल आता है इनसे आने के पहले CPR जारी रखना है।
0: ओके, मतलब जब तक कोई नहीं आता प्रोफेशनल तब तक आपको देते रहना।
1: हाँ, तो 30 मिनट में 20 मिनट वो आ जाएंगे
0: जी,
1: आ जाएंगे जी। दूसरा बात सांस लेना, तो जब जो बोलते हैं माउथ टू माउथ
0: आर्टिफिशियल ब्रीथिंग,
1: आर्टिफिशियल ब्रीथिंग
0: जी,
1: ये जो कर

0: सकते हैं करें
1: है?
0: क्योंकि इसमें भी एक तरीके होते हैं, जैसे कि हेड को टिल्ट बैकवर्ड्स करने, क्योंकि एयरवे ओपन होना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: नाक को दबाना चाहिए और फिर माउथ टू माउथ को ब्लो इनके चेस्ट में, इनके माउथ में ब्लो करना चाहिए।
1: ओके,
0: तो ये भी कितना होना चाहिए, जैसे हमको 33 मिनट्स का सीपीआर करते हैं, एक सांस देते हैं, पर ये सब लोग नहीं जानते हैं और किट का नहीं, ये किट जो हम यूज करते हैं वो नहीं है, क्योंकि हम एम्बू बैग यूज करते हैं
1: जी।
0: तो क्या करें, सीपीआर करें, जो सीपीआर बेटर होता है कि कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन का जान बचा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, सीपीआर केवल कार्डियक अरेस्ट के टाइम दिया जाता है? मान लीजिए अगर आप की सिचुएशन, आप समंदर घूमने गए हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई ड्राउनिंग का केस हो रहा है तो क्या ड्राउनिंग के केस में भी सीपीआर जैसी सिचुएशन खड़ी होती है, या फिर वहाँ पर कैसे उस केस को हैंडल किया जाता है?
0: जब हम ड्राउनिंग केस को देखते हैं, जब मूवी में देखते हैं तो सीपीआर करते हैं।
1: हाँ,
0: क्यों सीपीआर करते हैं? ये क्योंकि पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है। ओके, जब हम चेस्ट कंप्रेशन, हम पहले ड्राउनिंग केस को देखते हैं तो हार्ट बीट है
1: जी,
0: हार्ट बीट है या क्या पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, सेम जैसे हम पहले बताए, सेम सिचुएशन ABCDs
1: बिल्कुल
0: चेक करना चाहिए। तो जब हम सीपीआर देंगे इस पेशेंट को, हम देखते हैं कि ये पानी आता है, फिर वो खफ होता है, ये मूवी में देखते हैं, पर असली में भी ऐसा हो सकता है। जैसे एक पेशेंट आते हैं, उसका दिल रुक गया, तो दिल रुकने से सीपीआर करना चाहिए, ड्राउनिंग के लिए नहीं।
1: ओके, यानी दिल की धड़कन अगर ऑन है लेकिन ड्राउनिंग का कोई केस है,
0: सांस ले रहा है और दिल की धड़कन है,
1: तो सीपीआर की जरूरत
0: नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सीपीआर कब करते हैं, जब वो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव या सांस नहीं ले रहे हैं
1: या चोक की वजह से अब दिल की धड़कन रुक गई है, तब जाकर सीपीआर का सिचुएशन होता है। तो डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना के स्थल पर इंसान गिर गया है, एक्सीडेंट हुआ है और हड्डी टूट गई है, तो ऐसी सिचुएशन में या ब्लीडिंग हो रहा है या फ्रैक्चर हो गया है, तो ये दोनों ही सिचुएशन में एक फर्स्ट एडर को क्या ध्यान में रखना चाहिए?
0: तो पहले हम अन्य लोगों को तरीके के बारे में बताएंगे। पहले जब एक एक्सीडेंट होता है तो क्या करना, लोग पैनिक में आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब लोग पैनिक में आते हैं गलत करते हैं, जैसे कि एक एक्सीडेंट होता है, वो ये इंसान को मूव करता है, ये नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: या कुछ खिला देता है, ये नहीं करना चाहिए, या कुछ जैसे कि एक पोस्चर में डालते हैं, ये नहीं करना, क्योंकि ये गलत है। क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि इंसान कैसा है, चेक करना वो रेस्पॉन्सिव है। जब हम एक्सीडेंट की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, स्पाइनल कोड इंजुरी हो सकता है, जैसे हड्डी हमारे
1: रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल,
0: वर्टीब्रे की हड्डी होता है, अगर ये टूट गया तो वो कंप्रेशन कर सकता है स्पाइनल कोड पर। और अगर एक पेशेंट लेटा हुआ है, हम उसको सिटिंग पोजीशन में डालते हैं, तो
1: ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस
0: होता है ऐसी, क्योंकि उसका हड्डी का वर्टीब्रे का हड्डी टूट गया है। तो ये सब मायने रखते हुए क्या क्या करना चाहिए, ये पेशेंट को चेक करना चाहिए, ब्लीडिंग है तो डायरेक्ट प्रेशर डालना चाहिए, जो भी है आपके पास इस समय
1: उसे दबाना है, मतलब
0: उसे दबाना है। इसीलिए एक गाड़ी में एक फर्स्ट एड किट
1: होना बहुत जरूरी है।

0: बहुत जरूरी है हमारे लिए या दूसरों के लिए।
1: बिल्कुल, उस सिचुएशन में आपके पास जितना जल्दी हो सके एक अवेलेबल हो अगर ऐसा किट, तो आप उस समस्या में बहुत ज़्यादा कंट्रोल ला सकते हैं, उस सिचुएशन में कंट्रोल ला सकते हैं।
0: तो दूसरी अगर फ्रैक्चर होता है, तो जब फ्रैक्चर होता है
1: पहले तो डॉक्टर फ्रैक्चर को डिटेक्ट कैसे किया जाए, बिकॉज फ्रैक्चर कई बार होता है कि बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन फ्रैक्चर है।
0: तो पहले जब हम देखेंगे तो पेशेंट लेटा हुआ है या स्टैंडिंग है, अगर स्टैंडिंग है वो कर रहे हैं तो हाथ का फ्रैक्चर होगा तो वो हिलेगा
1: बिल्कुल,
0: उसका जॉइंट नहीं पकड़ेगा।
1: हाँ हाँ ओके,
0: ये पहले चीज। अगर वो लेटा हुआ है तो हमको चेक करना पड़ता है, तो इसीलिए पहले ब्रीफ एबीसी, पहले एयरवे ब्रीफिंग सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन में चेक करते हैं, जब बॉडी को चेक करते हैं, बॉडी में फ्रैक्चर का या
1: अगर वो कॉन्शियस है तो पूछ सकते हैं कि कहाँ पर उसे चोट लगी है।
0: कुछ कट होता है, कुछ स्टैब वुंड होता है जो एक्सीडेंट में हो सकता है, तो ये सब हम चेक करना चाहिए। स्टैबून है तो ये जो चीज अंदर गया है
1: उसे बाहर नहीं,
0: उसे बाहर नहीं निकालना है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अगर निकालते हैं तो क्या
1: प्रोफ्यूज ब्लीडिंग
0: रप्चर हो सकता है, तो ये फैसेट का काम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: फैसेट का काम होता है पेशेंट को जिंदा रखना, उसके मदद करना जब तक ट्रीटमेंट आता है।
1: बिल्कुल, प्रोफेशनल्स जब तक वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार हो सकता है कि एक्सीडेंट की सिचुएशन में कई बार कुछ ऐसा नुकीली औजार या नुकीली कोई चीज़ अगर कहीं पर घुस जाती है, तो बिल्कुल एक फर्स्ट एडर को ये बात याद रखनी है कि उसे बाहर नहीं निकालना है। अगर एक इंसान लेटी हुई स्थिति में है तो उसे बिठाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, और अगर वो कॉन्शियस है तो उसे सिर्फ पूछना है कि क्या हुआ, ताकि आप एनालाइज कर पाएं उस सिचुएशन के बारे में। चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो एक फर्स्ट एडर को हमेशा, फर्स्ट एडर का मतलब ये है कि जो इंसान वहाँ पर उपलब्ध है या वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आम इंसान को भी एक फर्स्ट एडर कहा जा सकता है अगर उसके पास ये सारी नॉलेज हो तो। और ये सारी नॉलेज ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जो वॉलंटरीली लोगों तक पहुंचाती हैं, उन्हें सिखाती हैं किस तरह से आप एक फर्स्ट एडर बन सकते हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे अभी थोड़ी ही देर में, गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं बस अभी कुछ ही पल में।

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम। और आज हमारे साथ तकनीक पर बने रहे कादिया, साथ ही साथ दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं शीतल। बिल्कुल आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर बसावन। और बिल्कुल नज़र हमारी दौड़ रही है समय पर, तो समय बहुत कम रह गया है, तो हम डॉक्टर जी से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर जी, आज के इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने के लिए हमें हमारे जो श्रोता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप क्या संदेश देंगे, और एक बार फिर फर्स्ट एड किट का कि जो ज़रूरियात है, जो भी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो उस पर आप एक बार फिर हमें बता दीजिए।
2: ओके, तो आज के अवेयरनेस प्रोग्राम के सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये हैं कि फर्स्ट एड सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है और मेडिकल हेल्थ के प्रोफेशनल के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान को के लिए एक लाइफ सेविंग स्किल है। ये पहली बात। दूसरी बात, जब इमरजेंसी में एक्शन होते हैं, इमरजेंसी में पैनिक नहीं होना चाहिए, एक्शन जरूरी है। ये एक्शन करने के लिए फर्स्ट एड किट होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो फर्स्ट एड किट आप हर घर में रखिए और एक अपनी गाड़ी में जरूर रखिए। फर्स्ट एड के बारे में आज सभी दर्शकों ने सुना, सुनने सीखिए भी, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए एक जो भी एसोसिएशन है जो कोर्सेज दे रहे हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो भी रेड क्रॉस हैं, प्रोकिया पैरामेडिक्स, सेंट जोन्स, जो भी एसोसिएशन हैं हेल्थ एड में, उसका जानकारी दीजिए। और अंतिम में मैं एक बात करना चाहता हूँ। आप हो जहाँ इमरजेंसी होता है, जब इमरजेंसी होता है आप एक डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन आप वो इंसान हो सकते हैं जो है पहुंचाने से किसी की जान बचा सकती है।
1: बिल्कुल।
2: सो लर्न फर्स्ट एड, लर्न CPR, बी रेडी एंड बी ए लाइफ सेवर।
1: बिल्कुल। तो ये था आज के इस कार्यक्रम का एंडिंग स्टेटमेंट, और बिल्कुल फर्स्ट एडर्स के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाएगा 12 सितंबर को। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करने का समय हो चला है। आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। पूजा से आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी सभी को, मेरा नमस्कार। मॉरिशस में समुद्र तटों तक सार्वजनिक पहुंच के स्थानों को खोजने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवास एवं भूमि मंत्रालय ने एक इंटरैक्टिव मैप ऑनलाइन जारी किया है, जिसकी मदद से सार्वजनिक समुद्र तट और समुद्र तट तक पहुंचने वाले रास्तों की पहचान की जा सकती है। इस मैप में 4 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, लापुनेज, ला निवा, तमारे और फ्लैक। बाद में इस मैप को टापू के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाएगा। सेवा, करुणा और मानवता का संदेश देने वाली बियान यूरोपीय लावाल की स्मृति में मॉरिशस में श्रद्धा और प्रार्थना का विशेष वातावरण। पेलावाल की वार्षिक तीर्थ यात्रा कल शुरू हुई, जो मात्र पैदल तय किया जाने वाला रास्ता नहीं, बल्कि अपने अभी तरोतरने की एक आध्यात्मिक

0: यात्राएं आज बेलावल की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और एक अधिक न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज के लिए बियानवे बेलावल के मौर्य सागवन के 150वीं वर्षगांठ और उनकी मृत्यु की 162वीं वर्षगांठ के अवसर पर पोर्टलिस के बिशप मोसेयर जॉन मिकाएल जुरोन ने अपने प्रवचन में ये बात कही। पोर्टलिस के बिशप ने युवाओं में नशीली दवाओं के बढ़ते प्रकोप की भी कड़ी निंदा की। विदेश में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ओमान की खाड़ी में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को से जुड़े चार ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान के खाड़ी तट से दूर स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल द्वीप के पास एक अन्य टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। पागोडा लिन कंकावल क्यूपिप में 52 साल के 52 years old श्री गंद्रनाथ तलु जिन्हें लोग बोबी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे इनके मकान पागोडा लिन कंकावल क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3:30 PM। Petit chemin Bélé à Rivière Sèche, 76 साल के 76 years old श्री नंदत बाबूलाल जिन्हें लोग ज्ञानदेव नाम से जानते थे और जो विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल के पिता थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनकी पत्नी देवंती बाबूलाल के मकान पिछी श्रीमय बिलिया रिव्या सैश से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए बिलिया किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। और कोरियोलिस रोड से जिया मिलफोरासाइड में 58 साल की 58 years old श्रीमती अमृति नंदा उबिलक पैदाशी नाम लक्ष्मण और जिन्हें लोग नंदा नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके पति महेश्वरनाथ उबिलक के मकान को योलिस रोड से जमील फॉरेस्ट साइड से उठाकर आलिब्रियों की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर
1: बुधवार 9 सितंबर घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:05 रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति गीतों का कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की।

स्तुति में। श्रोताओं, हर कोई भगवान गणेश के स्वागत में तैयारियों में लगा हुआ है। सभी भक्त जो है भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे कि वो जल्द आए और गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है आने वाले दिनों में हम मनाने वाले हैं। और अपने आप में ये पर्व सबको हर्षित करता है, सबके मन को, सबके हृदय को जो है सुख पहुंचाता है। और साथ ही हमारे आसपास का जो वातावरण है अपने आप में ये बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। किसी भी पर्व को जब हम मनाने के बारे में सोचते हैं तो इसमें बहुत सारी हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं और जो भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना होती है ना, वो अपने परमपिता परमेश्वर तक, अपने इष्ट तक अवश्य पहुँचती है। तो चलिए, इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम गणेश जी का नाम लेते हुए करते हैं। भगवान गणेश सबका कल्याण करे और सबके जीवन से सभी दुखों को दूर करे, सभी विघ्नों को दूर करे।

0: श्रोताओ, और अभी के लिए भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय हुआ है हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुने कार्यक्रम विनय अंजलि।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
3: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। कार्यक्रम सेवा में प्रस्तुत है आपका, इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम श्री प्रकाश आर्य जी के गाये एक भजन से हम शुभारंभ कर रहे हैं। भजन के बोल हैं, आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु को धन्यवाद, जिसका यश नित गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। मंदिरों में, कंदरों में, पर्वतों

श्रोताओं, आज का संदेश आधारित है यजुर्वेद के एक मंत्र पर। मंत्र इस प्रकार है, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातस्सोम मुद रुद्रम हुवेम। प्रातःकालीन मंत्रों में से यह पहला है। पांच मंत्र उठते ही हम पढ़ते हैं और यह है पहला मंत्र। आपने देखा होगा कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब उसकी लौ नीचे नहीं ऊपर की ओर जाती है। यह इसलिए कि उसका भंडार सूर्य है जो धरती के ऊपर है, इसलिए अग्नि की ज्वाला अपने पिता सूर्य की ओर ही ऊपर की तरफ जाती है। इसी प्रकार आत्मा का भंडार परमात्मा है। यही कारण है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए एक निर्मल मन वाला व्यक्ति परमेश्वर की पूजा अर्चना में लग जाता है। यह देखा गया है कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जब अपार दुख के सागर में गोता लगाता है तब वह परमात्मा को पुकार उठता है। भगवान का सच्चा भक्त तो प्रातःकाल ही ईश्वर की स्तुति प्रार्थना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि ऋषि महर्षियों ने आदेश दिया हुआ है कि प्रातःकाल उठते ही जो बिस्तर हम छोड़ते हैं प्रातःकालीन मंत्र का पाठ करना चाहिए। दूसरी प्रार्थना हमारी संध्या अग्निहोत्र के समय होती है और वो भी प्रातःकाल में। तीसरी चौथी और पांचवी प्रार्थना हम तब करते हैं जब सुबह का दिन का और रात का भोजन लेते हैं। पहले भोजन से पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर संध्या के समय भी सायंकालीन संध्या में हमारी छठी प्रार्थना होती है और आखिरी और सातवीं प्रार्थना होती है। रात को जब हम सोने जाते हैं तब हम कहते हैं यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम और छह बार कहते हैं शिव संकल्पमस्तु, अर्थात हे प्रभु मेरा मन शिव संकल्प वाला बने। श्रोतागण, प्रातरग्निम मंत्र के आरंभ में जो शब्द आए हैं वह है प्रातरग्निम हवामहे, यानि हम प्रातःकाल में अग्नि स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। इसलिए पुकारते हैं कि वह अग्नि स्वरूप है और हमें आगे की ओर बढ़ाते हैं। चूँकि अग्नि नेता को भी कहते हैं, नेता आगे ही आगे बढ़ाता है, तो सबसे बड़ा नेता यदि कोई इस धरती पर है तो वह परमेश्वर है जो हमको आगे बढ़ाता है, यानी उन्नति के रास्ते पर

चलने की प्रेरणा देता है। मंत्र में कहा गया प्रात रेंद्रम हवामहे, हम परमात्मा को इंद्र नाम से भी पुकारते हैं, आवाहन कर रहे हैं प्रात अग्निम के बाद प्रातरिंद्रम, ईश्वर इंद्र इसलिए है क्योंकि वह सभी ऐश्वर्यों का स्वामी है। इंद्र उसको भी कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। हम इंद्र की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि वह धन ऐश्वर्य के स्वामी हैं और हम भी धन ऐश्वर्य के स्वामी बनना चाहते हैं। वही व्यक्ति धन संपत्ति पा सकता है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। इस मंत्र में आगे कहा गया प्रातर मित्रा वरुणा, यानि हम प्रभु को मित्र कह रहे हैं, वह मित्र के समान प्रिय हैं और वरुण हैं। ईश्वर को मित्र और वरुण नाम से क्यों पुकारते हैं? महर्षि दयानंद परिग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुलास में ईश्वर के 100 नामों के अंतर्गत एक नाम बताते हुए लिखते हैं कि ईश्वर को वरुण कहते हैं। वरुण की व्याख्या में वो लिखते हैं वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ, यानि परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, इसी उसका नाम वरुण है। हम परमेश्वर को मित्र और वरुण शब्द से संबोधित करते हुए कामना कर रहे हैं कि हम भी मित्र बने, ईर्ष्या द्वेष त्याग कर सबको अपना मित्र बना लें, हम भी श्रेष्ठता को अपना कर वरुण के गुण को अपनाएं। वेद का तो आदेश ही है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, यानि हम सबको मित्र की आँखों से देखें, सबको श्रेष्ठता की ओर ले चलें। श्रोताओ, इस मंत्र में परमेश्वर को अश्विना भी कहा गया, अश्विना कहकर ईश्वर की स्तुति की गई। परमात्मा को अश्विना शब्द से इसी संबोधित करते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्र के उत्पन्न करने वाला वह है। सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है, हम पाते हैं चंद्रमा से शीतलता, शांति और आनंद। वेद का उपदेश है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जागकर इस मंत्र का पाठ करें ताकि हमें ईश्वर के इन सभी गुणों की प्राप्ति हो सके। एक और शब्द पर हमें विचार करना है इस मंत्र में जो आए हुए हैं, भगम। एक और शब्द है पूषणम। परमात्मा को भगम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास भग है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से भरपूर है सारी संपत्तियां जो हम पाते हैं, उसके दाता ईश्वर ही है, इसे कि वो भगम है। पुषणम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे पालन करते हैं, पुष्टि करता है। हम दोनों शब्दों के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु जिस तरह आप पालक हैं उसी तरह हम भी धन संपत्ति प्राप्त करके पालक पोषक की भूमिका अदा करें। मंत्र के अंतिम भाग में कहा गया ब्रह्मनस्पतिम प्रातः सोम मुत रुद्रम हुवेम, परमेश्वर का आवाहन किया गया ब्रह्मपतिम कहकर। ब्रह्मनस्पतिम ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी को भी कहते हैं। तो ईश्वर को हमने कहा कि आप ब्रह्मांड यानि इस जगत के स्वामी हैं और साथ ही वे ज्ञान के दाता हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं और ज्ञान चाहते हैं ताकि ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम उत्तर उत्तर उन्नति करते जाएं। अंत में कहा गया रुद्रम हुवेम, परमात्मा को रुद्र नाम से पुकारा गया। रुद्र का अर्थ है जो दुष्टों को पापियों को दंड देकर रुलाता है। जब हम वेद के इस आदेश उपदेश और संदेश को ग्रहण करते हैं तब ईश्वर के अनेक गुणों को स्मरण करते हुए हम उस प्रकार के गुणों को अपनाने लगते हैं और उन गुणों के अपनाने से हमारा दिवस अच्छा बनता है। हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जिस मार्ग पर चलने से

हर प्रकार की उन्नति होती है, शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी, और हम प्रभु की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। श्रोताओं, आशा है जब आप इस मंत्र का पाठ करेंगे तो इस पर पूरा ध्यान देंगे और लाभ उठाएंगे। इस कार्यक्रम में टेक्नीशियन के रूप में साथ दिया है श्रीमती अंजलि।

श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि। डॉक्टर गंगू जी को इस कार्यक्रम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भक्तिधारा ऐसे कार्यक्रम में आप हमारा साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर। कहते हैं जीवन में कभी कभार कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जहाँ पर इनका समाधान हमें नहीं मिलता है। इस तरह से हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें उत्तर नहीं मिलता है। तब कहते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, ईश्वर को सौंप देना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने हालातों को, अपने आप को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। मन में ये विश्वास रखते हुए कि हे ईश्वर, आपने हमें इस परिस्थिति में डाला है, अब इसका समाधान भी आप ही निकाले। क्योंकि कहते हैं ना कि

ईश्वर हमें इन सभी परिस्थितियों से जो है इसका सामना कराते हैं, ताकि जीवन में हम और भी सशक्त बन पाए, जीवन में हम और भी जीवन पर विश्वास कर पाए और बुराई में भी कहीं ना कहीं अच्छाई को खोज पाए।

श्रोताओं, जीवन में अपनों का साथ होना बहुत आवश्यक होता है। जीवन में ऐसे लोगों का होना बहुत आवश्यक होता है जिन पर हम आंखें बंद करके विश्वास कर पाए, जिनकी हर एक बात में हमें सच्चाई नज़र आए, जिनके हर एक शब्द में हमें अच्छाई नज़र आए। क्योंकि कभी कभार हम इस तरह से बुराइयों से घिर जाते हैं कि सच्ची बातों पर भी जो है विश्वास करने के पहले हम कई बार सोचते हैं कि विश्वास करें या ना करें। तो जीवन में ऐसे अपनों का, ऐसे परिजनों का होना बहुत आवश्यक होता है जहाँ पर हमें पता है कि किसी भी वक्त हमें कोई संदेह हो, कोई ज़रूरत हो या कुछ ऐसी बात हो जाए तो वो हमारे लिए खड़े हो और उनके हर बात पर हम विश्वास कर पाए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी सहमत है, बिजुकाप सहमत है, विलास दे सहमत है, बिजुकाप यहाँ पर और साथ ही में बिजुकाप

0: स्वाजी, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर गुरुवार, कल गुरुवार 10 सितंबर को, कल गुरुवार 10 सितंबर को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ ही लेबुशों के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, लेबुशों के खासकर ला शापेल लेन, सोसिएते ला कॉन्फिडेंस, लागामेल, कॉन्स्टांस लेन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी कल गुरुवार 10 सितंबर को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से। और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी 2 विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से। और श्रोताओं, इसी के साथ हम लगभग जो है भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। सवेरे के 6 बजे से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। ईश्वर की अपार कृपा आप पर सदा रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर सदैव चलते रहे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। आज ज्ञान रूपे अलावाल की पुण्यतिथि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, प्रार्थना करने और उनके सेवा एवं मानवता के संदेश को याद करने के लिए एकत्र हो रही है। उनका जीवन आज भी लोगों को दूसरों की सेवा करने, जरूरतमंदों का सहारा बनने और मानवता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। मॉरिशस मतलब आवास एवं भूमि मंत्रालय ने मंगलवार को एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन मैप जारी किया, जिसके माध्यम से लोग सार्वजनिक समुद्र तटों तक पहुंचने वाले मार्गों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। फिलहाल इस इंटरैक्टिव मैप में 4 क्षेत्र ला प्रुनेज, ला मीवा, तमारे और फ्लाक को शामिल किया गया है। आने वाले समय में इस मैप का विस्तार मॉरिशस के अन्य इलाकों तक भी किया जाएगा, ताकि लोगों को सार्वजनिक समुद्र तटों तक उपलब्ध पहुंच के बारे में अधिक व्यापक जानकारी मिल सके। विदेश में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले पर इजरायल की तीखी प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि ये क्षण कितना

0: महत्वपूर्ण है। इसराइल के गुस्से का सबसे अधिक सामना ब्रिटेन को करना पड़ा, लेकिन 12 देशों द्वारा एक साथ कदम उठाने के फैसले ने स्पष्ट रूप से इस आक्रोश की भावना को और तीव्र कर दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। पेची शो में बिले अरिव्या सेश में 76 साल के 76 years old श्री नंदत बाबूलाल, जिन्हें लोग ज्ञानदेव नाम से जानते थे और जो विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल के पिता थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनकी पत्नी देवंती बाबूलाल के मकान पिछिशो में बिलिया रिव्या सैश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिलिया किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM शिवाला रोड पिछिपा के मोताई ब्लांश में 78 साल के 78 years old श्री हरिनारायण अनंतरास, जिन्हें लोग रमेश नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले कृषि मंत्रालय में ड्राइवर का काम करते थे। इनकी अर्थी आज शाम साढ़े तीन बजे इनके मकान शिवाला रोड पिछिपा के मोताई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लांश कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM पागोडा लेन कंकावल क्यूपिप में 52 years old श्री गंद्रनाथ तल्लू, जिन्हें लोग बोबी नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज शाम 3:30 PM इनके मकान पागोडा लेन कंकावाल क्यूपिप से उठाकर बिगाहा कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM और कोरियोलिस रोड सेजिया मिल फॉरेस्ट साइड में 58 years old श्रीमती अमृति नंदा ओबिलक, पैदाशी नाम लक्ष्मण और जिन्हें लोग नंदा नाम से अधिक जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके पति महेश्वरनाथ ओबिलक के मकान कोरियोलिस रोड से जियामिल फॉरेस्ट साइड से उठाकर आले भैया कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

और कोई गुफ्तगू करने वाला गुफ्तगू कर रहा था, या अमीना खातून परेशान नहीं हो, ये इमामुल अंबिया है, इन्हें मशरिक़ व मगरिब की सैर करा दी जाए, ये इमामुल अंबिया है, इन्हें शिमाल व जुनूब की सैर करा दी जाए, इन्हें दरियाओं के तमाम मखलूकात की सैर करा दी जाए, और ये इमामुल अंबिया है, ज़मीन व आसमान इन्हें दिखा दिया जाए और ज़मीन व आसमान पर पेश कर दिया जाए, ताकि दुनिया की हर शे जान जाए कि जनाब

कस जिन और शैतान के, बाकी कायनात का हर शे मुझे जानती है, पत्थर मुझे जानते हैं और दरिया का पानी मुझे जानता है, दरख्त के पत्ते मुझे पहचानते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई। सरकार की माँ फरमाती है, मैंने देखा सैयदुल मलाइका जिब्रील तशरीफ़ लाए, उनके हाथ में 3 झंडे हैं, एक झंडा उन्होंने काबा की छत पर लगाया, दूसरा बैतुल मक़दिस की छत पर लगाया, तीसरा खाने काबा की छत पर लगा, तीसरा मेरे घर की छत पर लगा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार की माँ फरमाती है, फिर मैंने देखा उनके हाथ में कई झंडे थे, एक शिमाल एक मशरिक में लगाया, दूसरा मगरिब में, तीसरा शिमाल और जुनूब में लगा दिया और एक काबे की छत पर लगा दिया। सरकार की माँ फरमाती है, मैंने देखा उनके हाथ में फिर उससे ज़्यादा भी झंडे थे, एक झंडा खाने काबा की छत पर, शिमाल जुनूब मशरक व मगरिब और इसके अलावा बैतुल मक़दिस की छत पर भी लगाया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये झंडा क्यों लगाया जा रहा है? सरकार की विलादत की खुशी में ये झंडे क्यों लगाए जा रहे है? गोया के ये बताया जा रहा है कि जहां तक जिसका झंडा होता है वहां तक उसकी हुकूमत का दायरा कार होता है। मशरिको मगरिब शिमालो जुनूब काबा और बैतुल मक़दिस, जमीन और आसमान पर झंडा लगाने के बाद ये बताया गया है कि ये जो आए हैं ये मशरिक के भी मालिक हैं, ये मगरिब के भी हैं, इनकी हुकूमत का दायरा शिमालो जुनूब के दायरों में नहीं है बल्कि ये जमीन पर भी इनकी हुकूमत है और आसमान पर भी इनकी हुकूमत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, या रसुल्ला बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसुल्लाह हम आए यहां तो हमारे लिए। सरकार की वालदा वाजिदा फरमाती है कि जब से मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो एक खातून ने आकर के मुझे पूछा, ए आमीना, इन दिनों तो मक्कतुल मुकर्रमा तेल की किल्लत चली आ रही है, मगर तुम्हारे घर में जब भी उठकर झांकती हूँ देखती हूँ तो तुम्हारा घर आसमान तक रोशन नजर आता है, इतना तेल कहाँ से लाती हो? तो सरकार की माँ फरमाती है, जब से मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ है मैंने तेल खरीदा ही नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार की माँ फरमाती हैं, जब से मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में जलवागर हुआ मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशबू मेरी जो है सारी मजलिस में रहती थी और सब औरतें कहती थी, आमिना तुम कितनी महंगी खुशबू लगाती हो। सरकार की माँ फरमाती हैं, जब से मेरा बच्चा मेरे पेट में आया मैंने कोई खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मक्का के हालात ये थे, लेकिन उस ज़माने के हालात ये भी थे, उस ज़माने का कल्चर था कि ख़वातीन जो मक्का बड़े बड़े सरदार होते हैं उनके घरों में जब बच्चे पैदा होते थे तो वो गाँव में देहातों में अपने बच्चे की परवरिश के लिए दूध पिलाने के लिए दाइयों को हायर कर लेते थे और उनको पैसा दे करके उनको ख़रीद लेते थे और उनसे कहते थे हमारे बच्चों को दूध पिलाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कि गाँव की आबो हवा अच्छी होती है। मक्कतुल मुकर्रमा से 12 पहाड़ियों के फासले पर एक कबीला आबाद था जिसका नाम है कबीला बनू साद। अब ये कबीला बनू साद वहाँ पर आबाद था। यहाँ पर मालूम हुआ औरतों को कि मक्कतुल मुकर्रमा शहर मक्का में खवातीन के यहाँ और बड़े बड़े सरदारों के यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं, चलो वहाँ से बच्चे ले आए जाएँ ताकि बच्चों की परवरिश की जाए, दूध पिलाया जाए तो कुछ ना कुछ उजरत मिलेगी, पैसा मिलेगा जिससे हमारे घर का काम चल जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। खवातीन तैयार हुई तो तकरीबन 10 या 11 तक खवातीन तैयार हुई तो उसमें से एक खातून का नाम हलीमा खातून भी है। औरतें आईं और आने के बाद कहा, बहन हलीमा तुम भी हमारे साथ मक्कतुल मुकर्रमा चलो। हज़रत हलीमा खातून ने कहा, मैं मुफलिस व कल्लासा हूँ, मेरे घर में हालात हैं कि खाने के भी हालात नहीं है और फिर मेरे जानवरों का जो है दूध भी खुश्क हो चुका है और मेरे शोहर की तबीयत अलील है और जो सवारी है वो भी लागर और बीमार है, खाने की वजह से उसे खाना नहीं मिल पा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहेलियाँ इकट्ठी हुई, उन सब ने कहा कि आमिना हलीमा जब तक तुम नहीं जाओगी हम भी नहीं जाएंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। जब उनके साथ की सहेलियों ने उनके जो है उनकी जो है जो साथ में रहने वाली खवातीन थी उन्होंने जब प्रेशर किया तो हज़रत हलीमा खातून तैयार हो गई और तैयारी के बाद उन्होंने अपनी सवारी को तैयार किया, अपने शोहर को साथ में लेकर के वो भी मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुई। अल्लाहु अकबर। सब की सवारियाँ मजबूत थी और तरोताज़ा थी इसलिए वो तेज़ी के साथ सफ़र कर रही थी, लेकिन हलीमा खातून है कि उनकी सवारी साथ साथ मकाम पर बैठती चली जा रही है इसलिए कि सवारी कमज़ोर है। हलीमा खातून किसी तरह से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँची तो सारी खातून के बाद में पहुँची हैं और सारी खवातीन
पहले पहुंच गई, और पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मक्का के बड़े बड़े सरदारों के घरों से बच्चों को ले लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, हर एक खातून आती और आमिना खातून की झोंपड़ी में आने के बाद जब ये मालूम होता कि ये बच्चा यतीम है, इसके बाप का पहले ही इंतकाल हो गया है, तो औरतें नहीं लेती थी, बल्कि औरतें क्या नहीं लेती थी, मेरा ईमान मेरा विजदान ये कहता है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का दूध पिलाना अल्लाह को मकसूद हलीमा खातून का था, उनका इंतखाब था, इसलिए उनके अलावा कोई ले नहीं सकता था, इसलिए सारी औरतें आई चली गई। हलीमा खातून हर दरवाजे पर जाती थी और पता चलता कि अभी हमने

अपना बच्चा दे दिया। तो मायूस होकर के वापस चली आती, सहने काबा में आकर खड़ी हो गई। इतने में उनकी सहेलियां भी जमा हुई, उन्होंने कहा बहन अलीमा तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिला? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, मैं जिस दरवाजे पर गई तो उन्होंने कहा मैंने अपना बच्चा दे दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, उन सहेलियों ने कहा बहन सुनो सुनो, हमने सुना है कि ये खाना काबा बाबू सलाम की जानिब एक झोंपड़ी है, ये अब्दुल्ला की झोंपड़ी है, सरदार कुरेश अब्दुल मुत्तलिब की बहू आमिना खातून यहाँ पर रहती है, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ है। हम जहाँ भी गई हैं तो सारी ख्वातीन ने उनकी तारीफ की है, उनका हुस्न ऐसा है, उनका चेहरा ऐसा है। ऐ बहन मगर ये है कि मालो जर ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए कि बच्चा यतीम है, लोगों ने तो यही समझा था। उन्हें क्या मालूम था कि यतीमों की परवरिश करने वाला यही है, उन्हें क्या मालूम था कि बेवाओं को सहारा देने वाला यही है, उन्हें क्या मालूम था कि औरतों को आज़ाद कराने वाला यही है, गुलामियों की बेड़ियाँ तोड़ने वाला यही है, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला यही है, भूखों को खाना खिलाने वाला यही है, यही रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। औरतों ने जब कहा तो हलीमा खातून के दिल में मोहब्बत बढ़ने लगी, औरतों ने जब कसीदे पढ़ना शुरू किए तो उनके दिल में मोहब्बत जमने लगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, चल के देखा तो जाए, मैंने भी हर जगह उनकी तारीफ़ को सुना है। अब हलीमा खातून आमिना खातून के घर आती हैं, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, दरवाज़ा खोला गया, आमिना खातून ने फरमाया कौन हो? उन्होंने कहा बहन हलीमा मैं बहन आमिना, मैं हलीमा खातून हूँ, कबीला बनू सात की रहने वाली हूँ, मेरे साथ औरतें आई थी, उन्होंने जाकर के बच्चे ले लिए, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला है, मुझे मालूम हुआ कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, अगर दूध पिलाने की सआदत मुझे मिल जाती तो मैं बड़ी खुशनसीब अपने आप को समझती थी समझूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार की माँ कहती है, जब तक ये बात कही तो सरकार की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा बहन आमिना तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा रोने का सबब यह है कि तुम जिस नीयत से आए हो शायद वो तुम्हारी नीयत पूरी ना हो सके। क्या क्या मतलब है? क्या मतलब यह है कि बच्चे के वालिद का पहले इंतकाल हो गया है, ये बच्चा यतीम है। अल्लाह अकबर, सरकार के दादा जान को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद हलीमा खातून जब तक तारीफ सुनती रहती है और आमिना खातून बयान करती है, ए हलीमा तुम मेरा बच्चा लेकर तो जाना चाहती हो, मगर सुनो मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे का अंदाज ये है, मेरे बच्चे की पैदाइश है, तो सारा मामला बयान कर दिया। हलीमा सुनती रही, उनके दिल में मोहब्बत बढ़ती रही। अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा बहन आमिना तुम अपना बच्चा हमें दिखाओ तो सही, वो दिखते कैसे, उनका चेहरा कैसा है? अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार की माँ ने जो पालने में मुस्तफ़ा जानमत आराम फरमा रहे थे, जब उस चादर को हटाया और हलीमा खातून ने सरकार का चेहरा देखा, निगाहों निगाहों में बातें हुई, ओया वो कहने लगी ऐसा बच्चा तो हमने देखा नहीं है। सरकार को उठाकर अपने जो है सीने से चिमटा लिया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी छाती से लगा करके उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया। तो सरकार कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल इंसाफ मुलाजा करो प्यारे, अंदाज़ा करो कैसी शान वाला नबी है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बचपन का आलम है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, सीधे पिस्तान का दूध पिया, उसके बाद में जब पी लिया तो बाएं दाएं जो लेफ्ट वाले पिस्तान की तरफ उन्होंने मुँह लगाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह को फेर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, जब कई मरतबा किया तो वो समझ गई कि ये हो सकता है इत्तिफाक के बच्चे ने ना पिया हो, लेकिन जब कई मरतबा मेरे आका ने मुँह लगाने से इनकार कर दिया तो वो समझ गई कि मेरा ये मोहम्मद रसूलल्लाह कितने अदल इंसाफ वाले हैं। इन्होंने सिर्फ एक पिस्तान का दूध पिया, दूसरे का छोड़ दिया, इसलिए कि हलीमा अपने सगे बेटी को भी दूध पिला रही थी। गोया के मुस्तफ़ा ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर मैं दोनों का दूध पी लूँगा तो मेरा भाई भूखा रह जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पिस्तान का दूध पिया है और एक पिस्तान का दूध छोड़ दिया है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदल इंसाफ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस वाक्य की तरफ इस तरह से इशारा फरमाते हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीते के नस्बत पे लाखों सलाद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो मुंह को हटा लिया, अब सरकार के दादा आए तो गुफ्तगू हुई। सरकार के दादा ने कहा तुम हलीमा मेरे बच्चे पोते को लेकर तो जा रही हो, इसके बाप का जरूर इंतकाल हो गया, लेकिन इसका दादा अभी जिंदा है, जितना माल तुम्हें मक्का में कोई सरदार नहीं दे सकता, मैं अपने पोते की परवरिश पर तुम्हें इतना पै माल दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, उनके लिए दुआएं फरमाई और बहुत सारी बातें उनसे करने के बाद सरकार को उनके हवाले कर दिया गया। हजरत हलीमा खातून से कहा गया, हलीमा खातून ने कहा बहन अब मुझे इजाज़त दो और अल्लाह के हवाले मुझे कर दो, इसलिए कि अब मेरी सहेलियाँ जाने वाली है, मेरी सवारी बीमार है, इसलिए मैं पीछे रह जाऊँगी। अल्लाह अकबर कबीरा सरकार को लेकर के आई और लाने के बाद अपनी सवारी के करीब पहुँची, सवारी खड़ी हो, सवारी पर

0: बैठी, और जब सवारी चली है अल्लाहु अकबर तो रश कर रही है सवारी कि आज इमामुल अंबिया हमारे ऊपर जलवा फरोज हो चुके हैं। अब यही सवारी है कि रास्ते में जो साथ साथ जगह बैठ रही थी अब सारी सवारियों से आगे निकल जाती है। औरतों ने कहा था, ए हलीमा ये तो बताओ तुमने मक्का से कोई सवारी बदल ली है जो इतनी तेज चल रही है? हलीमा खातून ने फरमाया, सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल लिया है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के पोते के बैठने का कमाल है। हलीमा खातून फरमाती है, मैं जिन गलियों से गुजरती जा रही थी उन गलियों से खुशबू आ रही थी। तो औरतों ने कहा, हलीमा तुमने खुशबू को खरीदा? मैंने कहा, नहीं खुशबू नहीं खरीदी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चलने की बरकत है जो गलियां महक रही है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजरते जा रहे थे खुशबू आती जा रही थी। हलीमा खातून फरमाती है, जब हमारी सवारी पहाड़ियों के दरमियान से गुजरी तो मैंने हैरत में रहकर देखा कि कोई दरख्त ऐसा नहीं था जो झुककर इन्हें सलाम न कर रहा हो, और कोई जानवर ऐसा नहीं था जो मेरी सवारी के करीब आकर झुक करके सलाम न कर रहा हो। पत्थरों से आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर सलाम जिनको तहिय्यत शजर की है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको हुजूर से सच्ची मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए, और हुजूर का खूब खूब मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: मौजूद सामईन, हम बात करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब कोई शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल ज़कात इस गर्ज़ से लाता कि मुस्तहिकीन में तकसीम फरमा दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लाने वाले को दुआ देते, ऐ अल्लाह इस फला शख्स पर रहम फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर तशरीफ ले जाते तो दरवाज़े के सामने ना खड़े होते बल्कि दाहिनी या बाएं जानिब खड़े होते, और घर वालों की इत्तला के लिए फरमाते, अस्सलामु अलैकुम।

मौजूद सामीन, किसी शख्स को इत्तेफाकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कोई तकलीफ़ पहुंच जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बिला तकल्लुफ़ बदला लेने का हक़ देते और कभी उसके एवज़ में उसको कोई चीज़ मरहमत फरमाते। अगर कोई गरीब आता या कोई बांधी बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहती तो सड़क के एक किनारे पर सुनने के लिए खड़े हो जाते या बैठ जाते। बीमार होता तो उसकी बीमार पुरसी फरमाते। किसी का जनाजा होता तो उसमें शरीक हो जाते।

मौज़ सामीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को किसी के घर तशरीफ़ ले जाते तो ऐसी आवाज़ से सलाम करते कि जागने वाला सुन लेता और सोने वाला अन्ना जागता। चलते तो नीचे निगाह ज़मीन की तरफ रखते, मजमे के साथ चलते तो सबसे पीछे होते और कोई सामने आता तो सलाम पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करते। आजिज़ाना सूरत से बैठते, गरीबों मिस्कीनों की तरह बैठकर खाना खाते। और इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पर

नज़ीर हो जाए कि आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: गुजरात नी सुगंध, गुजरात नो रंग, गुर्जरी धराना मीठा झरना, एमबीसी रेडियो पर।

ते हूँ

की पसंद। ढाई बज चुके हैं श्रोताओं, और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ आज बुधवार 9 सितंबर 2026, जी हाँ, आप सुन रहे हैं इस समय आपकी पसंद प्रोग्राम, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जी हाँ, नंबर है 4028085402885, और मैसेजेस आप भेज सकते हैं ऑन 5251705। चलिए, हमें आपका इंतज़ार है, और आज का पहला गाना उन सभी लोगों के लिए जो जुड़ चुके हैं साथ में।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: आपकी पसंद 2:35 हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं धीरज जी, हाँ, और वो रहते हैं थयोले। और आज की पहली फरमाइश उनके लिए, फिल्म का नाम है अग्नि साक्षी। आवाज़ें हम सुनेंगे बाबू सुप्रियो और कविता कृष्णमूर्ति। खास गाना उनके नाम और हमारे तमाम सुनने वालों के नाम।

keep us in. चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम सुनेंगे उदित नारायण की आवाज़ में अगला गाना, और गाना है फिल्म राजा से लिया गया, और ख़ास कर ये गाना हम चलाएंगे विश्वानी डुमन जी के लिए, और वो रहते हैं वाक्वा, और गाना ख़ास कर वो मांग रहे हैं अपनी बहन इंदिरा, शारदा सहेली है नीला, प्रतिभा, शोभा, सासू माँ रीता और गीता गजाधर के लिए भी। तो चलिए बहुत ही प्यारा गाना हम साथ मिलकर सुनते हैं, और ऐसे ही साथ दीजिए।

चलिए बढ़ते हैं आगे। 2:50 हुए हैं और यहाँ पर प्यारा गाना हम चलाएंगे लीला जी के लिए, वो रहती है बाशिकी उनके नाम, और साथ में किसी ने मैसेज भेजा है गाना अपनी बेटियाँ के लिए और नाम तो नहीं बताया। चलिए ये जो गाना है आपकी प्यारी बेटियाँ के नाम जाता है, और साथ में अक्षय और रीना जो रहते हैं बासा रोड काठोबोन और इस समय हमें सुन रहे हैं, साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें विधिमा से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। भारत सरकार डिजिटल परिवर्तन में कोगो हैंडलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सहयोग कर रही है। इस सहयोग के मुख्य पहलुओं में से एक कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है ताकि उन्हें नए उपकरणों और उपकरणों के उपयोग के लिए तैयार किया जा सके। अक्टूबर महीने से ही उनके लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में विभिन्न बंदरगाह संचालन गतिविधियों का अभ्यास करने की अनुमति देगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके कौशल को मजबूत करना और उन्हें बंदरगाह क्षेत्र में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना है। शागस मामले में एक नया विकास सामने आया है। मालदीव्स ने लंदन से द्वीप समूह की संप्रभुता पर चर्चा फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध कल राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू द्वारा नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से किया गया। लंदन ने उन्हें जवाब दिया है कि ये मुद्दा मॉरिशस के साथ उसके संबंधों के दायरे में आता है और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत कल फिर से शुरू होनी है। आज बियनोर पेलावर की मृत्यु की 162वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मॉरिशस के इस महान संत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सेंट क्वा में कई विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कल शाम दिए गए अपने संदेश में मोंसिनियर जो मिकाएल जुरन ने बियनोर पेलावर का अनुसरण करते हुए सबसे कमजोर लोगों के दुखों और उम्मीदों को सुनने का आह्वान किया है। और विदेश में नेपाल में भयावह बाढ़ के 14 दिन बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी है। अब बचाव दलों का सबसे बड़ा ध्यान 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे दर्जनों कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: आपकी पसंद चलिए आपके पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं. श्रोताओं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. 3:03 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपके पसंद प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस पर और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 4 तक. आप भी साथ निभाइएगा और नंबर है 4028085402 8085. और मैसेजेस आप भेज रहे हैं 5251700. चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला गाना खासकर हम चलाएंगे अनीता जी के लिए. वो रहती है मोडाल बेया और इस समय सुन रही है जी हाँ करुणा के लिए अमृता और साथ में कविता के लिए गाना मांग रही है. धड़कन मूवी से लिया गया. चलिए उदित नारायण और साथ में अलका याग्निक की आवाज़ों में

आपकी पसंद। तीन बजकर 11 मिनट हुए हैं और यहाँ पर गाना खास कर हम चलाने जा रहे हैं लॉन्ग माउंटेन के रहने वाली शकुंतला के लिए। जी हाँ, आज उनकी नाती मयूर का जन्मदिन है और वो रहते हैं कौजाबल और इस समय साथ दे रहे हैं। धन्यवाद, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मामा प्रीति, पापा साइलेश, दादी नानी, जी हाँ दादी नानी गायत्री जो रहते हैं नुवेल फ्रांस, उन सभी लोगों की ओर से उनके लिए ये गाना हम चलाएंगे।

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: और साथ में ये गाना जाता है उन सभी लोगों के लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज 9 सितंबर 2026 चलिए पूरी MBC टीम की ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपकी पसंद। तीन बजकर 19 मिनट हुए हैं। चले, काफी लोग हमसे गाना मांग रहे हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर, लेकिन हम एक ऐसा गाना चलाएंगे उन सभी लोगों के लिए जो व्रत रख रहे हैं और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और गाना खास कर जाएगा माला झरी जी जो रहती हैं पेची थ्रेट उनके लिए, और गाना खास कर वो मांग रही हैं अपने बेटे दीपक, बेटी रीमा और सभी सुनने वालों के लिए, और खास कर हमारी पूरी MBC टीम के लिए भी।

चलिए सुदेवी जी, आप हमें सुन रही हैं फ्रॉम वाक्वा और आपके नाम हम गाना चलाएंगे, साथ ही साथ में गाना आप डेडिकेट कर रही हैं ट्रियोले के रहने वाली दीदी ललिता, खुशल फैमिली, सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, मालेगा के याशना, नीरज, लक्षिका, किशिका और पूरे रामरतन परिवार, रिडोई परिवार, रघुबर परिवार, कुआऊ परिवार, जालू परिवार, बाप रे बाप इतने सारे तो चलिए होप के ये सभी लोग आपको सुन रहे हैं इस समय। फिल्म का नाम है किंग अंकल और गाना जाता है आप सभी लोगों के लिए।

आपकी पसंद। तीन बजकर 35 मिनट हुए हैं दोस्तों। चलिए, खुश रहने को ज़रूरी है, क्या है वो है प्यार करना, प्यार बांटना और हमेशा दूसरों को खुश रखना। और यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए हम अगला गाना चलाएंगे विद्या जी के लिए। वो रहती है न्यूयन पॉक और गाना खासकर वो मांग रही है बहन सती, सुरेखा, बबीता, चाची कुमारी और सभी सुनने वालों के लिए, उनकी प्यारी उषा जी के। चलिए, धन्यवाद आपको। फिल्म का नाम है मेरे महबूब, लता जी की मधुर आवाज़ में।

आपकी पसंद। किसी की याद में हमेशा हम खोए रहते हैं और जिंदगी के साथ जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं

चलिए, यूनियन पार्क के रहने वाली गीता जी इस समय हमें सुन रही हैं और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया 3 तारीख को। जी हाँ, और वो रहती हैं यूनियन पार्क। जी हाँ, और परिवार मोहर परिवार की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। उमा है जिन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया है, और भविष्य ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद सुंदर परिवार और गोपाल परिवार की ओर से। और ये गाना चल पड़ा आपके नाम।

चले दोस्तों, जब तुम आ जाते हो सामने 3:50 हुए और अगला गाना शीला जी के लिए वो रहती है डिपिना। गाना वो मांग रही है अपने भाई के लिए, भाई डट के नाम।

0: ये सुनिए, सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियां लागोलेट के आसपास के इलाके मोसेलमो ला फ्लेश, मोसेलमो ग्रांड, काज नोयाल के रहने वालों को यह सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और बेलेया के आसपास के इलाके पेटी शुमें, क्लेंसी रोड, रॉयल रोड, एमसीबी के पास शुमें गाराज के रहने वालों को यह सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 अगस्त 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और ले बुशों के आसपास के इलाके ला शापेल लेन, सोसाइटी ला कॉन्फिडेंस, ला गामेल, कॉन्स्टेंस लेन के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि गुरुवार 10 सितंबर 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: 819 kilowatts.
0: तीन बजकर 54 मिनट हो गए हैं। चलिए आज के इस आखिरी गीत को हम डेडिकेट करेंगे मामा जी के लिए। जी हाँ, जगदेव जीवन, और ये गाना खासकर प्रीति रंजीत फैमिली की ओर से, और वो रहते हैं क्यूपिप। उनकी दूसरी बरसी पर वे लोग उनको याद कर रहे हैं और उनकी बीवी गीता दीवन, अन्यता, बेटी रागिनी, सुखदेव फैमिली और साथ में है रेशमा गुलजौ फैमिली की ओर से ये गाना उनके नाम। और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में। ठीक 5 बजे 4 बजे आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम, जी हाँ, शिरीष खामा के साथ। और मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार गए।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आज के इस खेती बाड़ी के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ बालगोबिन बासेनु, वल्गराइजेशन ऑफिसर फारे से। आज कंपोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो कंपोस्ट करने के बहुत तरीके हैं, पर आज के इस प्रोग्राम में सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊंगी। कंपोस्ट किस चीज को कहते हैं? तो जब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, जो हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, सर कर एक खाद बनती है जो ऑर्गेनिक पदार्थ, न्यूट्रिएंट और माइक्रोब्स से भरा हुआ है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट को फल और सब्जियों को उगाने में काम आती है। आर्थिक विकास से हमारे रहन सहन में बहुत बदलाव आई है, जिसे हम बहुत खरीदारी करते हैं, और दुर्भाग्यवश ऐसे बदलाव से बहुत सी वेस्ट मटेरियल हर रोजाना पैदा होता है। हर एक मॉरिशन लगभग 400 केजी वेस्ट हर साल पैदा करते हैं, और इससे हर साल मॉरिशस में लगभग 500,000 टन्स की घरेलू कचरा पैदा होता है। सरकार को बहुत ज्यादा लगते हैं इन कचरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कचरे उठाने के लिए और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जगह लगते हैं, व्यवस्था लगते हैं और बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। यहाँ वहाँ पड़े हुए कचरे ना सिर्फ लैंडस्केप को खराब करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और एनवायरनमेंट पे भी जरूर भारी पड़ता है। तो इसके लिए कुछ अच्छा करना बहुत जरूरी है। सभी घरों में बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, वो एक अच्छी नेचुरल रिसोर्स होता है। इन बायोडिग्रेडेबल कचरों को हम कंपोस्टिंग के द्वारा रिसाइकल करके कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट एक ऐसी पदार्थ है जो कचरों की डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, जहाँ पर मिट्टी में बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स, कीड़े मकोड़े द्वारा से बनती है। इन जीव जंतु को बहुत सारे हवा और गर्मी चाहिए अपने पूरे लाभ दिखाने के लिए। अंत में एक अच्छी खाद मिलती है जो नेचुरल, इकोलॉजिक और ऑर्गेनिक भी है, जिसे हम कृषि विकास में उपयोग कर सकते हैं, जिसे मिट्टी के स्ट्रक्चर, उसके फर्टिलिटी और पानी रखने की क्षमता को बढ़ाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, पर हर एक तरीके एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो कि अपने आंगन में भी कर सकते हैं, छोटे आकार में या चाहे तो बड़े कमर्शियल आकार में भी आप कर सकते हैं। अपने यहाँ कंपोस्ट बनाने के लिए आप अपने जगह ठीक तरीके से ही चुने। कौन सी सिस्टम में अपने कचरे को डालना है, कौन सी मटेरियल को चुनना है, कैसे चुनना है, इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें। कंपोस्ट बनाने के लिए एक गुप्त जगह जो एक्सेसिबल भी हो, थोड़ा छांव में हो, ही ठीक होता है। आप अपने कंपोस्ट बिन प्लास्टिक के ले सकते हैं, लकड़ी से या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स से भी आप बना सकते हैं। प्लास्टिक का बिन आसानी से मार्केट में मिल जाता है, प्रैक्टिकल भी है और ज्यादा दिनों तक भी चल सकती है। आप इकोनिकल शेप कंपोस्ट भी अपना सकते हैं, जिसे आप अपने कचरे आसानी से ऊपर से ही डाल सकते हैं। इनके एक ढक्कन नीचे की तरफ भी होते हैं, जहां से आप तैयार हुए खाद को आराम से निकाल सकते हैं। एक अच्छे तरह ढके हुए कंपोस्ट बिन गर्मी को अंदर बढ़ाता है और चूहे से आपका कंपोस्ट को भी बचाता है। कचरे को चुनने के बाद कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिन्हें हम कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रसोई का कचरा, जिनमें सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों की पत्ती, मुरझाए और खराब हुए फल या फिर सब्जी, अंडे के छिलके, कॉफ़ी का वेस्ट जिसे हम कॉफ़ी ग्राउंड्स कहते हैं, कागज़ के फिल्टर, चाय की पत्तियाँ, चाय के वेस्ट और जो हर्बल चाय जिसे हम चिजान भी कहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें घर के कचरे भी होते हैं, जैसे कि कर्टन, बिना छिपा हुआ
कागज, लकड़ी का जो डस्ट होता है जिसे हम सोडस्ट कहते हैं। आप बगीचे के कचरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें हैं सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल, हरे पत्ते जिसे हम टी ट्रिमिंग कहते हैं, कटी हुई घास हम गाजों भी कहते हैं, और जो डालियाँ भी हम डाल सकते हैं, और जो भी फल आपके पेड़ से गिरे हुए हैं वो भी आप डाल सकते हैं। दूसरे और कुछ ऐसी सामान हैं जिन्हें कंपोस्टर में नहीं डालनी चाहिए, वो हैं प्लास्टिक के बैग या आप

प्लास्टिक की जो भी वस्तु होते हैं, प्लास्टिक का धातु, जो डिब्बे होते हैं, बोतल, टूटे हुए कांच, तेल या फिर जो भी ग्रीसी पदार्थ होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बना होता है, और बचे हुए मांस मछली के भोजन नहीं डालते हैं। बचा हुआ खाना, डायपर्स, वाइप्स, सिगरेट के टुकड़े भी नहीं डालते हैं। सिंथेटिक कपड़े, घरेलू पशुओं के एक्सक्रीमेंट जैसे कि बिल्ली और कुत्ते होते हैं, उनके एक्सक्रीमेंट नहीं डालते हैं। न्यूज़पेपर और जो भी मास्क इस्तेमाल किया जा चुका है उसे नहीं डालते हैं। जो भी लकड़ी, ट्रीटेड वुड जैसे हम करते हैं, और घास जिनमें बीज लग चुके हैं, हम उसे नहीं डालते हैं कंपोस्टर में। हम ऑर्गेनिक कचरे को उनकी पानी की मात्रा, जिसे हम वाटर कंटेंट कहते हैं, उसके आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले होते हैं हरी वस्तुएं जैसे रसोई का कचरा, कटी हुई घास, इनमें आमतौर पर बहुत अधिक नाइट्रोजन और पानी होता है। ऐसे वस्तुएं बहुत जल्दी डिकम्पोज होती हैं। डिकम्पोजिशन के दौरान एक पानी छूटती हैं और बहुत बदबू भी आ सकती हैं। और दूसरी ओर है सूखी हुई ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे लकड़ी की डालियाँ, सूखी पत्तियाँ, कागज़, कॉटन, जो कार्बन से भरपूर और पानी की मात्रा में बहुत कम होती हैं, और इसीलिए इस प्रकार के सामग्री को डिकम्पोज होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस पानी और हवा की उपस्थिति में माइक्रोब्स द्वारा स्वाभाविक रूप से होती है। तो एक सफल कंपोस्ट पाने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न प्रकार के कचरे को एक साथ मिलाएं। हरा कचरा, सूखा कचरा, कार्बन और नम कचरा अलग अलग आकारों में। सुझाव दिया जाता है कि 2/3 सूखी सामग्री के साथ आप 1/3 हरी सामग्री मिलाएं। ये सब अच्छे डिकम्पोजिशन के लिए आवश्यक हैं। कचरे को चुनने के बाद जो कचरा आकार में बड़ा और सख्त होता है, उसे डिकम्पोजिशन को बेहतर बनाने के लिए काटना या पीसना चाहिए। इसके साथ प्रिय श्रोताओं, मैं आज का प्रशासन समाप्त करती हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप फागे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपके सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगले सप्ते फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।

5:21 हुए हैं श्रोताओं, आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और प्रस्तुत है आपका मनपसंद प्रोग्राम अंताक्षरी प्रोग्राम। जी हाँ, मैं उषा कौर यहाँ पर आप लोगों के साथ। जी हाँ, हमने सुना कि अभी अभी पाई में एक एक्सीडेंट हुआ है, तो हमारा जो रोशन भाई है वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो वो आ रहे हैं धीरे धीरे, और अगर वो नहीं आ पाए तो हम यहाँ हैं उषा कौर आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, और आप भी साथ दीजिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और हमारा जो नंबर है 4028052 8085, और हमें आपका इंतज़ार है। जी हाँ, और आपको क्या करना है, दो गाने गाने होंगे, एक गाना एक नया और एक पुराना 90s के ऊपर। जो भी गाना आप गाएंगे ये तो नया होगा, और जो पुराने हैं 50s 60s 70s के गाने, हमें आप लोगों का इंतज़ार है। चलिए

0: जी हाँ, ये तो सच है कि हर दिल में रब बसता है, और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि लाइन पर कौन है, और इतने सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो सिर्फ गाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को सुनाना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते उषा जी, आप कैसी हो?
0: नमस्ते। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, और आप? सरिता
1: मैं
0: जी हैं
1: सरिता जी।
0: जी। सरिता जी, चलिए एक गाना, दो गाने आपको गाने होंगे, एक नया अब और एक पुराना। चलिए, किससे आप शुरू करेंगे?
1: नया हर किसी

0: चलिए, बहुत धन्यवाद आपको. हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार जिंदगी
1: आज
0: में.
1: अक्षय कुमार की जन्मदिन है ना
0: अच्छा, तो
1: जी.
0: चलिए उनको जन्म दिवस की हार्दिक
1: जी
0: शुभकामनाएं. और आपको
1: शुभकामनाएं जी. और
0: हम
1: दूसरा गाना है
0: एक पुराना गाना.
1: जी, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल.

0: जी
1: हेलो।
0: हाँ, पत्थर के सनम, बहुत ही प्यारा गाना। बहुत
1: जी
0: धन्यवाद आपको
1: धन्यवाद
0: सरिता
1: आपको
0: जी।
1: भी।
0: चलिए,
1: बाय।
0: बाय, शुभ शाम आपको। जी हाँ, आपने सही सुना, आज अक्षय कुमार का जन्मदिन है और हम उनको कैसे भूल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उन पर कोई भी गाना, नया गाना पर गा सकते हैं, और आपकी पसंद का कोई भी गाना, पुराना गाना।

0: चले देखते हैं कौन दिल चुराने आया है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते अनीता जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ। अब अच्छे है ना?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और अनीता जी क्या सुनाएंगे आप हमें?
1: एक नया, एक पुराना ना, नया गाना गाएंगे
0: जी जी हाँ
1: बाद में। एक पुराना जी,

0: जी
1: बहुत धन्यवाद अनीता जी, इस अदा
0: जी
1: पर हम फिदा हो गए।
0: ऐसी
1: चलिए दूसरा गाना सुनाइए।
0: गाना।

0: चलिए, बहुत धन्यवाद। और आपको अंताक्षरी प्रोग्राम जैसा चाहिए, है ना?
1: जी है ना। बाय सर जी,
0: धन्यवाद आपको।
1: बाय
0: चलिए, शुभ
1: बाय।
0: शाम।

0: चलिए हम यहाँ देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: जी।
1: साजी,
0: नमस्ते आपको।
1: कैसे
0: आप
1: हैं?
0: है सुदेवी जी, हम तो बिल्कुल ठीक है। और
1: नहीं,
0: आप कैसी हैं?
1: रोशन भैया नहीं है?
0: नहीं, रोशन भैया नहीं है, वो आपको सुन रहे हैं। चलिए धन्यवाद। और सुनाइए पहला गाना।
1: एक पुराना गाना।
0: पुराना गाना, चलिए।
1: ए हवा मेरे संगे संगे चल, मेरे दिल में हुई हलचल, सारी बगिया का सारी हर पल तुझे मिलने के हर पल। ए हवा मेरे संगे संगे चल, दिल
0: ऐ हवा मेरे संग संग चल। चलिए बहुत ही बढ़िया। दूसरा गाना सुनाइए, नया गाना।
1: चांद चांद छुपा

0: चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। और वैसे आपकी आवाज़ तो ठीक से नहीं आ रही है, आप बीमार हो।
1: शुभरात्रि आपको।
0: शुभ रात्रि आपको सुदेवी जी, मिलते हैं बहुत जल्द। वैसे जब आपको ये मौका मिल रहा है तो प्लीज़ ये मौका का लुफ्त उठाइए, ठीक से आप अपनी आवाज़ सुनाइए, क्योंकि कभी कभी घर पर बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं और हम गाना चाहते हैं। इसीलिए जब आपको लाइन मिल रही है ना, तो दिल खोल के, आवाज़ खोल कर गाना गाओ। हेलो
2: हेलो।

0: जी हाँ,
1: हेलो उषा
0: नमस्कार।
1: जी, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते, ओ कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ,
0: हाँ जी, आप ठीक, हम भी ठीक। चलिए
1: एकदम
0: सुनाइए।
1: चकाचक।
0: एकदम
1: आपने
0: चकाचक।
1: पहचान ही लिया होगा।
0: हाँ।

0: जब आप लोग गा रहे हैं ना तो दिल खोल कर, आवाज खोल कर गाइए। चलिए सुनाए पहला गाना।
1: पुराना गाना।
0: जैसे आपकी मर्जी।
1: अच्छा, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। थोड़ा बीमार है अभी।
0: थोड़ा बीमार है, जल्दी जल्दी ठीक
1: हाँ,
0: हो जाइए और
1: उतना गाना ठीक
0: सुनाइए
1: नहीं है।
0: दूसरा गाना, नया गाना।
1: दूसरा नया गाना।
0: हाँ

0: जी हाँ, खैरियत पूछने आएंगे हम,
1: अच्छा ठीक
0: ठीक है?
1: है ना।
0: हाँ जी कविता जी, बहुत धन्यवाद आपको, शुभ
1: आपको भी
0: शाम।
1: धन्यवाद।

0: की हवाएं बहके फिजाएं, और यहाँ पर कौन आया है? हेलो।
1: हेलो उषा जी, और रोशन जी भी, मैं जानती हूँ वो सुन रही हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार आपको, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: चलिए सुनाइए
1: जी।
0: पहला गाना।
1: पुरानी
0: पुराना गाना। ओके।
1: जी। यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो कितनी हुई करीब की हम दूर
0: अच्छा जी, मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। लता जी
1: गई।
0: का गाना है ना, तो आप
1: जी
0: हमें सुनाइए दूसरा गाना।
1: जी जी

0: जिंदगी मिलाने की, मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ।
1: ओके मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय। जहाँ जैसे कि हमने कहा आज अक्षय कुमार का जन्म दिवस है और ज़रूर आज RM Free रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन पर 7 से 9 बजे आप हमें सुन सकते हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में, और हमारा प्रोग्राम खासकर अक्षय कुमार पर उनके जन्म दिवस के मौके पर। और यहाँ पर तो ये प्रोग्राम आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन आया है सुनाने अपनी प्यारी आवाज। हेलो हेलो,
2: नमस्ते उषा जी।
1: नमस्ते जी, आप कौन? आप शोभा जी हैं?
2: हाँ,
1: कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
1: बिल्कुल ठीक
2: जी। हाँ,
1: सुनाइए पहला गाना।
2: पुराना?
1: हाँ जी।
2: दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती, शायद हम दोनों का एक ही रास्ता होगा, वरना हमारी मुलाकात नहीं होती।
1: बहुत बढ़िया शोभा जी, सुनाइए दूसरा गाना, एक का नया गाना।
2: हाँ, अक्षय कुमार जी पर। वादा रहा सनम,
1: ये तो चल रहा है ना।
2: ओह माय गॉड, क्या
1: सुन। इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलिए गाइए।
2: वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना। ठीक
1: ठीक, बहुत धन्यवाद आपको, मिलते हैं दो सप्ताह बाद।
2: आपको भी धन्यवाद, मेरी लाइन लग गई, बाय बाय और शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।

0: चले श्रोताओ, यहाँ पर हम कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं और देखते हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा बहना।
0: नमस्ते आपको, आप कैसी हैं? आप तो इंदिरा जी है ना?
1: ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ।
0: हाँ जी, सुनाइए पहला गाना।
1: मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ, पर सामने जब तू आता है जी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, मेरे साजन, ओ मेरे साजन।
0: हो गया आपका?
1: हाँ,
0: चलिए सुनाइए दूसरा गाना, एक नया गाना।
1: ये नया नहीं है।
0: अच्छा, ये नया है ना, 90s का गाना।
1: हाँ
0: चलिए पुराना गाना सुनाइए।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना।
0: चलिए इंदिरा जी, बहुत धन्यवाद आपको। हमारी
1: मुलाकात
0: होगी 2 सप्ताह बाद। बाय बाय,
1: शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: हम हैं सीधे साधे अक्षय और यहाँ पर हम सीधी साधी उषा, और यहाँ पर कौन आया है? हेलो,
1: मैं हूँ सीधी साधी आशा।
0: अब तो सीधी साधी आशा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ शादी, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और चलिए आशा जी, सुनाइए पहला गाना।
1: पहले तो ऑल इज गुड, तो कल आशा जी का भी जन्मदिन था, तो एक गाना उन पर। जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी जिंदगी। जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी जिंदगी। आओ मिल जुल कर सकद कबाते, क्यों हम

0: सभी।
1: चलिए, बहुत धन्यवाद आशा जी। सुनाइए अगला गाना।
0: गाना अक्षय कुमार पर मूवी हाँ मैंने प्यार किया।
1: ओके।

0: चलिए बहुत बढ़िया। और चलिए आशा जी, आपने साथ दिया, हम आपको कहते हैं बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।
1: थैंक यू चाची, और सभी को शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या।
2: तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाली, तेरा नाम क्या?
3: मैं

0: उद्देश्य से हम आए। चलिए देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते श्यामा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। चलिए सुनाइए पहला गाना।

0: ओ बलमा, चलिए ये गाना हम सुन रहे हैं श्रेया घोषाल और श्री राम की आवाजों में, और यहाँ पर हम देखते हैं किसकी आवाज हम सुनने जा रहे हैं। हेलो,
1: नमस्कार उषा बहन।
0: नमस्कार
1: हरीश।
0: आप हरीश,
1: अंदाजा लगा दिया होगा कि मेरी गला थोड़ा सा खारिश है।
0: हाँ जी,
1: ठंड की वजह से।
0: कोई बात नहीं।
1: पहला गाना मैं गाऊंगा माय हीरो, लेजेंडरी हीरो, रोमांटिक हीरो देवानंद के। आपने कहा दिल खोल कर गाओ, कुछ शायराना है। गिरला जिस शायर है, गम्मा जिस नगमा है, सब ये गजल है सनम। गिरला जिस शायर है।

0: बहुत बढ़िया हरीश भाई, कहाँ कहाँ से ले आप लेकर आते हैं ऐसे ऐसे गाने? बहुत ही रेयर गाना है ना?
1: या रेली वी कैन डू दैट
0: ओके।

0: चलिए हमें
1: आपने आपने
0: सुनाइए।
1: देखा ना, कुछ शायराना मूड में हूँ।
0: अच्छा, क्यों मौसम ऐसा है?
1: तो दूसरा अक्षय कुमार।
0: ओके।
1: तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा
0: अच्छा
1: दिल है, मेरा दिल है। भाई रोशन को मैं सलाम करता हूँ। थैंक यू
0: हाँ
1: सो
0: जी,
1: मच।
0: वो आपको सुन रहे हैं इस समय। बहुत धन्यवाद आपको।
1: थैंक यू।

0: चलिए एक और श्रोता, और आज के आखिरी कंटेस्टेंट हम ले रहे हैं, और आप हैं, आपका नाम? हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: नमस्ते उषा जी,
0: नमस्ते, कैसे हैं
1: ओशन
0: आप?
1: भाई को भी नमस्ते और सभी अंतर्राष्ट्रीय टीम को भी नमस्ते।
0: चलिए, धन्यवाद। जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है।

0: लगता है तेरी महफिल है। ओके
1: हाँ जी, बहुत
0: छोटा
1: बढ़िया।
0: और नए गाने हैं, इस प्यार को मेरी तरफ ना देखो, ओ, प्यार हो जाएगा। टन टन टन टन। ओके
1: चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पर आए हुए भाई रोशन को हम कहते हैं सलाम।
2: नमस्कार और सलाम उषा जी, क्या करें, ये जो सीरियस एक्सीडेंट जी हो गया वहाँ पर पाए में, वहीं से यहीं रुक रुक के गाड़ी चल रही थी,
1: तो आप आए पर
2: बिल्कुल आया, श्रोताओं का प्यार मुझे खींच लाया।
1: हाँ, हमने हमने हमने सोच लिया कि आप आ रहे हैं और हमें सुन भी रहे होंगे, और वैसे आज अक्षय कुमार का जन्म दिवस है तो उन पर हमने कार्यक्रम किया है, और धन्यवाद आप आए। और क्या कहें, इसी के साथ आज का प्रोग्राम आपके साथ ही हम क्लोजिंग करेंगे।
2: वैसे तो आप ही गाती हैं, तो चलिए हम क्लोजिंग आप ही से कराते हैं।
1: हम सही,
2: कोई भी गाना अक्षय कुमार पर आप गाइए प्लीज।
1: हम क्या गाए,
2: कोई भी।

0: देखो देखो देखो मुझे प्यार हो गया।
1: जी हाँ,
0: चलिए,
1: आपको प्यार हो
0: धन्यवाद।
1: गया। सारे श्रोताओं से जो अंताक्षरी के बहुत ही शौकीन है।
0: हाँ जी,
1: चलिए, नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि आपको।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के ठीक 6 बजे हैं। नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सेंट क्वा में प्रार्थना, स्मरण और भाईचारे का विशेष वातावरण रहा। पहला वाल की 162वीं पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके मकबरे पर पहुंचे। मुख्य प्रार्थना सभा में गरीबों की सहायता और अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। मॉरिशस में निवेश को रफ्तार देने और कारोबार की राह आसान बनाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। लाइसेंस और परमिट जल्द जारी करने के साथ साइलेंट एग्रीमेंट का नियम लाने और सेवाओं में एआई का उपयोग करने की योजना है। और विदेश में नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद मलबे और पानी से भरी सुरंगों में लापता लोगों की तलाश जारी है। 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता। उधर बिहार के 13 जिलों में बाढ़ से 34 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। सबसे पहले ये खबर, पाए में आज दोपहर एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। हादसे में लोहे की छड़ें ले जा रहा एक लॉरी और कई अन्य गाड़ियां शामिल हैं। 9 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना दोपहर करीब

0: 2:07 पर मेफ्लावर के पास M2 मोटरवे पर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार पोटली की ओर जा रहे लॉरी ने पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी, इसके बाद वो बीच के डिवाइडर को पार कर गया और विपरीत दिशा से आ रही अन्य गाड़ियों से भी टकराई। आखिर में भारी वाहन मोटरवे की दूसरी ओर सड़क किनारे जाकर रुका। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लॉरी में लदी लोहे की छड़ें सड़क पर बिखर गईं। इसके कारण दोनों दिशाओं में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस अभी भी स्थल पर मौजूद है। कल शाम एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेंट क्वा पहुंचे। उन्होंने 162वें वर्ष के अवसर पर बियनेरो जाक देज़िरे लावाल की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वर्ष एंसेम्ब्ल अवेक पेर लावाल पुर उन सोसाइटी प्लीज दिस एक फ्रैटर्नेल फवर लावाल के साथ एक न्यायपूर्ण और भाईचारे वाले समाज की ओर विषय के साथ ये श्रद्धा और भक्ति हमेशा की तरह उतनी ही जीवंत बनी रही। कल शाम की मुख्य प्रार्थना सभा का संचालन पोटली के बिशप द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा कि फवलावाल ने केवल गरीबों की बात नहीं सुनी बल्कि उन्होंने दूसरों के साथ ये भी विवेचन किया कि यीशु मसीह की सेवा करके उनकी सेवा कैसे की जाए। व्यापार को सुगम बनाना और सबसे बढ़कर निवेश में तेजी लाना, अधिकारी मॉरिशस में व्यावसायिक माहौल को अधिक सरल, तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए कई उपायों की योजना बना रही हैं। प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं लाइसेंस और परमिट प्रक्रियाओं में संशोधन, साइलेंट एग्रीमेंट का सिद्धांत, या फिर व्यवसायों और निवेशकों के लिए बनाई गई सेवाओं में AI का एकीकरण। अब्दुल्ला की गीता सुनारान।
1: EDB यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड इस समय कारोबार के सामने आने वाली मुख्य अड़चनों की पहचान करके उन्हें कम करने पर काम कर रहा है। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक नया बिजनेस फैसिलिटेशन बिल भी तैयार किया जा रहा है, कुछ आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी लाइसेंस की अर्जियों पर फैसला जल्दी लेने के लिए साइलेंट एग्रीमेंट व्यवस्था को भी फिर से लागू किया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कारोबार के माहौल को बेहतर बनाने और खास तौर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये कदम अहम है। अर्थशास्त्री डॉक्टर भवेश जगन्नाथ कहते हैं, मॉरिशस का उद्देश्य है वृद्धि को बढ़ाना, इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। विदेशी निवेशक आएंगे, इसके लिए हमारे यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जो व्यवसाय को आसान बनाए। टेक्निक भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम यानी NELS को और मजबूत किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए साधन शामिल किए जाएंगे। इनमें कई भाषाओं में काम करने वाला चैटबॉट भी होगा जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा कई दूसरी प्रक्रियाओं को भी स्वचालित किया जाएगा। अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मॉरिशस की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। मॉरिशस के सामने कई कॉम्पिटिटर हैं जो विदेशी निवेश की तलाश में हैं, जैसे दुबई, रुआंडा, बोत्सवाना, केन्या, नाइजीरिया, जो इसी मंडी में हैं। इन निवेशकों को यहाँ लाने के लिए हमारे पास उन्हें देने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। इन सुधारों के जरिए लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बी रेडी सूचकांकों में मॉरिशस की स्थिति और बेहतर हो, साथ ही देश को कारोबार और निवेश के लिए एक आकर्षक जगह के रूप में और मजबूत किया जा सके।
0: फ्लिकॉफ्लाक में मंगलवार से सिसना के क्षमता निर्माण पर 3 दिवसीय चौथा वार्षिक सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें सादे क्षेत्र के नॉन बैंकिंग वित्तीय सेवा नियामकों के प्रमुख अधिकारी वित्तीय माहौल में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच शासन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और भर्ती चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि कल शाम एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेंट क्वा पहुंचे। उन्होंने 162वें वर्ष के अवसर पर बियनेरो जाक देज़िरे लावाल की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रजनी भीकर।
2: कुछ एक फूल भेंट करने आए, कुछ लोग एक मोमबत्ती जलाने, एक प्रार्थना करने, कुछ साधारण हरकत, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही मायने रखते हैं। ये मॉरिशनों के दिल में बियनेरो पेर लावाल के प्रति लगाव और गहन भक्ति दर्शाते
3: हैं।
4: La telle fait mal comme

राष्ट्रीय स्तर पर कैनाबिस संबंधी नीति में सुधार पर तैयार रिपोर्ट आज दोपहर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल नैडेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल नायक और इसकी अध्यक्ष नाद्या पिरन ने सौंपी। दोनों अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट व्यापक बहुआयामी और समावेशी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है। देश भर में आयोजित व्यापक परामर्श के दौरान 1800 से अधिक सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिससे आम जनता और विभिन्न साझेदारों को अपनी राय रखने का अवसर मिला। ये रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा कई मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मॉरिशस के लिए ऐसी जिम्मेदार, सुसंगत और देश की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नीति तैयार करना है। इस दस्तावेज की जल्द ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के सदस्यों द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद इसे मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के बाद कुणाल नायक ने चर्चा पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ नैडेक के सामने आने वाली चुनौतियों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मौजूद बाधाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इन कठिनाइयों के समाधान के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन ने आज मुका स्थित अपने मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान 15 सितंबर को बॉशरी घोंबा मराठी मंडली में होने वाले गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह की तैयारियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की रूपरेखा, विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी और इस पर्व के धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। विदेश की खबरों में, नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस आपदा में 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। उधर बिहार में भी बाढ़ ने गंभीर रूप ले लिया है, जहां 13 जिलों में 34 लाख से अधिक लोग प्रभावित

0: हैं आस्था गोविंद चितमन।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे और पानी से भरे हाइड्रोपावर परियोजनाओं की सुरंगों में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। त्रिशूली नदी के पास एक सुरंग से दो कर्मचारियों को 9 दिन बाद जीवित निकाला गया। आपदा में 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। भारत ने राहत सामग्री के साथ बचाव दल और सुरंग विशेषज्ञ भेजे हैं। चीन, ब्रिटेन और अन्य देशों की टीमें भी अभियान में सहायता कर रही है। उधर बिहार में बाढ़ ने गंभीर रूप ले लिया है। 13 जिलों की 480 ग्राम पंचायतों में करीब 34,31,000 लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटों में 29 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। गंगा के साथ कोसी और गंडक सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना, भागलपुर और वैशाली सहित कई जिलों में पानी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें तैनात हैं, जबकि करीब 700 नौकाओं की सहायता ली जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और सामुदायिक रसोई भी खोली गई है।
0: गणेश चतुर्थी के साथ करीब आ रहा है विघ्नहर्ता का शुभ आगमन और इसी के साथ प्रतिमाओं में आकार ले रही है श्रद्धा और भक्ति। तमिलनाडु के विलुपुरम में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की छोटी बड़ी प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों में ये प्रतिमाएं पूजा पंडालों और श्रद्धालुओं के घरों में विराजमान होंगी।
1: मिट्टी में आकार लेती आस्था, रंगों में सजती भक्ति और शिल्पकारों के हाथों धीरे धीरे साकार होते प्रथम पूज्य भगवान गणेश। भारत के तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम में इन दिनों हर ओर गणेश चतुर्थी की तैयारियां देखी जा रही हैं। यहां छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। कहीं प्रतिमाओं पर रंगों की सुंदर परत चढ़ाई जा रही है, तो कहीं भगवान गणेश के मुकुट, आभूषण और वस्त्रों को सजाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्षण नेत्रों को आकार देना होता है, क्योंकि आंखें बनते ही मानो प्रतिमा में एक नई भाव भंगिमा उभर आती है। इस कार्य में पुरुषों के साथ महिला शिल्पकार भी पूरे मन और श्रद्धा से जुटी हैं। उनके हाथों की सफाई, रंगों का सही मेल और छोटी से छोटी बारीकी पर दिया गया ध्यान हर प्रतिमा को एक अलग पहचान देता है। विलुपुरम में गणेश प्रतिमाएं बनाने की ये परंपरा 37 वर्षों से चली आ रही है। समय के साथ प्रतिमाओं के आकार, रंग और सजावट में बदलाव आया, लेकिन शिल्पकारों की भक्ति आज भी वैसे ही बनी हुई है। उनके लिए ये केवल कला या जीविका नहीं, बल्कि भगवान गणेश की सेवा और उपासना भी है। जल्द ही ये प्रतिमाएं पूजा पंडालों और श्रद्धालुओं के घरों की शोभा बढ़ाएंगी। विघ्नहर्ता के आगमन के साथ हर ओर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी और वातावरण गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से गूंज उठेगा।
0: मासूम आँखें, प्यारी सी चाल और गंध पहचानने की अद्भुत क्षमता। बेंगलुरु का स्टार्टअप डॉग्नोसिस अब प्रशिक्षित कुत्तों की सहायता से कैंसर की शुरुआती पहचान का नया तरीका विकसित कर रहा है। ये कुत्ते व्यक्ति की सांस में होने वाले उन छोटे बदलावों को पहचानना सीख रहे हैं जो बीमारी का संकेत हो सकते हैं।
1: मासूम आंखें, प्यारी सी चाल और हर नई गंध को पहचानने के लिए हमेशा तैयार नाक मनुष्य के सबसे वफादार साथी अब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में भी खास भूमिका निभा सकते हैं। बेंगलुरु का स्टार्टअप डॉग्नोसिस से इन कुत्तों की अद्भुत सूंघने की क्षमता का उपयोग कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए कर रहा है। इन्हें व्यक्ति की सांस में होने वाले उन छोटे बदलावों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो बीमारी का संकेत हो सकते हैं। ये जाँच आसान, कम खर्चीली और बिना दर्द के हो सकती है, हालांकि उनके इस्तेमाल से पहले और परीक्षण जरूरी है। अपनी प्यारी हरकतों से चेहरे पर मुस्कान लाने वाले ये चार पैरों वाले साथी आने वाले समय में किसी का जीवन बचाने में भी सहायता कर सकते हैं।
0: और अब अंत में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल गीता सुनारान के साथ।
2: मॉरिशस में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी है, जो कल गुरुवार 10 सितंबर को शाम 4 बजे तक लागू रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवाएं चल रही हैं। देश भर में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और

साहिली इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 17 से 22 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं। आम जनता से ऊंचाइयों और सड़कों पर सावधान रहने की मांग की जाती है। लगुनों के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा। 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, जो तटों तक पहुंच सकती हैं, खासकर पश्चिम और दक्षिण में। आम जनता से इन तटों और समुद्र में न जाने की मांग की जाती है। कल सुबह 6:10 पर सूरज निकलेगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम अपर्णा को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:17 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: जी शोक समाचार सुनिए। एफनी सिटी लेन कॉमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदेव अबिलक, जो देवा नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती चांदिनी अबिलक के घर एफनी सिटी लेन कॉमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सिवसागर लेन नोत्रदाम में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी देवी राजा, पैदाइशी नाम तिमल और जुफिया नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके बेटे अक्षय राजा के घर सिवसागर लेन नोत्रदाम से उठाकर नोत्रदाम की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30। डॉक्टर मेनिला रोड पिचिटुशिदी में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री रामनोहर, पैदाइशी नाम सीतल और जसलोनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:00 उनके घर डॉक्टर मणिलाल रोड पिचिटुशिदी से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। नंबर 172 एपासरे क्यूपिप रोड क्यूपिप में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमति दुमा, पैदाइशी नाम कुजो बिहारी और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1:00 उनके बेटे श्याम दुमा के घर नंबर 172 एपासरे क्यूपिप रोड क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 57 मामा देला मुसैन स्ट्रीट सेंट क्वा में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पावती बिजन, पैदाशी नाम दुर्बीज और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1:00 उनकी बेटी रेणुका देवी बिजन के घर नंबर 57 मामा देला मुसैन स्ट्रीट सेंट क्वास से उठाकर सिपाही भोले वाली दिपैत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। सोल्फेरिनो नंबर 1 वाकवा में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की बीबी आयसा ईडन, पैदाइशी नाम राजा और जो आयसा नाम से भी जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा कल दिन के 11:00 उनके घर सोल्फेरिनो नंबर 1 वाकवा से उठाकर फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 11 AM। ला शापल ओडेंट एडियनसन्स बोबासे में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुमारी खुर्गधारी, पैदाइशी नाम छगनलाल और जो कुमारी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। वे लो 55 एवेन्यू रेजिडेंस से त्रियानो रहती थी। उनकी अर्थी कल सुबह 10:00 ला शापल ओडेंट एडियनसन्स बोबासा से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: NBC Radio, 24 hours a day.

करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल गुरुवार 10 सितंबर 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक विलाज समौते बेजुकाप में और आसपास के इलाकों में बेजुकाप और श्वाजी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: 还有。
1: 女人说，再不说我要生气了。嗯。
2: 您所收听的是毛里求斯广播电台八一九频道。

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
2: समस्त सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। भजले प्रभु का नाम समस्त श्रोताओं आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भजले प्रभु का नाम चन भक्ति गीत आपकी सेवा में। और आपको पता है कि भक्तिमय वातावरण है और अब हम भगवान गणेश को पूज रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम गणेश चतुर्थी पर्व मना रही है और आपको पता है उनकी जय जयकार जो है सभी जगह पर कर रहे हैं, सभी मंदिरों में, घरों में, दुनिया भर में, मॉरिशस भर में उनकी जय जयकार करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं उन्हीं का नाम जो है सबसे पहले हम लेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ हमें अपनी ज़िंदगी में उतारनी होती है। और अगर मन शांत हो तो सब शांत होता है, अगर मन अशांत हो तो सब अशांत होता है। तो चलिए आशा हमें कम रखना ही बेहतर है, शुक्राना हमें ज़्यादा करना है हमारी ज़िंदगी में, और जो हमारा बुरा वक्त है वो भी निकल जाएगा। हमें जो है हमेशा जो है सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। तो चलिए श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम को हम आगे बढ़ाएंगे।

चलिए श्रोताओ, रात के हम सफ़र हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम कर्म और मेहनत की बात करते हैं श्रोताओ, तो कर्म जो है हर किसी को करना होता है, लेकिन जब हम कर्म की बात करते हैं तो साथ में जो है हमें अपनी मेहनत को लगातार जो है करते ही रहना है, हमें कर्म जो है करते ही रहना है और फल की चिंता जो है हमें छोड़ देना है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे और गिरकर संभलने वाले ही आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। इस बात को हमें लेकर आगे ही बढ़ना है।

0: चलिए श्रोताओं,
1: भजले प्रभु का नाम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, चंद भक्ति गान आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं और साथ में चंद सकारात्मक विचार भी आपके साथ जो है हम साझा कर रहे हैं। तो श्रोताओं, माफ़ करना हमें सीखना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। किसी के प्रति जो है भेदभाव हमें नहीं करना है, हमें सरल बनना है, सब अपने आप जो है सरल हो जाएगा। किसी का बुरा भी हमें नहीं सोचना है और हमें खुद का जो है भला करना है और दूसरों का भी भला हमें करना है। कहते हैं ना, सेवा ही सच्ची पूजा है।

श्रोताओं, अभी हमने बात की है सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो चलिए इसी सोच को अपनाकर हमें आगे बढ़ना है हमारी ज़िंदगी में। कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं, कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को शुभ रात्रि।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस आदमी के लिए खुशखबरी हो जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, और जो आदमी मुझ पर ईमान लाया जबकि उसने मुझे देखा ही नहीं, उसके लिए 7 दफ़ा खुशखबरी है। बहवाला मसनद।

अल्लाह सुबहान व तआला दरूद व सलाम नाजिल फरमाए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले खाना और औलाद पर, आपके असहाब पर, और क़यामत तक भलाई के साथ आपके असहाब की पैरवी करने वालों पर। सामिन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए शिव का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। शब खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: sangat dialog kriminala iba katat ketik na bajal ba tu sunat radio Mauritius radio Manoranjan ori hatelo ke ban pasan radio channel
1: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: Continuous music. RM3.
3: Bhojpuri. Tadka.
0: सब संगत आलो के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भर नमस्ते और सलाम। यह तल के पसंदीदा रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस भोजपुरी तड़का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे ले। आज बुधवार की रात, बुधवार 9 सितंबर साल 2026। थोड़ा मन करा था कोनो भी भोजपुरी गीत सुनने के जा नमरवा घुमाइया का जगह देवी जगह विचैंक का जगह देवी जगह विचैंक पर। और बरसाती मौसम बा, हवादार मौसम बा, पानी बरसाता झिमी झिमी झिसी झिसी और ठंडा था कर लग बा ज़रूर। और ऐसा में बस हम के साथ देते जाइए और सुनते रहिए तो आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। और आज बुधवार, तो बुधवार की रात जब आया था गमठ ही गमठ होला, तो 9 के आधा प्रस्तुत क्लब से गो खेल प्रतियोगिता शेख आशील जावाता मैं जाके लिखे के तो लोग दो टिकट्स मिली। तो ध्यान से सुनिए सवाल, हमने के सवाल रही रात के 9 के आधा क्विज चली। अभी खातिर शुरू कर लिया जाए भोजपुर का प्रोग्राम के साथ कुनाल कुनाल हीरीलाल की गावल गीत के साथ मार ताली मार।

0: मार ताली मार ताली मार हमारे संगे तू भी ताली मार नाचा गावा झूमा और अभी एगो संगे थे अबा लाइन पे यो लोग से मिला अब जाका जगो दे विद जगो विद सांग का जगो दे विद जगो विद सांग भाई विजय बेनी पैसन भाई
1: हेलो भाई विजय कैसे भाई जी नमस्ते भाई जी
0: नमस्ते जी कैसे समाचार
1: समाचार ठीक बा भाई जी आप कैसे हो भाई जी
0: कहाँ से टेलीफोन करते हो
1: हम सामुनी से टेलीफोन
0: लेता कैसे बा भैया
1: ऐसा परी अभी लेटो ठंडा ठंडा कर लिया बस वहाँ पानी नहीं बा
0: पानी नहीं बा हवा हवा बा
1: हवा हवा बा ठंडा बहुत कर रहा था ऐसा पोगा ऐसा लेटो मैं भोजपुरी प्रोग्राम सुनने के बड़ा मजा दे रही अच्छा भाई जी देखा
0: बेटी
1: सुना नोयन के गीत मांगा था नाटक बा सिनेमा बा के का संगे जाइबा
0: हो देख नाटक बा सिनेमा बा
1: ये गीत वा सब बेनी पोसात परिवार के नाम जोड़ दिया अभी हमारे एगो एगो परिवार बाते एगो दोस्त एकी ए गणेश जगनारायण जी सामुने रहेला
0: कौन परिवार है जगनारायण परिवार
1: हाँ जगनारायण गणेश जगनारायण जी
0: हाँ हाँ

0: अभी हमारे खास दोस्त बा मोहताबा से हर गांव में शास्त्री बोनोमाली
1: शास्त्री बोनोमाली भैया वो तो बड़ा गमट करे रहा खूब से गमट करेंगे
0: वो तो बड़का गमट
1: है
0: हमारे खास दोस्त है
1: ए ता तो हर बेस्ट फ्रेंड आले चला दे
0: हर खाती हमारे बेस्ट फ्रेंड है उकर नाम जोड़ दिया उकर परिवार के साथ
1: आले बहुत धन्यवाद और को सकते वाला इनको से मिल अब जा हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते
2: नमस्ते जी
1: के हवाजा
2: श्रीमती
1: सुयाक से मौसम कैसे मामा परी
2: मौसम बहुत ठंडा
1: पानी नहीं बा
2: पानी नहीं आवता बहुत ठंडा बहुत ठंडा
1: बढ़िए ठंडा मन कहता खाली चाय और काफी पिए के
2: चाय पिए के गरम गरम आज रोड के सूते के आज भोजपुरी सुने के
1: आज कौन बम मिनी पकड़ रहा बोला था मिनी कौन सी बात
2: आज लिसू फ्लेयर
1: घर में गर्मा गर्म पराठा
2: आलू डाल के
1: अकेले पराठा खा ले बहु सेवा कर चले अच्छी बात बा और कौन गीत सुन बा बोले
2: शिवदास के गीतवा डाल दिया भोजपुरी गाना
1: कौन भोजपुरी गाना
2: शिवदास के गावल गीत
1: खातिर
2: बाप दादा के भोजपुरी बोली
1: बाप दादा लोग के बोली
2: भोजपुरी बोली सब परिवार सब चंद्रमुनि परिवार और सब मोहित परिवार खातिर डाल दिया गीतवा
1: और
2: आपके लिए भी
1: और थोड़ा गीतवा बड़ी अच्छा लगे ना
2: हाँ खुशी दे ला गीतवा सुने के ना और वैसे बार बार ये गीत मांगी ना
1: अरे डाल दियो आप फिक्र नहीं करिए ओके
2: आले
1: बहुत धन्यवाद आपको और इसी ही हम के साथ देते रहिए और गमटवा करते रहिए और हमने जो एमबीसी वाला ऐसा के एमबीसी के जितना रेडियो चैनल बहु 2400 घंटे कार्यरत बा वेंकट टू वेंकट सेट 365 जो एक बार इसमें हमने के सब अच्छा अच्छा प्रोग्राम चलाई ला सा वो चाहे रेडियो मॉरिशस हो रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती RM1 RM2 और खास कर अभी जो रेडियो चला था अभी रात के सुना तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और है कर बेटा वेंकट लो वेंकट सेट प्रोग्राम चल रहा खाली तो लोग के मनोरंजन खातिर ता ई एमबीसी रेडियो तो लोग के राजू है हमने के राजू है सब कोई के राजू है एमबीसी को परिवार है तो लोग वही परिवार के सदस्य हो सर तो जितना कोई एमबीसी भी सुनाता एमबीसी राजू ता गीत लोग के नाम नाटक बा सिनेमा बा के कर संगे जाइब है गीता के बाद चलो आप सारे वो गाना बाप दादा लोग के बोली तेगो सुना नयन के गीत विनोद सिद्धत के गीत बाग टू बाग दू गाना है दुगो गीतों के बाद हमने गीतों लोग की मुलाकात फिर से हो सुनते रहे प्यार से एमबीसी रेडियो

अभी 5 मिनट में एक क्विज चलाओ अब सैक अशिल जावाता जुन बागातेल में रगल बा वहाँ पर हर बीफी और सुख के सांझ के 6 बजे से शो हुआ था और सामने दिमाग के 2 बज के आधा भी शो होला था। क्विज यदि 9 बज के आधा और जीते होला के मिली 2 टिकट एंट्री टिकट्स वहाँ पर जाके इस सैक देखे के तभी खातिर

एगो कहानी तोरा सुनाब जा। और आज की अपनी कहानी है कृष्ण सुदामा की कहानी। तो बहुत साल पहले की बात बा, सुदामा और कृष्ण बचपन में गुरुकुल में संगे संगे पढ़त रहन सर, बड़का संगतिया रहन सर, बेस्ट फ्रेंड रहन सर, दोनों में गहरी दोस्ती रहल। श्री कृष्ण राजघराना से रहल और सुदामा गरीब परिवार से रहल, फिर भी दोनों में बहुत गहरी दोस्ती रहल। अमीरी गरीबी के बावजूद इन दोनों में कोनो भेदभाव ना रहल। समय बीतल गल और कृष्ण जनह द्वारका के राजा बन गल। सुदामा के हालत बहुत खराब हो गल, घर में खाए खातिर अनाज तक ना रहे। ओकर पत्नी एक दिन बोललक, रउआ कृष्ण के कृष्ण लगे जा, जाके अपन बचपन के दोस्त के अपन दुख सुनाव, देखा कैसे तोहर मदद सकी करे। सुदामा के लगे कृष्ण के देवे खातिर कुछ खास ना रहल। आखिर में ओकर पत्नी पड़ोस से थोड़ा सन चिउरा मांग के लेके आल, एगो कपड़ा में बांध के दिलक और भुलक जब कृष्ण भगवान लगे जाए तो ओकर हाथ में दे के। सुदामा द्वारका पहुँचल और जब कृष्ण के पता चलल कि ओकर बचपन के दोस्त सुदामा आल बा, तो राजा के सगरी मर्यादा भुला के डर के अपन दोस्त के गला मिलल, अपन दोस्त के सेवा सत्कार करलक। कृष्ण भगवान अपन हाथ से सुदामा के गोर धोलक और ओके खूबसूरत वस्त्र दिलक और ओके बैठा के खूब खेलक पियलक। बहुत भावुक हो गल कृष्णा जब सुदामा के देखलक। सुदामा के द्वारे में आल बा, अब सब कोई बोलता है कि है सुदामा के है, तो कृष्ण बोले ई हमार जिगरी दोस्त है, ई हमार बेस्ट फ्रेंड है। और कृष्ण भगवान खूब सेवा कलक अपन संगतिया के, कहे कितने दिनों के बाद सुदामा को लगे गरहल, खूब खाए पिए के दिलक, हाल चाल पूछलक। कृष्ण की नज़र सुदामा के हाथ में एक पोटी पर पड़ल, वो मुस्कुरा के बोलक, मित्र हमार खातिर कौन चैन ले हुए। सुदामा लज्जा के कारण पोटली छुपावत हल, बाकी कृष्णा खुद पोटली खोल के चिवा निकाल के देखलक। वो बड़ी प्रेम से चिवड़ा खैलक। कृष्ण खातिर वो साधारण चिवा ना रहल बल्कि दोस्त के प्रेम रहल। सुदामा कृष्ण से कुछ नहीं मंगलक, वो बस दोस्त के प्रेम पाके वापस अपन गांव लौटल। जब सुदामा घर पहुँचल तो वो देखा था, देख के हैरान हो गल कि छोटा सा झोंपड़ी जो है बड़का महल बन गल बा। घर में नौकर चाकर बा, पैसा ही पैसा, धन दौलत। सुदामा समझ गल कि ये सब कृष्ण के लीला है। ओकर आँख में आंसू भराल, खुशी की मारे वो रो पड़ल। और सुदामा और कृष्ण के दोस्ती हमने के सिखावेला कि सच्चा दोस्ती जो है धन दौलत से नहीं बल्कि प्रेम विश्वास और अपनापन से बड़ा होला। कहानी की सीख ये है कि भगवान सच्चा प्रेम और भक्ति दिखेला, ना कि कोई के धन दौलत। तो तू भी अगर दोस्ती करब तो कृष्ण सुदामा लेखन दोस्ती करिए, राम बलराम लेखा दोस्ती करिए, वो कहाला दोस्ती। गीतों के बाद क्विज कंपटीशन खेल प्रतियोगिता तैयार हो जा।

जहाँ संग चालो गो खेल प्रतियोगिता खेल प्रतियोगिता जो है प्रायोजित सेक आशील जबाता की ओर से जो बागा तेल में बा भी और हर बीपी और सुख के सांझ के 6 बजे शो होला वहाँ पर और शाम जो दिमाग के दोपहर बाद के 2:30 बजे से शो होला। एगो सवाल हम तुरह से पूछब, अगर सही जवाब तुम के देब तो तोहरा मिली वहाँ जाके 2 एंट्री टिकट्स और ये एंट्री टिकट्स तोरा मौका दे जाके शो देखे के। अगर सही जवाब मिल जाए तो MBCI या अपन ID कार्ड के लेके सप्ताह के दिन में लेंदी से लेके शुक्र ले दिन के 9 बजे से शाम के 3 बजे ले। ध्यान से सुनिए हमारा सवाल, जवाब दिया काजे होदे विद जवाब विद सैंक पर। ऊ लम्हर डंटा के का बोलल जाला, ऊ लम्हर डंटा के का बोलल जाला जेकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चलेला। ध्यान से सुनिए हमार सवाल, ऊ लम्हर डंटा के का बोलल जाला जेकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चलेला। तो है खेल प्रतियोगिता अभी 9:30 होल बा, 9:40 तक 10 मिनट तक खेलवा चला। अब सर अगर एक जना के सही नंबर अगर जन सही जवाब मिली तो मिल जाए और इनाम। अब धे मना जवाब सही जवाब रही ते कुछ आजो शो करब से लकी ड्रॉ करब सर और अनाउंस करब सर कि कर जीत हो बात। अपन किस्मत आजमावा, दिमाग पर जोर लगावो और हमने के बोला कि वो लम्हर डंटा के का बोलल जला जिकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चले लन सर सेक में। तो जवाब काट जगह दे विद जगह विद सैंक पर, काट जगह दे विद जगह विद सैंक पर। तब तक सुना एक दुगो भोजपुरी गीत।

अपनी को खेल प्रतियोगिता चलेगी सभी खेल प्राचीत सकस आशील जवाता के सृजन बागा तेल में बा और हमने की सवाल यह है कि वो लंबा डंडा के का बोल जला जकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चलेगा। अभी ये सब गलत गलत जलबाव जवाब आवा था और पाँच मिनट में हमने खेल खत्म करब सर रैन की रात के 9:40 पर तो हमने की जवाब द कि वो लंबा डंडा के का बोलल जला जकर पर कलाकार लोग जमीन से बहुत ऊपर चलेगा। तो और जवाब काट जगह दे विद जगह विद सैक पर काट जगह दे विद जगह विद सैक पर

अफसोस की बात बा कि आज कोई की जीत नहीं हो। जी हाँ, आज के उनकी सवाल रहल उ लंबा डंटा के का बोलल जला जगह पर कलाकार लोग जमीन से ऊपर चलेला। जवाब है स्टिल्ट वॉकर्स। तो कोई सही जवाब नहीं दिला, अगर सही जवाब कोई देव तोरा मिलत सकस आशीष अवधा जन बगातेर में स्थित बा, वहाँ पर ही जाए के दुगो एंट्री टिकट्स और वहाँ के शो है हर बी फिर सुख के शांत के 6 बजे और सर शांति मास के 2 बज के आधा शांत के शो होला। अफसोस की बात है कि आज कोई के जीतने हो थे कोई पॉच पे कर लें सर। खेल में भाग ले खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश कर ला जा बहुत धन्यवाद, पर आज कोई के जीत नहीं होल। और रही जवाब के संगे खेल प्रतियोगिता यहीं पर ही समाप्त होता। और याद दिलाते जाए कि ये खेल जो न स्पॉन्सर सकस अशील जवाता बगातेड़ की ओर से।

रात की 9:40 हुआ था और हमने जुड़कर साथ दे होते रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमके साथ खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गीत अगे नानी राकेश कोप गीत गेले हवन और गीत हमने चलावते विशाल भैरव के नाम आप हेलन फ्लाक उकर पत्नी उकर लड़का लोग खातिर देविका राम गतिया चंपा राम गतिया राधा सिबालक गीतों लोग के नाम और इंदिरा चिंताराम भी उनके साथ देवत उनकर बेटा पतु बेटी दामाद और जितना भी उनका परिवार बा चिंताराम परिवार मॉरिशस में अजय और पूनम होवन ऑस्ट्रेलिया में बाल गोपाल में परिहवंस या चंदन और प्रियाबा और सब चिंताराम परिवार के नाम अभी को संगतिया बा लाइन प्योकर से मिलब जा। हेलो हेलो हेलो बात कर हेलो हंकी को बात समझ में नहीं आवेला टेलीफोने करे रह सर जब टेलीफोन जब आवेला तो टेलीफोन काट देवे रह सर। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट क्योंकि बहुत सी बेमन बा हो के तो टेलीफोने करके बात कर टेलीफोन करके ब्लॉकिंग कर देवे रह सर दूसर के लाइन ना मिलेगा कहा बोला भैया दुनिया में अजीब अजीब लोग बा। चले अगला गीत सुनम जा अगे नानी जितना कभी रात के नाइट शिफ्ट में काम करा था वन सर तो है गीत तो लोग के नाम जितना कोई हमने सुना था घर पे या घर से बाहर हुआ देश में विदेश में गाड़ी में हुआ लॉरी में हुआ वान में हुआ जहाँ कहीं भी हमने की आवाज़ पहुँचाता था गीत तो लोग के नाम अगे नानी

आजकल हमने के देश में पूजा पाठ हुआ था। जी हाँ, अभी श्रावण मास जब फिनी होल तब गणेश चतुर्थी के जो है पर्व आवा था। हम मंगल के गणेश चतुर्थी मनावा उत्सव कर बाद ही वेंकटेश्वरा पूजा, गोविंदन पूजा, फिर रही पितृपक्ष, फिर देवपक्ष, देवपक्ष में दुर्गा पूजा हो और कर बाद दिवाली। तो एन पर एन कागम अभी शुरू हो गल बा देश की शुरुआत, बरिश की शुरुआत से, और भी ढेर को ये कागम रख ले हम से। तो लोग के व्रत सफल हो, गणेश जी के आशीर्वाद, गणपति बापा मोरिया के आशीर्वाद सफल बनल रही। उसके बाद वेंकटेश्वरा, गोविंदा, दुर्गा माँ की भी पूजा हो। तो पूजा पाठ जो है बहुत जरूरी है जीवन में। जितना हमने के ग्रह रहेला, दुख रहेला, जब पूजा पाठ कर बता कोनो न कोनो फासों से वो ग्रह कम होला, कष्ट कम होला, हाँ कि नहीं। तो ऐसा में गुरु दुर्गा माँ के भजन चलावब सा भी विश्वानी दीपा के आवाज़ में जितना कोई व्रत धारण कर ले वन सा तो लोग के व्रत सफल हो और गणपति बापा तो लोग के आशीर्वाद दे और तो लोग के सब मनोकामना पूर्ण होई।

0: ऐसी पूजा पाठ करते रहिए, व्रत धारण करते रहिए। पूजा पाठ करला से, व्रत धारण करला से हमके जीवन में जितना कठिनाई बा वो सब दूर होला। हमनी के भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त होला। आजकल ठंडा ठंडा करता है, तापमान में गिरावट आवता है और दिक्कत ऐसे ढेर कोई जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है वन सर, ढेर कोई अस्पताल में एडमिट भी होता है। बहुत लाफी फो है, बच के रहिए ठंडा पानी और ठंडा हवा से। तो आजकल जो ना जैसे ठंडा ठंडा करता है, जैसे जीरे साफों बा दूध में हल्दी डाल के पिए, जीरे जीते व्यागामोद जीते पिए गरम गरम, ओकर में व्यागामोद के एक दो गो बूंद डाल दिया, लीमो या सीतरों डाल दिया और ये सब अच्छा है तो के इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग बनाए खातिर। और ढेर मना फ्रूट बा फल बा जैसे मोदारिन, बंगासाय, पॉम्प्लेमूस, कीवी, जोरोंस, लीमो, ये सब अच्छा है तब खेब तो सर्दी खांसी और जुकाम से दूर रह। अगला गीत अभी को संगतिया बात कब से संगतिया है, कौन गीत मांगता? हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ प्रेमिला जी नमस्ते।
1: नमस्ते प्रताप,
0: कैसे समाचार?
1: ठीक समाचार,
0: धीरे धीरे हौली हौली। हाँ कैसे पूजा पाठ सब होता?
1: हाँ पूजा पाठ
0: चल, अच्छी बात है। पूजा पाठ जितना कर बहुत अच्छा है प्रेमिला, कहे के अभी के जीवन में देखेला कितना दुख रहेला ना, कबू कबू अपन दुख के बोल भगवान के छोरा के। इंसान इंसान के दुख नहीं सकेला, सोल्यूशन खोजे सोल्यूशन।
1: बहुत बढ़िया बात,
0: कौन सी बोला?
1: कहानी हुई सावित्री सत्यवान।
0: देखेला जब सावित्री अपन सत्यवान खातिर
1: व्रत करके आईली, जब तब पति बीमार होलन तब धल कितना बोली 20 साल तक जीलन।
0: थोड़ा याद चला ना कि कागज में व्रत में ढेर शक्ति रहेला, पूजा पाठ में ढेर शक्ति रहेला।
1: और सावित्री व्रत बहुत सच्चाई पर।
0: हाँ और अभी कौन गीत सुन प्रेमिला?
1: अभी जन्मदिन पर हो विकास के।
0: हाँ एक जन्मदिन के गीत
1: विकास विशेष उनका मामा भाई, उनके पत्नी करीन किरण और बेटा है यश और वो बेटा यू, बेटा और यानव।
0: हाँ कहाँ रहे लंसर?
1: उनका भाई बहन
0: कहाँ रहे लंसर?
1: है जे धीरे में वो लोग हमारा सगरो ले जाने।
0: एटा सो स्वीट,
1: बहुत निमन हम।
0: हाँ चलो भगवान के आशीर्वाद से कोई तो कोई ना कोई तो
1: सहा। और एक बाटे ले ला हमार जल्दी जल्दी।
0: हाँ बोला।
1: इंग्लैंड इंग्लैंड में हमन साइलेश
0: बहुत खूब हैप्पी बर्थडे बोलते ढेर मना प्यार आशीर्वाद, लंबी आयु हो, दिल से आशीर्वाद दे होते।
1: अरे
0: बहुत मैसी
1: साली हमारी वंदना या
0: और वंदना कहाँ रहे लन?
1: यही
0: लगी। ओके ओके ओके जी
1: बधाई
0: तो लगी इतने ठंडा करता प्रेमिला, रोज कैसे ठंडा करता तो रो लगी पा रही ठंडा करता,
1: बहुत ठंडा बहुत ठंडा।
0: पनिया नहीं बसता सिर्फ खाली ठंडा करता
1: नहीं पानी बा।
0: हाँ कभी कभी एक झोंक पानी मारे रहा ना।
1: हाँ मोटा पानी नहीं हो।
0: हाँ जीसी जीसी। हाँ तो ये सब भगवान के काम लिखा तो नेपाल में कौन कहते दी बोध मार बा ना। अभी काल इंडोनेशिया में देखा था इसे को वोल्कन जो इरप्ट होल बा, बाप रे बाप ढेर कोई बोला था भाजी में हेने वोल्कन भेने देवोद मो कहूँ कहूँ तीन गो सिक्लोन एक उत्फो में हुआ था। बाप रे बाप,
1: गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत मंगल कामना बोला था।
0: हाँ जी आपको भी गणपति बाप अभी को रानी तो रानी ऐसे की तो आगे चलाओ अब तब बाद में गणेश भगवान के गीत चलाओ सर ठीक बा। बहुत धन्यवाद प्रेमिला, शुभ रात्रि, गणपति बापा मोरिया। तो हाँ जैसे बोला तरी कि अभी कल हमने सोशल मीडिया पर देखा तरी से गो वोल्केन जो है वो इरप्ट तो होल बा इंडोनेशिया में और जो वोल्केन है तो वहाँ पर जो है ढेर माना टॉक्सिक गैस होकर में से निकला था इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया वो देश है जहाँ पर ढेर माना प्राकृतिक प्रकोप होला है। पहली बार नहीं है वहाँ पर ही सुनामी आ रहा दे बोर्ड में सब आवे रहा तो का करब ये सब तो हो के बा और भगवान के काम कोई नहीं सकेला रोके।

पर जो वोल्केनो है बहुत ही खतरनाक वोल्केनो है जो इंडोनेशिया में इरप्ट होल बा। और टाइप करिए ये सोशल मीडिया पर जब बता टाइप करिए वोल्केनो इन इंडोनेशिया तो देखा कैसे वो लावा जो कहते निकला था में से, बाप रे बाप, तो देख के आदमी के रोवा काँप जाता। अब जो आदमी वहाँ रहेला लोग गाँव के सामने हो बोलको वहाँ इरप्ट होल बा। प्रार्थना करिए सर कि बोलको जो है थम जाए। और अगला गीत जो है चलाओ भाई हरीश खातिर बोबासन से काला छोटी वन पोल और जैसे चाचा आत्माराम चाची ललिता कुशल सब कुशल परिवार साइलेंट की ओर से कर्मा रीता और मौसी रेणुका खातिर रवि बंगारो गीत हो रो नाम तो सब परिवार के लिए भाई नदी वाला वैनकूवर कनाडा से हवन जा। चल एक साथ सुनम जाए गीत एगो जन्मदिन के गाना है एल्बम है बेलीला और प्रेमी लाके जितना परिवार लोग जन्मदिन मनावा था है गीत और लोग के नाम भी।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

गीतों की याद दिलावा था कि पिछली बार को दो में जो जनगरल वहाँ पर ही मॉरिशस की जीत हो रहा है सभी प्रव में मॉरिशस नंबर वन टॉप ऑफ द टॉप नंबर वन। तो मॉरिशस के आर्थिक लोग से बहुत बहुत बधाई जितना कोई स्पो करेला स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो ये अच्छा है स्पो करला और हमने के आते लोग जब नहीं वो नेशनल ने थे नेशनल में जान से तब आली मोरिस यस यू डिड इट। रात के 10:12 होता और आजकल हमने पूजा पाठ करते इस एक बगल गणेश भगवान की पूजा हुआ था तो दूसर बगल वेंकटेश्वर गोविंदा की पूजा का तैयारी भी हुआ था और सब कोई वेजिटेरियन जो है शाकाहारी भोजन करते हैं उनसे तो आज को भोजन के बारे में बात करते हैं जो बड़ी आसान है वो है करी भरी। ये मॉरिशन खाना करी भरी ढेर कोई बोले गातो दाल या गातो पीमा ये बहुत आसान है गातो दाल बनाए के गातो पीमा ढेर कोई बोले ला तो कोनो भी दाल हो तो के फूले की दाल दिया कोई देखी में रात के रात भर जब फूल जाए फजिट के उठ के ओके खाजे कर दिया खाजे करके एक और मेरे को तो मिली पीमा लाके जो सब दाल के जोड़ी से गोल गोल आकार करके ओके छनिया जा गरम तेल में और एक करी भरी जो है एक प्रकार से एक पकावी रहा एक सलाद बनी रहा एक उगाए में भी पकाए रहा सर और मसाला में भी पके रहा करी भरी दो मसाला भैंसल बैगन दाल के उगाए में भी और एक सलाद भी बनी रहा। भाई हंगे तो अब ये भूख लगा था करी भरी के बारे में से गर्मा गर्म गाते दाल में से धुआं निकला था और करी भरी मसाला में भैंसल डाल के साथ में फाता सोसो क्या बात है। तो हर व्यंजन बहुत आसान है कर मैं ढेर लेता हूँ नहीं लगेगा खाली चेहरा के

रात के फूले की डाली कि एक रात में फूल जाए नीवन से, तब फजर की उसकी खासे कर दिया, खासे के सकबा फूस दिया में भी रख दी, और जब भी मन कर रही तब के निकाल के देश लेकर के सकबा तार के तरकारी पकाई। और ऐसे में अगला गीत पनिया बरसेला है, गीत चलावत इस पंडित लवकुश त्रिपाठी खतेर, और है गीत उदय दनी राम का सपरिवार के नाम, और भाई अबू हवन बाकवा से, राफिक मोहितायक से, रोजिदा हाईलैंड से, आफेज लाविनिया सैंपिया से, पातला निग्रोव से, इब्राहिम पोट्री से, सुरेश जसवा, राजमन्ना, स्टीव चिबुग लोंग, नानो संजीव, साइलेश महावीर और घरोरी को लेकर और कर पिताजी के नाम, और जैना भवन फेनिक्स से। तथा चले के साथ सुनब जा ये प्यारा संगाना पनिया बरसेरा। सच्चे के अभी रात के जिस जिसी पानी बरसता, मृत्यु बोलता, तापमान में और गिरावट आई है, और शुक्ल इसे ठंडा कर ले रही, कहेगी को जोरदार एंटी साइक्लोन मास्करिन के दक्षिण में बा।

हमने की देश में पहली बार के लिए जब कोलोनाइजेशन रहल फ्रांसी लोग कोलोनाइज करले रहल तो हमने की देश के नाम रखल कर रहल इल दे फ्रांस।

तेगो फ्रांसे के नाम पियर पुआव वही ढेर बना जेपी सा नेदरलैंड और वो जेपी सा में से एगो रहल कानेल जिके मैं दालचीनी बोला सा त कानेल जोन है एगो सुगंधित मसाला है जे पेड़ के छाल से मिलेला एकर इस्तेमाल खाना चाय और पारंपरिक चिकित्सा में प्रयोग होला और दालचीनी के महत्व ढेर बा ई खाना में स्वाद या खुशबू बढ़ावेला जैसे मिठाई चाय पुलाव करी या बेकरी के चीज़ में भी डराला कानेल और बिरयानी में भी सेवियोला डाइजेस्टिव सिस्टम के मदद करेला एक में एंटीऑक्सीडेंट बा ये अच्छा है और एक में ये ब्लड शुगर की कमती भी करेला सर्दी जुकाम से निके दूर बचावेला और मुंह के स्वास मुंह के महक जो ना मुंह में सुगंध लावेला और साबुन परफ्यूम और दूसरे सुगंधित साबुन परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में का इस्तेमाल भी होला दालचीनी खाना में सामान्य मात्रा में सुरक्षित मानल जाला बहुत अधिक मात्रा खासकर कासिया सिनेमन में कुमारिन अधिक हो सकेला जे लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में लेला तो लीवर सकी खराब हो जाए तो कानेल के हमोदे राशों से चेहरा खाए के पर ये अच्छा है स्वास्थ्य खातिर गातों में बिरयानी में प्रसादी में ढेर कोई सेवी करेला एक हिंदी में बढ़िया से दालचीनी और अब हमने के मोरिशन कल मोरिशन बढ़िया से कानेल तो ज़रूर जब तरकारी पकेबा मिठाई पकेबा तो एक पिछली बुत कानेलवा डाल दिया हो काहे से कंजूस करेला और ऐसे में अगला गीत चली शालिनी की ओर से विशाल हीरू के नाम और कर्दू को बेटी और सब हीरू परिवार जो रह लफलोगा विशाल विशेषर वन से वन कर पत्नी कर बेटा और सब विशेषर परिवार के लिए लफलोगा से मिशन क्रॉस और दाल माटी के रविराज सिन्हा बिच्चू को कर पत्नी स्वयं प्रभा बेटा प्रत्यक्ष और सब परिवार बिच्चुक परिवार के नाम अमृता डुंगू रे गीत और खातिर अमृता गणेश पीतों से अवन शोभा हवन पॉम्पलमुस से चित्र ज्ञान विश्राम मौदालबिया से अनिता लाल जी मौदालबिया से सब इटू परिवार अनिता हवन फ्ली कॉन् फ्लाक से तो चले सात सुन जा ये प्यारा सुन गाना उमेश दोहू के गावल जीले जीले

चार दिन के जिए के बा भैया, फिर काहे के इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना गुमान। फिर कुबेरा को लुत्तु रहते बलाई लुत्तु हमारा मर लुत्तु में नहीं चरे कि तका आदमिया जब दुनिया छोड़ के जाए लुत्तु ले जाए का अपन संगे। ढेर कोई नहीं सोचलन सर, खाली बचालन सर बड़ा बड़ा बात है लुत्तु हमर हमर घर। जब असल में देखब तो यहाँ कुछ नहीं बात तोर है, शरीर तोर अपन नहीं है। दुनिया में अरे तो दूसर कोई नहैलक, दुनिया से जेब तो दूसर कोई थोड़ा नहाई। एक दिन शरीर जो घमन करे रहा हाय हमार लुत्तो है हमार घर है बंगला है गाड़ी है, तो शरीर तोहर अपन नहीं है। माटी के बनल भाई शरीर, पांच तत्व के बनल भाई, और एक दिन पांच तत्व मिल जाए और जब ले इंसान रहेला तो रहेला, जब इंसान मर जाला दुनिया से चल जाला तब फिनिश। उ रोब गईब पूजा पाठ करब कि कुछ शांति करेब, जब दुनिया चल गए तो चल गए भैया। जिंदा रहल तो कोई गलती नहीं दिलक, अब जब दुनिया में नहीं बा तो अगर पीठ पीछे आदमी बैठ के रोआ था, मातम मनावा था, शोक मनावा था। हम नहीं बोलते कि नहीं करेंगे ये सब, अच्छा है जब कोई नहीं रहेला दुनिया में तो अगर याद करी रहा सब, पर अगर जीते जी तो अगर सेवा नहीं कर ला तो अगर मरला के बाद अब रोवा तो वह तो कौन ची न सोचे वाला बात है, चिंतन मनन करे की बात है कि जब ले कोई इंसान जिंदा बा। हर इंसान से गलती होला, कौन ऐसा इंसान बा जेकर से गलती नहीं होला, पर एगो गलती खातिर तू जिंदगी भर आदमिया से नाता तोड़ ले बा, मुँह मोड़ ले बा, तो ये कैसन जिंदगी है। हम जैसे बोले सर कि जीते जिए गरी गो इंसान बात, वो भूखल इंसान होकर खाए के दिला, प्यासल इंसान पानी दिला पिए के सेवा सत्कार कर लेता, वो सबसे बड़ा पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है। अब नहीं कि जीते जी गलती नहीं दिला, जीते जी जिंदगी भर होकर गाड़ी देला धुत कर ला, मर कर तब बैठ के रोत और फोटो में हाँ चढ़ावत हुआ, तब फोटो में हाँ चढ़ेला से का होला भैया, जब जीते जी गलती नहीं रहता।

सोचे रहा बात है कि जब एक व्यक्ति जिंदा बात और आँख के सामने बा तब जहिया कर लगे उससे बात करिए को नुबेल पूछिए कोनो चीज पकैली हवा तब प्यार से के परोसिया कहले के जहिया घूमे जब मर गल तब मर गल भैया फिनिश वंस एंड फॉर ऑल। तो हमेशा हमारे बात है कि चार दिन की जिंदगी है फिर कुछ नहीं बा है जब भाई दुनिया आँख मुंडा तो फिनी सब कुछ फिनी होगा। अगला की चार दिन के जिंदगी गिरी शुभचंद गीत वा गई गीत चलाते सब विकास नारायण खातिर है गीत अपाया वीरापेन सरजू रोसाई रुसोल दीना प्रतिमा रोशनी बानु और शिव शिवशंकर जी के नाम चलावत इसे गीत वा बहुत प्यार के साथ वीना कुबुसामी है गीत तोहर खातिर तोहर घरोला तोहर बेटा पतो बेटी दामाद और सब कुबुसामी परिवार के नाम वीना कुबुसामी लेरन मेबर्ग सुरमा दुखी वहाँ से अवन ओकर घरोला ओकर दुगो बेटी दामाद और सब दुखी परिवार के नाम विश्वानी बाबूलाल लागोजा से ओकर घरोला और सब परिवार के नाम विशाल मंडप इटली से अवन ओकर बेटी पत्नी और सब मंडप परिवार के नाम और शास्त्री बोने वाली भी रात के वक्त हमने की सुना था बहुत प्यार से और जितना कोई भी रात के काम करता है नाइट शिफ्ट में जैसे अस्पताल में क्लिनिक में कॉल सर्विसेज में कॉल सेंटर में पुलिस विभाग में फायर सर्विसेज में जहाँ कहीं भी लोग काम करता बोंक हुआ सही ठंडा में काम करके आसान नहीं बा अभी देर कोई फजीले काम करी तो ढे मना कुआज और ढे मना प्यार दिलों के हमने के आशीर्वाद दिलों के साथ बा चलाई गीत सुने

0: पसंद बा।
1: बोला रे

संगते लोग ललिता गजाधरी का वाले गीत ललना के संगे ही बहुत छोटी तरह का प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी उनके साथ दिला जाए तो लोग के फोन कॉल और SMS करते शुक्रिया। हमने के तो लोग मुलाकात हुई सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे रेडियो मॉरिशस पर। प्रोग्राम रही ये मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। तो सामदी देवन की इजाजत दा और जय प्रताप सिंह के उससे सबको एक प्यार भरा नमस्ते सलाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: निशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार ऑन रेडियो मॉरिशस बड़े प्यार से खूबसूरत गानों का सिलसिला लेकर आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। तो बस आज यूजुअल आराम से बैठ जाइए, दिल को जरा थाम लीजिए, क्योंकि ऐसे खूबसूरत नगमे हम पेश करने वाले हैं सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस में कि आपका दिल खुश हो जाएगा आज।

वैसे तो देखा जाए आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में प्लेलिस्ट एक क्लिक पर मिल जाती हैं, लेकिन वो फीलिंग कहाँ जब हम एक गाने के लिए पूरा दिन रेडियो सुनते थे। तो चलिए उसी सिंप्लिसिटी को फिर से फील करते हैं सुनहरे पल के साथ, और अगला नगमा हमारे दिल से आपके दिल तक।

एक गाना बजता है, आंखों के सामने एक चेहरा आ जाता है, एक मेलोडी सुनाई देती है और दिल के किसी पुराने शाम में पहुंच जाते हैं हम। म्यूजिक की इसी मैजिक को सेलिब्रेट करते हैं सुनहरे पल में, रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। अगर आप काम पे हो तो बोंको गाश तो यू, और ये अगला गाना आप दिल से एंजॉय कर लीजिए।

वैसे दोस्तों आज ना कोई जल्दी है ना कोई रेस है, बस म्यूजिक है, मेमोरीज है, आप हो और हम हैं आपका साथ देने के लिए। मैं हूँ गिनिशा, जो बड़े प्यार से लेकर आई हूँ कुछ ऐसे गिने चुने नगमे आपको सुनाने के लिए इन योर सुनहरे पल। तो अपनी बिजी लाइफ से कुछ पल चुरा लीजिए और मेरे साथ खो जाइए पुराने बॉलीवुड के हसीन गीतों में, सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, फौलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

वैसे दोस्तों, कुछ रिश्ते वक्त के साथ दूर हो जाते हैं, कुछ पल बीत जाते हैं, लेकिन एक गाना उन सबको एक ही पल में वापस लेकर जाते हैं। और आज फिर उन्हीं यारों का सफ़र हमने शुरू कर दिया है आपके और हमारे बीच में। अगर आपको लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड, तो ये शो आपके लिए ही है। एवरग्रीन मेलोडीज़, ब्यूटीफुल आवाज़ें और वो में इमोशंस जो आज भी दिल को टच करते हैं। सो स्टे विद मी, स्टे कनेक्टेड आपके सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

फिलहाल के लिए वक्त हो चुका है कि आप हमें इजाजत दें। बिल्कुल जी, जाएंगे तभी तो वापस लौट के आएंगे एक और सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना जी, और रेडियो मॉरिशस सुनते रहना हमेशा हमेशा आपका साथ देने के लिए। हमारे पास खूबसूरत गानों का सिलेक्शन है। गिनिशा को इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर।

MBC Radio 24 hours a day. आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC Radio

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ। एनबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: एनबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
2: एनबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।

0: MBC Radio, your music companion.
1: That's right. Pump it up.

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: MBC Radio, your music companion.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

अरे बोल मेरे गुड्डे, ख्याल तेरा क्या है, तू भी कुछ कह दे, सवाल तेरा क्या है।

0: खिलाना होगा,
1: पाया मंगवाना होगा,
0: बाहों में झुलाना होगा,
1: झूला मंगवाना होगा,
0: पैर भी दबाना होगा,
1: सर पे बिठाना होगा,
0: चक्की भी चलाना होगा,
1: मेले में ले जाना होगा,
0: खाना भी पकाना होगा,
1: झुमका दिलाना होगा,
0: झाड़ू भी लगाना होगा,
1: नखरे उठाना होगा।

MBC Radio, your music companion.